मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज सोमवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 जून 2026। इस समय सुबह के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को

0: उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम अभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस समय 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं देश गान।

इसी भक्ति गीत के साथ आज की आराधना यही संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 होने वाले हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु, आलेख है सराहना, संकलन एवं वाचन स्वर है रैना गुप्ता की।

सांसों की गति का नाम नहीं है, बल्कि भावनाओं, संबंधों, अनुभवों और संवेदनाओं का एक विशाल संसार है। इस संसार में कई ऐसे भाव हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और व्यक्ति के भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत करते हैं। इन्हीं भावों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, सराहना का भाव। सराहना केवल किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर देना भर नहीं, बल्कि ये उसके प्रयासों, गुणों, संघर्षों और अस्तित्व के मूल्य को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। ये वो शक्ति है जो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जगाती है, उसके जीवन में आशा का दीप प्रज्वलित करती है और समाज में सकारात्मकता का वातावरण निर्मित करती है। सराहना कोई साधारण व्यवहार नहीं, बल्कि जीवन के प्रति गहरी चेतना है। ये हमें सिखाती है कि संसार में केवल दोष देखने से जीवन पूर्ण नहीं होता, सुंदरता को, अच्छाई को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता बल्कि जीवन भी देता है, उसी प्रकार सराहना केवल शब्द नहीं बल्कि हमें ऊर्जा और आत्मविश्वास भी देती है। अक्सर लोग सराहना और चापलूसी को एक समान समझ लेते हैं, जबकि दोनों में गहरा अंतर है। चापलूसी का उद्देश्य किसी स्वार्थ की पूर्ति करना होता है, जबकि सराहना निस्वार्थ भाव से उत्पन्न होती है। यदि कोई बच्चा कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है, उसके माता पिता उसके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। सच्ची सराहना व्यक्ति के भीतर आत्मिक संतोष पैदा करती है। ये केवल उपलब्धियों की ही नहीं बल्कि प्रयासों की भी होनी चाहिए, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है और उस संघर्ष की पहचान ही वास्तविक सराहना है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी हमारी दृष्टि जैसी होती है हमें संसार वैसा ही दिखाई देता है। यदि व्यक्ति में केवल आलोचना करने की प्रवृत्ति होगी तो उसे हर जगह कमियां ही दिखाई देंगी, लेकिन यदि उसके भीतर सराहना की दृष्टि होगी तो वो छोटे छोटे कार्यों में सौंदर्य देख सकेगा। एक माली जब पौधों को देखता है तो केवल उनकी वर्तमान स्थिति नहीं देख बल्कि उनके भीतर छिपे फूलों और फलों की संभावनाओं को भी देखता है। इसी तरह सराहना भी व्यक्ति के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने की कला है। जीवन में नकारात्मक अनुभवों का सामना हम सभी ने किया है, अक्सर ये हमारी मानसिकता पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। शारीरिक घावों के विपरीत भावनात्मक घाव हमें

0: अपने भीतर चकनाचूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसे नकारात्मक भाव हमारी बुद्धि को ईश्वर की अनेक कृपाओं की सराहना नहीं करने देते और हमारे मन के शांति को भंग कर देते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके कार्यों को महत्व मिले, और ये कोई अहंकार नहीं बल्कि स्वाभाविक मानवीय आवश्यकता है। एक कलाकार वर्षों मेहनत करके चित्र बनाता है, यदि लोग उसके कला की प्रशंसा करें तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक किसान कड़ी धूप में परिश्रम करता है, यदि उसके श्रम को सम्मान मिले तो उसे गर्व की अनुभूति होती है। एक गृहिणी पूरे परिवार की देखभाल सालों साल करती है, यदि उसके कार्यों की सराहना हो तो उसका जीवन आनंद से भर उठता है। इस प्रकार सराहना मनुष्य के मानसिक और भावनात्मक विकास का महत्वपूर्ण अधिकार है।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस का गायन, भाग 88। मुख्य गायन स्वर है ए हरिहरन का और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। विषय है वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद।
1: वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुआ खाद। खाद बनाने की विभिन्न विधियों में सर्वाधिक उपयोगी विधि है वर्मी कंपोस्टिंग। वस्तुतः कंपोस्टिंग वह विधि है जिसमें कूड़ा कचरा तथा गोबर को केचुओं तथा सूक्ष्म जीवों की सहायता से उपजाऊ खाद अथवा वर्मी कास्ट में बदला जाता है। यही वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुआ खाद कहलाती है। वर्मी कंपोस्ट के लाभ। वर्मी कंपोस्ट अन्य खादों की अपेक्षा कई दृष्टियों से ज्यादा लाभकारी है। अन्य खादों जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट की खादों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। अन्य पद्धतियों से बनाई गई खादों की तुलना में वर्मी कंपोस्ट ज्यादा उपयुक्त है। इसमें न केवल फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं, बल्कि दूसरी खादों की तुलना में इसकी कम मात्रा में ही काम चल जाता है। जैसे यदि 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट सिंगल सुपर फास्फेट की 4 बोरी के बराबर तथा 30 किलो पोटास में कई प्रकार के एंजाइम तथा हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन आदि भी पाए जाते हैं। ये एंजाइम अन्य जैविक खादों में प्रायः नहीं पाए जाते तथा बाजार में जिन रासायनिक रूपों में ये मिलते हैं वे बहुत महंगे होते हैं। वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से भूमि में स्फूर घोलक जीवाणुओं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से जमीन से सिंचाई की भी अपेक्षाकृत कम आवश्यकता पड़ती है। वर्मी कंपोस्ट खेत में डालते समय उसके साथ केचुए भी जमीन में जाते हैं, जो भोजन की प्राप्ति, मल विसर्जन एवं प्राणवायु प्राप्त करने के लिए दिन भर में 7 से 10 बार ऊपर नीचे आते जाते हैं। इस प्रक्रिया में जमीन से स्वतः ही 14 से 20 छिद्र बन जाते हैं, जिससे जमीन पोली होने के साथ साथ इसमें वायु की आवाजाही होना आसान हो जाती है तथा इसकी जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। केचुओं का शरीर 85% पानी से भरा रहता है, इसलिए सूखे की स्थिति में 60% पानी की कमी हो जाने पर भी वे जीवित रहते हैं एवं मर कर भी जमीन में पौधों के लिए भोजन छोड़ जाते हैं। केचुए की विष्ठा में पेराटॉपिंग झिल्ली होती है, जो धूल कणों से चिपक कर वाष्पीकरण की प्रक्रिया को रोकती है। परंपरागत गोबर खाद के कई बार कच्ची रह जाने के कारण फसल को दीमक अथवा गोबर की सुंडी आदि से हानि हो सकती है, परंतु केचुआ खाद पूर्णतः पकी हुई होती है, अतः इसके उपयोग से फसल में किसी प्रकार के गोबर के कीड़े अथवा दीमक आदि के लगने की संभावनाएं नहीं रहती। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मुख्यतः 4 संसाधनों की आवश्यकता होती है। पहला, उपयुक्त प्रजाति के केचुए। दूसरा, गोबर एवं कार्बनिक अवशेष। तीसरा, पानी। चौथा, बांस बल्ली। तथा पांचवा, उपयुक्त स्थान एवं अन्य व्यवस्थाएं। केचुए मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एंडोजीक या नाइट कॉलर्स अथवा इपीजीक या सरफोस। इनमें से एंडोजीक नाइट कॉलर्स जमीन के अंदर रहते हैं। ये 8 से 10 इंच लंबे होते हैं। इनका

0: वजन लगभग 5 ग्राम तक होता है तथा 90% मिट्टी एवं 10% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। अधिकांशतः हमारे आसपास यही केचुए पाए जाते हैं तथा ज्यादातर वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं। ये केचुए वर्मी कंपोस्ट बनाने में काम नहीं आते हैं। केचुओं की दूसरी किस्म एपीजीक या सरफेस कहलाती है। ये अपेक्षाकृत कम लंबाई के होते हैं तथा इनका वजन लगभग 0.5 से 1 ग्राम तक होता है। इनका रंग लालिमा लिए हुए बैगनी होता है। ये वनस्पतिक अवशेष तथा गोबर खाते हैं तथा मिट्टी पसंद नहीं करते। वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति आइसिनिया फैटिडा है। ये केचुए टाइगर केचुए अथवा ब्रांडली रंग केचुए के नाम से जाने जाते हैं। इनका शरीर लंबा, पतला, गोल तथा दोनों सिरों पर से नुकीला होता है तथा यह 100 से 122 खंडों में विभाजित होता है। यह प्रजाति के केचुए प्रकाश, तीव्र तापक्रम तथा गैसीय द्रव्यों जैसे एसिटिक एसिड आदि के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। इनकी सक्रियता के लिए मध्यम तापक्रम तथा आर्द्रता ज्यादा अनुकूल रहती है। इनका जीवन चक्र 130 से 150 दिन तक का होता है तथा जन्म से 6 से 7 सप्ताह के बाद ये प्रजनन योग्य हो जाते हैं।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:50 होने को हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा।

सात बजे आप आनंद ले सकेंगे लोक संगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल के। 7:30 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी संगीतों का कार्यक्रम। नमस्कार सरगुजा। 9 हम पेश करेंगे कार्यक्रम परिक्रमा, जिसमें वाचन प्रस्तुति होगी अंजनी कुमार पांडे की तथा प्रस्तुतकर्ता होंगे परमेंद्र कुमार। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुंजन, जिसमें हम आपको वर्ल्ड ओशियन डे के अंतर्गत महासागरों के विषय पर चर्चा करेंगे एवं सुनेंगे कुछ फिल्म संगीत। 10:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आपकी बातें आपके गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे पोलोमी को। 11:05 पर हम प्रस्तुत करेंगे आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। 12:00 आप आनंद ले सकेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:30 पर हम आपके लेकर आएंगे एक ही शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन। 1:05 पर आप सुनेंगे खेती की बात का पुनः प्रसारण। 1:10 पर आप आनंद ले सकेंगे ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर गोसाई का। 1:40 पर आप सुन सकेंगे फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। 2:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंधा। 5:00 हम पेश करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

5:30 पर हम लेकर आएंगे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। विचार बिंदु आप सुन सकेंगे 6:05 पर। लोक गीतों का कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे आप शाम 6:20 पर। 6:30 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम माधुरी। 7:05 पर हम प्रस्तुत करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी 7:20 पर। 8:00 आप सुन सकेंगे सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। 9:15 पर। 9:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज। 10:00 हम लेकर आएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम शुरियामिनी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया पर प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रणानाम कृते स्वस्य आधिकारिक जाल पटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 36वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबंधन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमंत्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायां ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्ण पदके द्वे कांस्य पदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम के शुरुआत में आइए सुनते हैं महावीर लकड़ा एवं साथी के स्वर में ये मंगनी गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए भौला मिंज और साथी की आवाज में यह हकवा गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में पहला नगमा पेश है जगजीत सिंह की आवाज में। शब्द रचना है नवाज देवबंदी की, संगीत निर्देशन है जगजीत सिंह का।

कार्यक्रम सुगम संगीत में लीजिए, सुनिए अगली गजल पंकज उदास की आवाज में। शब्द रचना है जफर गोरखपुरी का, संगीत निर्देशन है पंकज उदास का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कातिल शिफाई की लिखी ये गजल चित्रा सिंह की आवाज में।

0: इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: नमस्कार सरगुजा। सुप्रभात। कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपकी रेडियो साथी खुशबू। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभवित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5:00 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनल पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग रायपुर के निर्देश के परिपालन में प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत व्यवस्था के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना जिला कलेक्ट्रेट के कंपोजिट बिल्डिंग के कक्ष क्रमांक 20 में किया गया है। 1 जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक 24 घंटे इसकी संपर्क की सूचना दी जाएगी। बाढ़ नियंत्रण कक्ष हेतु नोडल अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक नोडल अधिकारी, अधीक्षक भू अभिलेख होंगे। इसके साथ ही साथ कक्ष के सफल संचालन हेतु अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नया रायपुर द्वारा नवीन राशन कार्ड जारी करने, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने तथा सदस्य विलोपित करने संबंधित आवेदनों को अब सेवा सेतु पोर्टल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार नागरिक अब सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राशन संबंधित आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में दर्ज जानकारी एवं अपलोड की

किए गए दस्तावेजों का परीक्षण और सत्यापन छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन का नियमानुसार परीक्षण कर पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुसार नवीन राशन कार्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति के पश्चात जोन अथवा जनपद कार्यालय में ऑनलाइन जनरेटर राशन कार्ड की PDF प्रति पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को अपने परिवार की मुखिया एवं कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का KYC अनिवार्य रूप से कराने के लिए प्रेरित किया जाए। KYC संबंधित उचित मूल्य दुकान में स्थापित ई-पास मशीन तथा फेस ई-KYC के माध्यम से कराई जा सकेगी। यह व्यवस्था राशन कार्ड संबंधित सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है, जिससे नागरिक को कार्यालय के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी तथा समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथियों, और भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लीजिए सुनिए फिल्म पत्थर के सनम का यह प्यारा सा गीत। आवाज है मोहम्मद रफी की।

नमस्कार सरगुजा, अब समाचार बलरामपुर रामानुजगंज से। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 8 जून 2026 को समय सीमा की बैठक पश्चात आयोजित होगी। कलेक्ट्रेट ने समिति के सदस्यों को समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग संचालित स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना के अंतर्गत जिले के विभागीय छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत छात्र छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन क्षेत्रों में जिले चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है, वहां संचालित विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं शर्तों के अनुसार MBBS, MAMS तथा BHMS योग्यताधारी चिकित्सकों से वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक चिकित्सक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 17 जून 2026 को साय 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला मुख्यालय बलरामपुर में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि शिक्षा सत्र 2026-27 में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्राओं के लिए आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केंद्र जिला दुर्ग में शिक्षक बनने की अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश हेतु आवेदन पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अंबिकापुर से प्राप्त कर 12 जून 2026 शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रवेश हेतु पात्रता में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हों एवं गणित व वाणिज्य विषय के साथ आगामी पढ़ाई के लिए इच्छुक हों, ऐसे इच्छुक विद्यार्थियों को विभाग के साथ अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा कि गणित एवं वाणिज्य विषय के स्नातक तथा BEd की पढ़ाई के पश्चात वे प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देने के लिए सहमत हैं। ऐसे विद्यार्थियों में से बालिकाओं को दुर्ग जिला मुख्यालय पर संचालित विज्ञान वाणिज्य केंद्र पर अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शिक्षा सत्र 2026-27 के प्रवेश स्नातक के प्रथम वर्ष में केवल गणित व वाणिज्य संकाय में ही होगा। सूचना के पश्चात छात्राओं का विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केंद्र में अस्थायी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तत्पश्चात दुर्ग जिले के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शित किया जाएगा। आवेदक द्वारा सर्वप्रथम विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केंद्र छात्रावास में रहने की व्यवस्था हेतु संपर्क करना अनिवार्य है। साथियों, कार्यक्रम में पेश है फिल्म मेरा जीवन साथी का किशोर कुमार की आवाज में यह प्यारा सा गीत। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत से लयबद्ध किया है आरडी वर्मन ने।

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खरखर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब?
1: मतलब अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
2: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
0: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
1: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
0: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।
3: नमस्कार सरगुजा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा एवं आवंटित संस्थाओं में इम्पैनलमेंट कार्य में विलंब होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 26 जुलाई 2026 रविवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा अब निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं होगी। कार्यालय कलेक्टर मनीन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के लिए इस संबंध में सूचना प्रदान की है। विभाग के स्पष्ट की कहा है कि वर्तमान में परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का आवेदन जमा नहीं किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार आवंटित संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया के संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश शासन स्तर से प्राप्त होने के बाद परीक्षा की नई तिथि एवं आगे की प्रक्रिया की जानकारी पृथक रूप से जारी की जाएगी। प्रशासन ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी केवल अधिकृत शासकीय स्रोतों से ही प्राप्त करें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के माध्यम से मेघावी विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे उनके शैक्षणिक और प्रतिस्पर्धात्मक विकास को नई दिशा मिलती है। शासन द्वारा नई परीक्षा तिथि एवं प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है, जिसके बाद इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। साथियों, लीजिए पेश है मोहम्मद रफ़ी एवं साथी की आवाज़ में यह प्यारी सी पेशकश। गाने के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने एवं संगीत निर्देशन है राहुल देव बर्वन का।

0: नमस्कार सरगुजा, अब खबर शासकीय पॉलिटेक्निक चिरमिरी से। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर उज्ज्वल भविष्य बनाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। शासकीय पॉलिटेक्निक चिरमिरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा GIS एवं GPS डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार प्रथम चरण में का पंजीयन 11 जून से 15 जून 2026 तक तथा प्रवेश प्रक्रिया 20 जून से 24 जून तक संचालित होगी। साथियों, आज के नमस्कार सरगुजा में बस इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो साथी मुझे यानी खुशबू को इजाजत।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम

0: नमस्कार सरगुजा,
1: नमस्कार सरगुजा।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब हम कुछ ही पलों में पहले समाचार प्रभात और फिर 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
3: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए

0: उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
1: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत

0: नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री श्री सिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में

36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुति है प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की।

श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, यह सिर्फ एक धुन नहीं है, यह वह ध्वनि है जिसने पीढ़ियों को जगाया है। यह धुन कई लोगों के लिए सुबह का पर्याय बन गई। जैसे ही यह स्वर कानों में पड़ते हैं, समय की घड़ी मानो पीछे लौटने लगती है, यादों का एक विशाल संसार खुल जाता है। ये है आकाशवाणी, भारत की आवाज, और आज यह आवाज अपनी 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रही है। 8 जून 1936 भारतीय प्रसारण के इतिहास में यह एक ऐसा दिन था जब एक नए युग का जन्म हुआ। इसी दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और भारत में सार्वजनिक रेडियो प्रसारण को एक नई पहचान मिली। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी। साल था 1927, जब रेडियो स्वयं एक अजूबा था और आवाज का हवा के रास्ते सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। बंबई और कलकत्ता से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने प्रसारण शुरू किया। यह भारत में रेडियो प्रसारण का पहला संगठित प्रयास था। हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह प्रयोग अधिक समय तक नहीं चल पाया और 1930 में यह कंपनी बंद हो गई। लेकिन विचार नहीं रुका, आवाज का यह सफर नहीं थमा। 1 अप्रैल 1930 को भारत सरकार ने रेडियो सेवा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना हुई। फिर आया 8 जून 1936, जब भारत के रेडियो इतिहास को उसका स्थायी नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। संयोग देखिए, जिस सिग्नेचर ट्यून को बाद के दशकों में आकाशवाणी की पहचान बनना था, उसका संगीत भी उसी दौर में तैयार हो रहा था। इस धुन के रचयिता थे वाल्टर कॉफमैन, एक यहूदी संगीतकार जो नाजी यूरोप से पलायन कर भारत आए थे। उन्होंने भारतीय राग शिव रंजनी पर आधारित इस अमर धुन की रचना की और प्रसिद्ध वायलिन वादक महली मेहता ने इसे अपने सुरों से सजाया। किसने सोचा होगा कि एक विदेशी संगीतकार द्वारा रची गई यह धुन आगे चलकर भारत की सबसे परिचित ध्वनियों में से एक बन जाएगी। और फिर आया वह शब्द जिसने इस संस्था को भारतीय आत्मा से जोड़ दिया, आकाशवाणी। कहा जाता है कि 1930 के दशक में महान विद्वान और संगीताचार्य मैसूर वासुदेवाचार्य ने पहली बार आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया। यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो ने इसे आधिकारिक रूप से अपना लिया। पिछले 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल गीत, कार्यक्रम या समाचार ही नहीं सुनाए, बल्कि राष्ट्र की स्मृतियों को संजोया है। स्वतंत्रता की मध्यरात्रि से लेकर आधुनिक भारत की उपलब्धियों तक, संकट

0: की घड़ी से लेकर उत्सव के क्षणों तक आकाशवाणी ने हर युग को अपनी आवाज दी है। आकाशवाणी ने स्वयं को देश के सबसे विश्वसनीय संचार माध्यमों में स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आकाशवाणी ने अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करते हुए शिक्षा, सूचना और मनोरंजन तीनों ही क्षेत्रों में सार्थक भूमिका निभाई है।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को जय जोहार। साथियों, आज आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी अपनी स्थापना के इन 90 वर्षों के दौरान देश की विकास यात्रा में हम सफर रहा है। इसने सदैव बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तीनों ही क्षेत्र में सार्थक भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ में लोक गीतों और लोक संगीत की शानदार परंपरा रही है। इस लोक कला को संजोने और इसे मंच प्रदान करने में आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ के विकास, सुशासन और लोक कल्याण की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी का योगदान अत्यंत सराहनीय है। आकाशवाणी एकमात्र माध्यम है जो छत्तीसगढ़ में हिंदी और छत्तीसगढ़ी के साथ आदिवासी जनों की बोली हल्बी तथा गोंडी में भी समाचार तथा समसामयिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। इससे आदिवासी भाई बहनों को उनकी अपनी बोली में देश और प्रदेश की जानकारी मिल रही है। साथ ही वे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी जागरूक हो रहे हैं। प्रदेश से नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने में आकाशवाणी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। आकाशवाणी एकमात्र माध्यम है जिसकी पहुंच राज्य के दूर दराज, दुर्गम और वन क्षेत्रों तक है। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।
0: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आकाशवाणी हमारे साथ हमेशा मौजूद रहा है। आकाशवाणी संचार का सबसे सस्ता, सुलभ और सुगम माध्यम है।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को राम राम, जय जोहार। हम सब जानते हैं कि पिछले 90 साल से आकाशवाणी हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। सवेरे उठने से लेकर रात सोने तक हर समय आकाशवाणी हमारे साथ मौजूद होता था, और मनोरंजन की बात हो, ज्ञान की बात हो, कला संस्कृति की बात हो, जानकारियों की बात हो, मार्गदर्शन की बात हो, हर जगह हर समय आकाशवाणी ने हमारे दिल में मन में जगह बनाकर महत्वपूर्ण योगदान किया है। संचार का सबसे सस्ता और सुलभ सुगम माध्यम हमारा आकाशवाणी रहा है। आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ, आम लोगों के लिए मददगार रहा है। तो मैं आकाशवाणी के पूरे परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब हमारे जीवन के अटूट कड़ी बनकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आप चले हैं। हमारे जीवन का हिस्सा रहा है आकाशवाणी। जब बचपन में सवेरे भक्ति संगीत से प्रारंभ होता था और फिर गांव में तो समाचार का और दूसरा तरीका नहीं था। समाचार सुनना, सवेरे भक्ति संगीत, शास्त्रीय संगीत से प्रारंभ होकर रात के शास्त्रीय संगीत तक हर कदम आकाशवाणी का साथ रहा है। क्रिकेट का शौकीन रहा हूँ तो क्रिकेट की कमेंट्री सुनने का बहुत आनंद लिया है। खेत खलिहान जाएं तब भी रेडियो ट्रांजिस्टर साथ होता था और सही में हर कदम पर साथ निभाया है आकाशवाणी ने। तो और मैंने अपने जीवन में बहुत उपयोग किया है आकाशवाणी का, बहुत लाभ लिया है, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, संगीत के लिए और जानकारी के लिए। तो ये हमारे जीवन का अटूट हिस्सा रहा है और मुझे आकाशवाणी का बहुत लाभ मेरे जीवन में मिला है।
0: उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आकाशवाणी ने 90 वर्षों में जन जन के मन को छुआ है। इतना ही नहीं,

0: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के उन्मूलन में भी आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: आकाशवाणी को ही सुनते सुनते तो जीवन इतना आगे बढ़ा है। बचपने से मुझे याद है, मैं अपने बुआ के साथ, अपनी बड़ी दीदियों के साथ बैठा रहता था। आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा साधन होता था कि हमको दूर दराज के क्षेत्रों की कुछ सूचनाएं मिलती थी। वही एक ऐसा साधन होता था जो मनोरंजन का सबसे बड़ा आधार होता था। आकाशवाणी ने 90 वर्ष में जन जन के मन को छुआ है। आकाशवाणी ने अभी हमारे नक्सल उन्मूलन की दिशा में भी वो कर दिखाया है, जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। जंगल के अंदर नक्सली सिर्फ रेडियो ही सुना करते थे, और आपने हमारे एक आग्रह पर हमारे 15% जो जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र है उसमें 15% गोंडी या स्थानीय भाषा के लिए समय था, उसको 50% तक बढ़ाया, इसके लिए आभार है। उसके बाद उन 50% बढ़े हुए में नक्सल उन्मूलन की दिशा में सरेंडर्ड जो पुनर्वासी जो नक्सली थे उनके आपने इंटरव्यूज लगातार दिखाए, उनके लिए भी आपका आभार और अभिनंदन है। और नक्सलियों ने जब कहा कि आकाशवाणी के माध्यम से हमको रेडियो संदेश दिया जाए कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और मैंने रेडियो संदेश अपना रिकॉर्ड करके भेजा और आपने चलाया, उसके बाद 3 बड़े पुनर्वास हुए, ये MMC जोन के 3 पुनर्वास थे, तो मैं उसके लिए भी और ऐसे अनेक अभियानों में देश के साथ समाज के साथ खड़े होने के लिए मैं आकाशवाणी के इन 90 वर्ष पूर्ण होने पर सारे ही देश की जनता को और विशेष रूप से आकाशवाणी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं।
0: आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विश्वसनीयता, व्यापक पहुंच और जन सरोकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है। आज आकाशवाणी देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों तक अपनी पहुंच रखता है। प्रसारण की भाषाई विविधता, व्यापक पहुंच और बहुआयामी कार्यक्रमों के आधार पर आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में अग्रणी स्थान रखता है। आज इसकी होम सेवा के अंतर्गत देश भर में 479 प्रसारण केंद्र कार्यरत हैं, जिनकी पहुंच भारत के लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 99% से अधिक जनसंख्या तक है। आकाशवाणी 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण कर देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यही व्यापकता और समावेशी दृष्टिकोण इसे देश के सबसे विश्वसनीय जनसंचार माध्यमों में से एक बनाता है। आकाशवाणी ने भारत की विविध भाषाओं, बोलियों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बस्तर के गांधी के नाम से मशहूर और समाज सेवा के लिए वर्ष 1992 में पद्मश्री से सम्मानित धर्मपाल सैनी ने कहा कि आकाशवाणी के समाचार सच्चे होते हैं। श्री सैनी का जन्म जून 1930 में हुआ था और उनकी उम्र अब करीब 96 वर्ष हो चुकी है।
2: आकाशवाणी का मेरा जीवित संबंध है वो चिंतन से शुरू होता है। आकाशवाणी के जो अधिकारी गण हैं वो मेरे पास आया करते थे और बातचीत तो खूब करते थे वो, लेकिन आखिर में मुझसे जो संक्षेप में जो आकाशवाणी के लिए दिया करती थी मेरी बातचीत, वो अक्सर शिक्षा के ऊपर और खेलकूद और जनता उसका कैसा रिस्पांस कर रही है इससे संबंध हुआ करते थे। तो मैं अंदर जंगलों में भी बहुत घूमता था, लेकिन मैं देखता था कि लोग बाग आकाशवाणी को बड़े चाव से सुनते हैं, और गांव-गांव में कहीं भी गया हूं तो मेरे जरूर कहते थे कि एक ये डब्बा हमको खरीदवा दीजिए। मैंने भी क्या करोगे डब्बे से, अरे बोले ये बहुत बात करता है, अच्छी अच्छी बात करता है, हमारे गांव की बात भी आती है। इस तरह से मैं उनके साथ में आकाशवाणी के संबंध में मेरी ये पहला मुलाकात गांव में हुआ करती थी। कभी कभी किसी भी गांव में गया तो उन्हें आकाशवाणी के डब्बों खरीदने की बात मेरे से अवश्य की है। दूसरा मैं उनसे पूछता था तुमको इसमें से क्या मिल रहा है, बोला इसमें थोड़े से उसको ज्ञान कहते हैं वो मिल रहा है, ये बातें बहुत बताता है, विचार करता है, इतने कोई तो हमसे बात करता ही नहीं है, हमसे तो जो बातचीत होती है इस डब्बे के द्वारा ही हमको मालूम पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम अपने घर में रखते हैं तो जो कुछ हमको ज्ञान मिलता है या हमारा दुनिया से जानकारी होती है वो इसी के द्वारा होती है, ये उनका पहला उत्तर हुआ करता था। दूसरा मैं कहता था भाई तुमको इसमें समय पसंद क्या आता है, बोला ये समाचार बहुत देता है और इसके समाचार सच्चे होते हैं, समय बड़ी बात ये है, जैसे दूसरे लोग समाचार देते हैं तो उसमें झूठ सच मिला के देते हैं, लेकिन ये एक साधन ऐसा

0: लिए जो सच्चे से सच्चा समाचार जैसा होता है वैसा के वैसा ही देने की कोशिश करता है। हमको ईश्वर की ओर विश्वास बहुत होता है।
1: समाचारों के प्रसारण की बात करें तो दिल्ली केंद्र से पहला न्यूज बुलेटिन 19 जनवरी वर्ष 1936 को प्रसारित हुआ था। आज आकाशवाणी 92 भाषाओं और बोलियों में रोज 600 से अधिक न्यूज बुलेटिन प्रसारित करता है। इसके अलावा अरबी, फ्रेंच, पश्तो और चाइनीज सहित 10 से अधिक विदेशी भाषाओं में भी आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अजय कुमार मंडावी को वर्ष 2023 में कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अजय मंडावी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों युवाओं को लकड़ी की नक्काशी और काष्ठ कला का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और आजीविका से जोड़ा है। अजय मंडावी ने कहा कि आकाशवाणी पहले जितना महत्वपूर्ण था उतना ही आज भी है।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से मेरा नाता उस उम्र से है जब मुझको ये समझ नहीं थी कि वो बड़ा सा रेडियो के अंदर कोई बैठ के गाते होंगे, छोटे छोटे लोग, ये ऐसा सोचता था मैं। और भाई साहब जब सेल चेंज करने के लिए जाते थे तो मैं उनके पास जाके पूछता था कि वो लोग कहाँ गए जो गाना गाते हैं उसके अंदर। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ 1970 से। 1993 में जब मैं जॉब में गया छोटे से गांव में, मेरे एक मित्र हैं आरिफ भाई, उसने कहा कि यार एक छोटा सा रेडियो खरीद ले, वो सबसे अच्छा है। तो रेडियो उस समय खरीद के मैं अपने साइट पे लेके चलता था। युवाओं के लिए कार्यक्रम चलता था जिसमें नॉलेजेबल चीजें बताई जाती थी, तो वो हर काम छोड़ के वो सुनते थे। आकाशवाणी आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तब था और आज भी मुझको प्रिय है। मैं रेगुलर सुनता हूँ इन सब चीजों को, या फिर हमारे घर में सुबह एक बार रेडियो चालू होता है तो वो कंटिन्यू रहता है। और जो प्रधानमंत्री ने मन की बात शुरू की और सब लोगों का जिक्र करना शुरू किया, तो ये पहली बार जब मैं सुना तो मुझको लगा कि यार मेरा जिक्र कब होगा। लेकिन ये सौभाग्य रहा कि 2023 में मेरा भी जिक्र हुआ मन की बात में। आकाशवाणी से बहुत सारी नॉलेज की चीजें हमको सुनने को मिलती है।
1: राजनांदगांव के रहने वाले डॉक्टर पुखराज बाफना भी साल 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टर बाफना ने कहा कि आकाशवाणी जन जन की आवाज है। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही आकाशवाणी सुनते आ रहे हैं और आज भी इसके फैन हैं।
3: मैं हूं डॉक्टर पुखराज बाफना, पद्मश्री, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। किसी भी संस्था के 90 वर्ष पूर्ण करना एक स्वर्णिम शताब्दी का इतिहास बनाता है। आज मेरी उम्र 80 साल की है। हमने बचपन से ही आकाशवाणी को सुना, वो जन जन की आवाज थी। चाहे वो पुराने गीत हो, समाचार हो, मनोरंजन का और समाचार पाने का एकमात्र साधन यही था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग चाव से आकाशवाणी सुनते हैं। मैंने स्वयं आकाशवाणी में, दूरदर्शन में अनेक अनेक कार्यक्रम दिए, खासतौर पर किशोर बच्चों के लिए, ट्राइबल एरिया क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी मैंने बहुत कार्यक्रम दिए। आज भी मैं आकाशवाणी का फैन हूँ और आज की तारीख में हम जब भी यात्रा करते हैं तो कार में हमारा अप्रतिम साथी आकाशवाणी ही होता है। बहुत शुभकामनाएं 90 वर्ष पूर्ण कर रहा आकाशवाणी, उसके लिए अनेकानेक मंगल कामनाएं।
1: आज आकाशवाणी देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों तक अपनी पहुंच रखता है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, नाटक, वार्ताओं, कृषि, युवा और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। किसानों के लिए प्रसारित कार्यक्रमों ने कृषि संबंधी जानकारी और आधुनिक तकनीकों के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी विश्वसनीयता और जनोन्मुखी प्रसारण सेवा के बल पर आकाशवाणी आज करोड़ों श्रोताओं के लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। खासकर प्राकृतिक आपदाओं के समय इसकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण और भरोसेमंद मानी जाती है। नारायणपुर के गढ़बेंगाल के रहने वाले जनजाति वाद्यंत्र निर्माण और काष्ठ शिल्प कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पद्मश्री से सम्मानित पंडी राम मंडावी अपने गांव के चबूतरे पर पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आकाशवाणी के सफर को याद करते हुए बताते हैं कि वे शुरू से ही आकाशवाणी द्वारा हल्बी और गोंडी में प्रसारित कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी इसलिए भी पसंद है क्योंकि रेडियो को लेकर कहीं भी जाया जा सकता है।
4: मैं तो

0: बचपन से ही सुन रहा हूँ, जब से आकाशवाणी वहाँ जगदलपुर में खुला, मैं एक तो सुनता ही था मैं ये, हम जो गांव कार्यक्रम आता था जगदलपुर से हल्बी में गोंडी में, और वो सब बताते थे वहाँ से धान में कौन सा दवाई कीड़ा उड़ा होने से छिड़कना है, सब्जी में क्या छिड़कना है, ये सब बताते थे। रेडियो था तो मैं शाम को चालू करता था, हमारा गोंडी का गाना भी आता था, हल्दी का गाना वाना आता था, वो लोग दौड़ दौड़ के मेरे पास आते थे रेडियो सुनने के लिए। एक कार्यक्रम देता था हमारा गोंडी में, बहुत पसंद आता था आकाशवाणी जगदलपुर से। हर किस्म का एक टीवी वगैरह आया है, रेडियो का क्या है, मतलब देश देहात में रेडियो को अपन कहीं बैल चराने ले गए उधर भी पकड़ के गए, कहीं काम कर रहे हैं लकड़ी का, हम लोग काम करते हैं वहाँ भी चालू करके अपन सुन सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसलिए ये अच्छा है।
1: इसी तरह इस वर्ष पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए रामचंद्र गोडबोले ने कहा कि आकाशवाणी का उनकी पीढ़ी में बहुत महत्व रहा है और पुराने समय में आकाशवाणी ही समाचार और मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था।
2: नमस्कार, मैं रामचंद्र गोडबोले, मैं बारसूर जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ मैं रहता हूँ, और यहाँ हम लोग वनवासियों के लिए आदिवासियों के लिए कुपोषण और बाकी मेडिकल प्रोजेक्ट चलाते हैं। आकाशवाणी का हमारी जो जनरेशन, हमारी जो पीढ़ी है उसमें आकाशवाणी का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि उस समय टेलीविजन तो था ही नहीं, आकाशवाणी से ही हम लोग समाचार जो मनोरंजन गीत सब सुनते थे। कुछ यादें आकाशवाणी के बारे में ऐसी, एक आपातकाल लागू हो गया वो समाचार हम लोगों ने आकाशवाणी से ही सुना था, और वो सारा दौर में बार बार समाचार सुनना आगे क्या हो रहा है भारत भर में, ये सब जानने का केवल एक ही जरिया था आकाशवाणी और समाचार पत्र। तो आकाशवाणी उस समय सुनते थे 11 बजे समाचार आता था, 11 बजे ऐसा समाचार सुना मैंने, अचानक समाचार आया कि इंदिरा जी की हत्या हो गई है, तो वो समाचार जैसे सुना एकदम स्तब्ध रह गए। और मनोरंजन की इसमें आकाशवाणी और का बहुत बड़ी भूमिका है। मेरी आयु 12-13 साल की होगी, 50-51 साल हो गए, आज भी मैं आकाशवाणी सुनता हूँ, दोपहर के गाने सुनना, शाम का गीत वो सुनना, तो बहुत आनंद आता है। शाम को रेडियो में समाचार सुनना, आकाशवाणी के सब लोगों को समाचार सुनना है, और फिर समाचारों के ऊपर हमारे दादाजी और वो बच्चे उनके बीच में संवाद चलता है, ऐसे आकाशवाणी की बहुत सारी यादें हैं। तो आकाशवाणी का तो आभारी व्यक्त करता हूँ इतने सालों के लिए, जीवन के अपने आनंद के क्षण ये आकाशवाणी ने हमको दिए हैं और आज भी वो हम आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी, आधुनिक तकनीक, FM प्रसारण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के माध्यम से नई पीढ़ी के श्रोताओं से भी लगातार जुड़ रहा है। समाचारों की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता ने इसे आम जनता के विश्वास का प्रतीक बनाया है। खेल जगत में छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने वाली पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम ने कहा कि आकाशवाणी ने हमेशा आगे बढ़ने का मौका और सम्मान दिया है।
3: आकाशवाणी भारत का सबसे पुराना और प्रमुख सार्वजनिक रेडियो नेटवर्क है, जो शिक्षा और खेल और मनोरंजन के लिए प्रमुख माना जाता है, कार्यक्रम प्रसारित कर देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाता है और अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। मेरे लिए आकाशवाणी का ये महत्व है कि जब भी मैं खेल के आया हूँ, पहला मतलब जो स्टार्टिंग एक खिलाड़ी के लिए होना चाहिए, आकाशवाणी हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया है, हमारी बातें सुना है, सम्मान दिया है खेल के क्षेत्र में। और जब भी मैं खेल के आई हूँ तो मैं अपने खेल को आकाशवाणी से साझा करी हूँ, टीम के साथ हमने कैसा खेला, हमारी जीत कैसी हुई, और हर खिलाड़ियों को आकाशवाणी पूछता है, आगे बढ़ता है, जिससे हर खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस भी आता है कि भाई हम इतना खेल के आ रहे हैं तो हमें कहीं मौका मिलता है अपनी बात कहने का। तो आकाशवाणी मेरे जैसे हर खिलाड़ियों को, मुझे तो दिया ही दिया, और हर खिलाड़ियों को मौका देता है और उनकी बातों को पूरे देश में सुनाता है, तो मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, वो इसी तरह खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहे।
1: समाज सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुकी शमशाद बेगम ने कहा कि आज इतने संचार माध्यम होने के बावजूद आकाशवाणी हर वर्ग के लोगों में लोकप्रिय है।
4: मैं पद्मश्री शमशाद बेगम गुंडरदी, जिला बालोद की रहने वाली हूँ। आप सभी को जय जोहार। आकाशवाणी कार्यक्रम मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वरोजगार से जुड़ी मेरी बहनों की कहानी और किसान भाइयों के लिए नई नई तकनीकी जानकारी, ये सब भी मुझे बहुत पसंद आती है। आज संचार के इतने माध्यम होने के बावजूद भी आकाशवाणी हर वर्ग के लोगों में

0: लोकप्रिय है। गांव गांव में आज भी लोग आकाशवाणी कार्यक्रम की ज्ञानवर्धक जानकारियों को और मनोरंजक बातों को सुनते हैं। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।
1: वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित लोक और सूफी गायक मदन चौहान ने कहा कि आकाशवाणी गांव गांव तक समाचार से लेकर गीत संगीत और विभिन्न कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाता रहा है।
2: आकाशवाणी अपने छत्तीसगढ़ का एक सपना है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था। तो उस जमाने में जब आकाशवाणी यहाँ आया और शुरू में एकदम आकाशवाणी का जो टावर आया, टावर आके जो खमतराई में लगा, क्योंकि पहले स्टूडियो नहीं था तो वहीं करते थे रिकॉर्डिंग उस जमाने में। और हम लोग जब संगीत के क्षेत्र में उस समय उभरते हुए लोग थे हम लोग, तो हम लोगों को पहला कार्यक्रम मिला वहाँ। और हमसे पहले हमको पता लगा कि कुछ माह पहले बेरे स्टील प्लांट के लिए गीत बनाए थे, उसको आकाशवाणी रायपुर रिकॉर्ड करके प्रेजेंट किया था। उस समय के गायक थे रहमान शरीफ थे। उसके बाद सेकेंड रिकॉर्डिंग हम लोगों की, तो उस जमाने में जो हम लोगों का प्रसिद्ध हुआ आकाशवाणी से गाना चना के दार राजा चना के दार रानी, ये एकदम शुरुआती दौर का ही है। एकदम आकाशवाणी रायपुर के दरवाजे के पास से जब लोग गुजरते थे तो सोचते थे कि हमको कब यहाँ चांस मिलेगा। आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दूंगा। आकाशवाणी की शुरुआत अच्छे दौर में हुई थी, जब वो एक ऐसा दौर था कि एक माध्यम यही था अपना आकाशवाणी, जो गांव गांव तक हर चीजों को समाचार से लेकर जितनी भी कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट होते हैं उसको लोगों को सुनने का मौका मिलता था। आकाशवाणी से गाते गाते पद्मश्री तक पहुंचा, वो एक ऐसा दौर था, शुरुआती दौर था हम लोगों का। इतने सारे मुकाम तय करके लोकगीत सुगम संगीत गीत गजल भजन सब चीजों को सीख कर आज इस मुकाम तक हम पहुंचे। मेरे नजरिए से आकाशवाणी पहले भी था और आज भी है और सदा रहेगा।
1: साल 2012 में पद्मश्री से सम्मानित फुलबासन बाई यादव ने कहा कि आज भी आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों और समाचारों को गांव गांव तक सुना जाता है।
3: जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम फुलबासन भाई यादव है। हमारे आकाशवाणी आज 90 साल पूरा कर चुके हैं और वो आकाशवाणी में अपन बचपन के याद हो, चाहे किसान के बात हो या महिला मन के बात हो, लगातार गांव गांव मन में सुनेल मिलते देखेल मिलते। आज भी गांव के महिला मन किसान भाई मन बुजुर्ग मन हा रेडियो सुनते, और मैं तो खुद आकाशवाणी के दोस्त हरो, मैं स्वयं वहाँ गए हूँ और साथ साथ में रेडियो हमारा गाड़ी में भी हमार लगातार समाचार के बात हो या स्वास्थ्य के बात हो या शिक्षा के बात हो या महिला मन के महिला सशक्तिकरण के बात हो, लगातार नया नया चीज मिलते और वस्ताओं में आकाशवाणी हम सबके शान बान हरे और एक से अपन आप लोग भी महसूस होते कि हम दुनिया की चीज रेडियो के माध्यम से सुन सकते। आप समस्त आकाशवाणी के पूरा तीव्र गाढ़ा गाढ़ा बधाई शुभकामना, जो 90 साल पूरा करना ही बहुत बड़ी बात है और लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते रहा है, दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ते रहा है।
1: दुर्ग जिले के रहने वाले पंथी लोक नर्तक और कलाकार पद्मश्री सम्मान पा चुके राधेश्याम बाल्ले ने कहा कि बहुत सारे कलाकारों को आकाशवाणी के माध्यम से देश और दुनिया में प्रसिद्धि मिली है।
4: मैं राधे संभाले पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के निवासी हर, जो कि मैं बचपना से आकाशवाणी रेडियो ला सुना आवा था हमारे रायपुर आकाशवाणी केंद्र ला। हम जब नान नान बचपना में रहा छोटे छोटे तो हमारे घर बड़े वाले रेडियो रहा है तुलसी चौरा में मड़ा है और सब घर भर के रेडियो ला सुना। लेकिन 1972 से लगातार मैं आकाशवाणी के श्रोता रहा, आकाशवाणी ला सुनता और आकाशवाणी के बहुत सारे कार्यक्रम फोन इन फरमाई से लोक रंजनी कार्यक्रम के मैं दीवाना रहा हूँ। हमेशा सुबह शाम 12:30 बजे जैसे ही आकाशवाणी चालू है वैसे ही रेडियो चालू करके तुरंत बैठ जाऊँ। शाम के 7:20 भी लोक रंजन के कार्यक्रम में सुनत रहन, फोन इन फरमाइसी कार्यक्रम में सुनन और बहुत सारे कार्यक्रम बहुत सारे कलाकार ल भी आकाशवाणी के माध्यम से देश और दुनिया देखे पर मिले है। जैसे स्वर्गीय देवदास बंजारे जी, अमृता बारले, पद्म भूषण डॉक्टर त्रिजन भाई, झाड़ू राम देवगन है, स्वर्गीय पूना राम निषाद जैसे कलाकार मल्ला आगे बढ़ाए के माध्यम हमारा आकाशवाणी हरे। मैं खुदे आकाशवाणी के भी हाई ग्रेड के कलाकार हरा, वो सैकड़ों गाना आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से रिकॉर्डिंग हुए जो देश और दुनिया में बजे है। और मैं तो कहूँ आकाशवाणी है ओरिजिनल स्वर के स्वर ला छान करके निकालते है कलाकार मल्ला देश और दुनिया में बगड़ा के काम हमारा आकाशवाणी प्रसार भारती के करे। मैं आकाशवाणी ला बहुत बहुत धन्यवाद और प्रसार भारती ला बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता, धन्यवाद।
1: आज जब आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है, तब यह केवल एक प्रसारण संस्था की वर्षगांठ नहीं है, बल्कि उस भरोसे उस विरासत

और उस आवाज का उत्सव है जिसने पीढ़ियों को एक सूत्र में बांधे रखा है। बदलते समय और तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए आकाशवाणी आज भी जन जन की आवाज और राष्ट्र की धड़कन बना हुआ है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति थी प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की। आकाशवाणी का ये केंद्र
1: है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग है अंजनी कुमार पांडे की। प्रस्तुत करता है परमेंद्र कुमार।

0: स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग और विविधा के विविध रंगों से सजी परिक्रमा की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी। आज के अंक में
1: संपन्न हुआ विश्व पर्यावरण दिवस, आयोजित हुए अनेक जागरूकता कार्यक्रम।
2: संपन्न हुआ विश्व बाल सुरक्षा दिवस, आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम।
1: हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम, पत्रकार हैं लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ।
0: श्रोताओं, 1 जून को विश्व बाल सुरक्षा दिवस संपन्न हुआ। जैसे जैसे दुनिया में नए नए साधनों संसाधनों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे उनके प्रभावों को जानने और समझने की चुनौतियां हमारे सामने लगातार पेश आती रहती हैं। बच्चे इंटरनेट की दुनिया में खोते चले जा रहे हैं, वहां ज्ञान और मनोरंजन के साथ असुरक्षा भी है। इसके अतिरिक्त बच्चों की सुरक्षा को लेकर अनेक ऐसे सवाल हैं जिनसे दोचार होने की जरूरत है। सामाजिक संस्था मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनोज भारती से हमने बातचीत की।
3: बहुत बहुत ज्यादा असुरक्षित हो चुके हैं बच्चे सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से। जी, एक रूप देखें तो आज जो है बच्चों की पढ़ाई है या जो जानकारियों के लिए वो आश्रित भी है। जी, कि वो इंटरनेट उन्हें चाहिए, उन्हें मोबाइल चाहिए। दूसरी तरफ देखिए तो इंटरनेट पर ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो कदापि कोई नहीं कह सकता कि बच्चों के लिए उचित है या बच्चों को देखना चाहिए, लेकिन वो उन्हें दिखाया जाता है। जी, मार्केटिंग का जमाना हो चुका है। मार्केटिंग में आप मोबाइल देखिए चाहे टेलीविजन देखिए, वो ऐसी स्थिति आ गई है कि बच्चों को ये एक तो वो सोचने की स्थिति में रहते नहीं है। जी, उस लेवल पे कि वो अपना भला बुरा समझ सकें। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि बच्चे अपने हित की बात नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन एक गाइडेंस की आवश्यकता हमेशा बच्चों को होती है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में वो गाइडेंस से कहीं ना कहीं बच्चे दूर हो जाते हैं। जी, साइबर क्राइम आप देख रहे हैं आज हमारे समाज में, पूरे विश्व के लिए, हम अपने देश की ही बात ना करें, अपने समाज की बात ना करें, पूरे विश्व के लिए साइबर क्राइम जो है वो बच्चों के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका है। हम अपने शहर की बात करें तो बहुत से अपराध हमारे बच्चों के ऊपर हो रहे हैं, बहुत से लोग पकड़े भी जा रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है। जी, लेकिन ये जो अपराध बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं मोबाइल इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से भी बढ़ रहे हैं।
4: अच्छा मनोज जी, आप देखिए कि बच्चे जो है वो आइसोलेट हो जा रहे हैं। मोबाइल हाथ में आते ही सारी दुनिया से कट के एक वर्चुअल, एक आभासी दुनिया में चले जा रहे हैं और उसे ही सही मान बैठे हैं बच्चे। कैसे निकला जाए इस परिस्थिति से?
3: देखिए, इसके लिए तो पूरे समाज को प्रयास करना होगा, उनके परिवार को।

0: प्रयास करना होगा, चाहे उनके माता पिता हों, उनके भाई बहन हों, शिक्षक हैं, सरकार है, ये सबको मिलजुल के प्रयास करना होगा। क्योंकि जो आभासी दुनिया की बात आपने की ना, बच्चे क्या बड़े भी एक लत लग गई है। देखिए, हमारी संस्था के माध्यम से बच्चों के हित में जो भी कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। हेल्पलाइन की बात की है तो चाइल्डलाइन का हेल्पलाइन नंबर जो पहले था 1098, तो जो 112 पुलिस की सर्विस थी, कोई भी बच्चों को यदि परेशानी हो रही है या किसी अभिभावक को बच्चों के प्रति परेशानी है तो आप 112 पे कॉल करके बच्चों की मदद कर सकते हैं, बच्चे भी मदद ले सकते हैं। और जहां तक हमारी बात की आपने, तो काउंसलिंग के लिए हम सदैव तत्पर हैं। जब भी आपको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है तो आप हमारे संस्था में आ सकते हैं, हमसे फोन से संपर्क कर सकते हैं
1: जी।
0: ये मदद जो है वो एक फौरी मदद है, लेकिन असली मदद है कि बच्चा उस स्थिति में ना जाए
1: जी।
0: उसके लिए समाज को, हमें, आपको, सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा।
1: निश्चित रूप से अगर हम समाज में एक संदेश दे सकें, एक मैसेज दे सकें कि बच्चों के प्रति आज के समय में विशेष तौर पर सजगता बरतनी होगी, तब जबकि बच्चे भी बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, वो इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस संपन्न हुआ। 1826 में इसी दिन उदंत मार्तंड के नाम से हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। इस दिन की स्मृति में हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। आज हिंदी पत्रकारिता अपने शिखर पर है। अनेक हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं जिनका समाज पर गहरा असर है। हिंदी के पत्रकारों को दुनिया में सराहना मिल रही है। इसके बाद भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे कि हमारे पत्रकार साथी लगातार दो चार होते रहे हैं। युवा पत्रकार श्री अनुज शर्मा कहते हैं,
3: बेशक ये काफी चुनौतीपूर्ण पेशा है, और चाहे सत्ता से सवाल हो या प्रशासन को आईना दिखाना हो, पत्रकारिता काफी मुश्किल पेशा है। सच जो है वो सामने लाना, यही एक पत्रकार का धर्म है
1: जी। आपकी जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है।
3: बेशक एक पत्रकार के रूप में जवाबदेही तो बिल्कुल होती ही है
1: जी।
3: क्योंकि पूरे समाज की निगाहें आप पर होती है, पूरे परिवेश की निगाहें आप पर होती है। ये है कि आप अगर कोई भी गलत चीज प्रस्तुत कर दें तो उसका समाज पर बहुत नकारात्मक असर भी होता है
1: जी।
3: तो इन सारी चीजों से बचाकर और बहुत सतर्कता पूर्वक काम भी करना पड़ता है।
1: तो क्या पत्रकार को किसी तरह की सुरक्षा मुहैया है?
3: देखिए, पत्रकार को वर्तमान समय में कानूनी रूप से सुरक्षा कहकर तो एक आम नागरिक को जो सुरक्षा है वही उपलब्ध है
1: जी।
3: तो कानूनी सुरक्षा तो एक आम नागरिक जितनी ही है
1: जी।
3: पर हाँ, ये है कि पत्रकार होने से आपका समाज में एक स्थान थोड़ा सा बाकी लोगों से अच्छा हो जाता है, तो लोग आपसे अपेक्षा रखने लगते हैं
1: जी जी।
3: एक पत्रकार के रूप में तो वो एक पेशा, उस पेशे का एक सम्मान होता है, उस सम्मान के चलते आपको एक लोगों का सहयोग जरूर मिल जाता है।
1: जो आर्थिक परेशानियां हैं उससे एक पत्रकार कैसे जूझता है?
3: देखिए, पत्रकारिता को बतौर पेशा मैंने काफी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, चूंकि मेरे पिताजी भी पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए रहे
1: जी।
3: और आर्थिक समस्याएं जो है वो इस पेशे में शुरुआत से रही है, बशर्ते कि आप किसी बड़ी जगह पर, किसी बड़े पद पर हूँ, उन चीजों को छोड़ दें तो आप यदि नौकरी करते आए हैं एक संस्थान में तो आर्थिक रूप से आप बहुत सबल नहीं हो पाएंगे एक पत्रकारिता के बतौर एक पत्रकार एक पेशे में
1: जी।
3: वर्तमान समय में नई जो पत्रकारिता की के तरीके हैं, जिनमें कि हम YouTube को ले लें या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ले लें, उन प्लेटफॉर्म्स में ने थोड़ा सबल जरूर बनाया है। लोगों से एक अपील या अनुरोध जरूर हम करना चाहेंगे कि आप जो भी समाचार माध्यम देखते हैं, उपयोग करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या

0: टेलीविजन पत्रकारिता हो, आप लोगों को भी किसी खबर को जानने से पहले, किसी खबर को सच मानने से पहले उसको एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए किसी दूसरे सच सही प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वर्तमान समय ऐसा है कि सोशल मीडिया का दौर है और कुछ मिनटों में ही कोई खबर सच्ची या झूठी फैल सकती है। तो उन चीजों को बतौर एक दर्शक भी एक जिम्मेदारी है कि उसको चेक कर लेना चाहिए।
1: अनुज, आपने हमसे बातचीत की, यूं तो बातचीत करने के लिए ढेर सारे मुद्दे हैं, लेकिन समय
0: जी
1: की
0: जी
1: मर्यादा है और आपने हमें अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस संपन्न हुआ। पर्यावरण के दोनों ही स्वरूपों, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण को बचाना हमारी जवाबदेही है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे निवास करते हैं, इसके पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर वर्ष हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। श्रोताओं, आज मानव जाति के समक्ष पर्यावरण ही नहीं, अब तो पूरी धरती को ही बचाने की चुनौती पेश हो रही है। कैसे जीवों और मनुष्यों की रक्षा की जाए, ये सबसे कठिन और बड़ा सवाल है। अनेक पर्यावरणीय चुनौतियां हैं जिनका जिक्र लोग बड़ी चिंता के साथ कर रहे हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी और भूगोल के प्रवक्ता श्री योगेश साही कहते हैं,
3: स्थानीय स्तर पे देखें तो नेचर के साथ हम पर डे हम जो छेड़छाड़ कर रहे हैं या अनवांटेड जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको इंक्रीज करने में जो है हमारा दिन भर जो हमारा रोल रहता है, ये सब कुछ मिला दिया जाए तो इसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे मतलब नेचुरल लेयर को हटाकर और सीमेंटीकरण तेजी से करते चले जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि अनवांटेड पॉल्यूटेंट का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बढ़ती जा रही है, लग्जरियस होती जा रही है, वैसे वैसे हम अनवांटेड पॉल्यूटेंट को इस एटमॉस्फेयर पे छोड़ रहे हैं। जैसे आपको तो ये जानकारी होगी कि एसी चलना, चाहे बाइक चलना या फोर व्हीलर चलना, इस सबसे अनवांटेड पॉल्यूटेंट निकलते हैं और वो कहीं ना कहीं जो पार्टिकल डस्ट पार्टिकल के साथ जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो हैंग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसे पॉल्यूटेंट एरिया, ऐसे माइनिंग एरिया में ये चीजें बिल्कुल विजिबल होती हैं, लेकिन जहां माइनिंग नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, वहां पर विजिबल नहीं है, फिर भी वो पॉल्यूटेंट्स हमारे सामने हैं।
1: मतलब सामान्य भाषा में अगर आपकी बात को मैं कहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि औद्योगिक प्रदूषण और जो हम लगातार वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कंडीशनरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि इन्होंने वातावरण को गर्म कर दिया है।
2: विज्ञान परास्नातक श्री राज्य रंजन मलतियार,
4: बेमौसम बारिश होना, तूफान आना, सूखा, कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ना, ये सब कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो हमने डिस्टर्ब किया है तो उसका परिणाम है। कहीं ना कहीं ये जो व्यापक वैश्विक जो औद्योगिकीकरण है इसके वजह से, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है और अब तो समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि पृथ्वी को ही हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। इसे मैं इस ढंग से आपको समझाना चाहूंगा, ग्लोबल वार्मिंग का संबंध जो है, पृथ्वी के चारों ओर हमारी कुछ गैसें हैं जो कि एक वायुमंडल का निर्माण करती है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से 6 गैसें हैं, मुख्यतः जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जल वाष्प हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए। तो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा योगदान है। यद्यपि ये गैसें यदि ना हो तो यहाँ जीवन भी संभव नहीं है। सूर्य से जो भी किरणें प्राप्त होती हैं सबसे पहले हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत के द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं और कुछ किरणों को ये इन गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जिसके वजह से हमें उष्मा प्राप्त होती है। पर इनका एक रेशियो, एक संतुलन बना हुआ होना चाहिए। व्यापक औद्योगिकरण के से लेके और अभी तक में हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया है और हम इस टेम्परेचर को अधिकतम 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने दे सकते हैं किसी भी कारण से।
2: साथियों, धरती और इसके पर्यावरण को बचाकर रखने के विभिन्न चुनौतियों से जूझते हुए हमें अनेक पहलुओं को समझना होगा और उसके अनुरूप अपनी जीवन शैली और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। इसी भरोसे के साथ हम आज की

0: श्रोताओं, आकाशवाणी अंबिकापुर इस वर्ष अपनी स्थापना के बाद के 50वें वर्ष में यानी स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा के इन 50 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों, कलाकारों, साहित्यकारों, लोक गायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इन सभी प्रस्तुतियों को सुनने वाले हमारे श्रोताओं ने आकाशवाणी अंबिकापुर को अपना भरपूर स्नेह और सहयोग दिया है। 26 दिसंबर 1976 को जब सरगुजांचल में इस केंद्र की स्थापना की गई और इसका विधिवत उद्घाटन किया गया, तब से लेकर आज तक लगभग आधी सदी गुजर गई। उस समय जो लोग युवा थे, वे अब 50 सालों बाद उम्र की ढलान पर हैं। इन लोगों ने स्वर्ण जयंती वर्ष तक की इस यात्रा को देखा है, जिया है। ऐसे में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम उन व्यक्तियों को याद करें, उन शिल्पियों को याद करें, उनसे बातचीत करें और आने वाले समय के लिए उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। इसी संदर्भ में हमने एक नए कार्यक्रम स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री की शुरुआत की है, जिसमें ऐसे लोगों से हम बातचीत करेंगे जिनकी आकाशवाणी अंबिकापुर के स्वरूप निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शानदार भूमिका रही है। तो श्रोताओं, आज की इस कड़ी में हम बातचीत करने जा रहे हैं नगर के ख्यातिनाम गजलकार, वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम कश्यप बेचैन से। आकाशवाणी अंबिकापुर की स्थापना से लेकर बहुत लंबे समय तक श्याम कश्यप बेचैन यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे, एक सजग श्रोता रहे और समय समय पर आकाशवाणी को अपने बेशकीमती परामर्श से नवाजते भी रहे। तो आइए स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में सुनते हैं श्री श्याम कश्यप बेचैन से अंजनी कुमार पांडे की बातचीत का संपादित अंश।
1: बहुत उत्साहजनक उस समय वातावरण था और बहुत यहाँ लोग जो है आकृष्ट थे कि भाई हमारे यहाँ कुछ हो रहा है। उत्सुकता लोगों में बहुत थी और हुआ भी वैसे ही। आकाशवाणी केंद्र जब यहाँ खुला तो उसके प्रथम डायरेक्टर जो है अमीर खान फी साहब जो है थे, व्यवस्था से लेकर के पूरा इंतजाम करना स्टेशन का, इसके बाद कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाना, नए नए लोगों को आकाशवाणी में लाना, ये बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने किया। और अमीर खान भी साहब की मेहनत रंग लाई, स्टेशन बहुत चमक गया। यहाँ के लोग जो है आकाशवाणी क्या है उसका महत्व समझने लगे और यहाँ के जो लोकल कलाकार थे, जो स्थानीय कलाकार थे, उनको भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अच्छा मौका मिला। सब खुल करके आकाशवाणी में कार्यक्रम अपना देने लगे और बड़ी ही अच्छी व्यवस्था यहाँ रही। हम लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा, जो साहित्य मंडली थी उसके लिए भी एक बहुत सुनहरा अवसर के रूप में आकाशवाणी केंद्र जो है काम किया। और हमारे इष्ट मित्र भी सब यहाँ के जो थे, टेक्स से लेके डायरेक्टर से लेके और ऑपरेटर से लेके सब लोगों से अच्छा संबंध रहा। और कलाकार भी जो आए थे म्यूजिक में, जो वाद्य यंत्र वाले कलाकार, वो भी एक से एक थे। और इसके बाद आकाशवाणी पूरे भारत वर्ष की जितनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं उनको अंबिकापुर में कंसर्ट के द्वारा मंच में ला करके यहाँ के लोगों को का मनोरंजन जो किया गया वो भी सराहनीय है। इस तरह बहुत अच्छा वातावरण था।
0: अच्छा श्याम कश्यप जी, कंसर्ट की बात की आपने, तो मुझे याद है कि पद्मश्री अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब भी यहाँ आए थे और एक से अधिक बार उनका आगमन यहाँ हुआ।
1: हाँ हाँ, हुआ ना, यही से चमके ही
0: जी।
1: और वो गजल जो है, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, ये जो अपने अपने अमीर खंपी साहब जो थे उनकी गजल थी, इसी से मशहूर मकबूल भी हुई है।

0: अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन
1: जी
0: अंबिकापुर को, इसीलिए वो भी बहुत तरफ देते रहे, मानते रहे,
1: जी
0: अभी
1: जी
0: तक वो मानते हैं वो।
1: शारदा
0: सिन्हा भी आई और बहुत अच्छे अच्छे शायर कवि लोग भी आए,
1: जी
0: बड़ा अच्छा रहा यहाँ। जितने मशहूर कलाकार उस दरमियान के थे सब आए यहाँ।
1: शारदा सिन्हा
0: अच्छा
1: जी आई और मोहम्मद खलील भी आए यहाँ पर।
0: खलील भी आए, हाँ खलील
1: जी
0: भी आए बनारस से,
1: जी
0: और
1: जी
0: भी लोग आए, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। कथक के भी आए, नृत्य के भी आए, हर कला के मतलब हर क्षेत्र के लोग आए, और साहित्यिक कार्यक्रम तो होता रहा, वार्ताएं वगैरह तो होती ही रही।
1: आप लोग कैसे जुड़े इससे, आपका जुड़ाव कैसे हुआ आकाशवाणी अंबिकापुर से?
0: अभी कभी होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, और अमीर खनवी साहब जो अच्छे गजल वो थे, अच्छे शायर थे, अच्छे अदीब थे, वो कहने का मतलब बहुत अच्छे नगमा निगार भी थे, तो सब बहुत उनसे बहुत हम लोगों को सीखने का मौका मिला
1: जी।
0: अदब क्या है, उर्दू अदब क्या है, इसके विषय में गहराई से जानने को मिला।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर का जो स्वर्ण काल था, जिसे हम कह सकते हैं, जब आप लोग अपना कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया करते थे, क्योंकि मनोरंजन के और मीडिया के दूसरे माध्यम यहाँ नहीं थे, रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जिससे जन सामान्य जुड़ा हुआ था, तो जब आप लोग कार्यक्रम प्रस्तुत करके निकलते होंगे और बहुत बड़ी संख्या में श्रोतागण उसे सुना करते होंगे, तो आप लोगों को कैसा लगता होगा?
0: बहुत अच्छा लिसनिंग अच्छी थी, लोग शहर में प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते थे
1: जी,
0: वो बताते थे, और इसके बाद हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता था आपस में, तो कभी गोष्ठियां भी हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त ज्यादा देखिए ग्रामीण क्षेत्र में हम देखा, यहाँ जो लोक कलाएं हैं उनको भी प्रश्रय देने में आकाशवाणी बहुत आगे रही। गाँव वाले बड़े उत्सुकता से मादर बजाते हुए बहुत स्वागत करते थे, आकाशवाणी की गाड़ियां जाती थी जब वहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, गांव वालों के लिए उत्सव का दिन होता था वो।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर की स्थापना के उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य था कि अंबिकापुर जो है वो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ जो लोक संगीत है, यहाँ की लोक परंपराएं हैं, उसे कैसे संरक्षित रखा जाए। बड़ा रेडियो स्टेशन खोला, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का परिवर्तन रेडियो से हो सका?
0: बहुत हुआ, कला संगीत जो यहाँ की स्थानीय है उसमें निखार आई, अब लोग जो है इसके बाद लोग चेतना जागरण भी हुआ, रोज समाचार सुनना समझना, आधुनिक दृष्टि लोगों में जागृत हो गई, उनमें कुछ स्वाभिमान का भाव भी आया, तो अच्छा लगने लगा। गांव वाले आते थे अपना ही मादर हुए लेके यहाँ आते थे, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। अब तो कम हो गया क्योंकि भाई जमाना भी थोड़ा सा पलटी खाया है, पर जो भी है ठीक है, आज भी रेडियो का जमाना है, सुनते हैं।
1: चौपाल कार्यक्रम आप सुना करते थे?
0: हाँ चौपाल कार्यक्रम बहुत अच्छा था, कृषि विषयक, उसमें जो है
1: जी
0: ज्ञान लोगों को दिया जाता था, गांव वालों को बताया जाता था खेती कब किया जाए, कैसे किया जाए, आज बीज और दवाइयों के विषय में भी जानकारी दी जाती थी, कब बदतर है ये भी बताया जाता था, कब बोने का समय है, बदतर उसको बोलते हैं क्या, तो सब, और मौसम की भविष्यवाणी से भी लोग आगाह हो जाते थे। इस तरह से खेती में भी लोग प्रोग्रेस किए।
1: अच्छा बिचिन जी, मुझे सुनने में आता है कि एक आकाशवाणी का वो दौर भी था जब दो तीन परिवार चार परिवारों के बीच में एक रेडियो हुआ करता था, और शाम का समय होते ही लोग रेडियो रख करके और गांव के बड़े बुजुर्ग युवा सब एक साथ इकट्ठा हो करके रेडियो सुनते थे।
0: सुनते थे
1: उसको। क्या आप उस दौर को देखे हैं?
0: एक जमाना ऐसा था
1: जी,
0: गांव में एक ही रेडियो है और सुन रहे हैं लोग
1: जी,
0: बाद में तो घर घर रेडियो हो गया, रेडियो स्टेशन के आने के बाद
1: जी,
0: हर रजवारी बारात में देखते थे रेडियो टांगे हुए, साइकिल में चढ़ के 20 लोग 20 रेडियो है साइकिल में टांगे हुए, एक तरफ रेडियो ट्रांजिस्टर टंगा है, एक तरफ टार्च टंगा है, और साइकिल में बारात करने के लिए जो लोग जा रहे हैं ऐसा भी दृश्य देखने को मिलता था। फिर तो छोटा होने लगा रेडियो ना, पहले तो मेरे घर में रख के देखते थे
1: जी, पहले

0: बहुत बड़ा
1: का
0: आकार में हुआ करता था।
1: हाँ बहुत बड़ा आकार में। हमारे यहाँ तो रेडियो आया था 54-55 में, तो एरियर लगा था दोनों तरफ, और बेटरा बहुत बड़ा बड़ा बेटरा लगा करके रेडियो को सुना जाता था। कुछ ही स्टेशन पकड़ में आते थे और उसमें भी वेट करना पड़ता था कि फलाना अभी भागवीर भारती 4 बजे है तो 4 बजे लगाना पड़ता था। यानी बहुत दुर्लभ, पर यहाँ सरगुजा में सुलभ हो गया, वो तो बड़ा यहाँ लोग उसका बहुत आनंद उठाए, बड़ा अच्छा रहा।
0: अच्छा, आपके कई साथियों ने आकाशवाणी अंबिकापुर में अधिकारी के तौर पर काम किया, उनमें से किसी को याद करना चाहेंगे?
1: अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे परम प्रिय मित्र तपन बनर्जी, उनकी भूमिका बड़ी अच्छी रही। आकाशवाणी को बड़ा उनसे सहयोग मिला, बड़ा काम किए आकाशवाणी का, और भी यहाँ लोग किए और अच्छी भूमिका रही यहाँ के लोगों की। युवा साथी उस समय युवा थे लोग, वो भी जुड़े रहे आकाशवाणी से, बड़ा अच्छा उस समय का वातावरण था, बहुत अच्छा था। आकाशवाणी से जुड़ करके बहुत लोग अपना समय और ज्ञान को बढ़ा।
0: ये जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, हाथ में मोबाइल है और लोग तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना समय बिता रहे हैं। मोबाइल देखने का आलम तो ये है कि लोग एक बार सर झुका रहे हैं तो एक एक घंटे तक, दो दो घंटे तक सर झुकाए झुकाए मोबाइल देख रहे हैं। ऐसे में आप रेडियो को कहाँ पाते हैं और रेडियो को अब क्या करना होगा?
1: भाई अब तो ये है ना, दिल को बहलाने का स्टाइल तो है, कुछ नहीं है, हाथ में मोबाइल तो है।
0: मोबाइल तो है, जी जी, क्या बात है।
1: तो आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है, फिर भी रेडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। देखिए ये बात है, टीवी वगैरह जितने हैं सब, लगभग सब जितने चैनल हैं देखते ही रहते हैं हम लोग, पर जो शुद्धता रेडियो कार्यक्रम में न्यूज से लेकर और कार्यक्रम में मिली वो नहीं है उसमें
0: जी।
1: उच्चारण की शुद्धता जो है
0: जी,
1: वो आकाशवाणी के जो वक्ता थे उन्हीं में थी, उन्हीं में है। बाकी तो सब लोग काम चलाऊ हिंदी में काम चला रहे।
0: मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि हिंदी की शुद्धता, हिंदी की प्रस्तुति, ये सब कुछ रेडियो ने अब तक जिंदा रखा है।
1: जिंदा रखा है, अभी भी जिंदा है रेडियो में। बाकी जगह तो भाई सब सब जो है ये जैसे आकाश से सही बूंद गिर रही है पर जमीन में डबरे में आकर के डबरा का रूप धारण कर ले रही है, वैसे ही वाणी का भी हो गया है।
0: जी जी, आपकी चिंताएं तो जायज हैं जी।
1: हाँ तो इस तरह से आकाशवाणी अभी भी सर्वोत्तम है भाषा के नाम पर, अभी भी उसकी भाषा जो है हिंदी भाषा को बहुत अच्छे ढंग से आकाशवाणी सुरक्षित रखी।
0: बेचैन जी, मन तो है कि आपसे लंबे समय तक बातचीत की जाए और आकाशवाणी के इस 50 साल के परिवेश को और गहराई से समझा जाए, लेकिन समय की एक सीमा है। किसी और मौके पर, किसी और दिन हम फिर से बातचीत करेंगे। आपने अपना समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये थे अंचल के मशहूर गजलकार साहित्यकार श्री श्याम कश्यप बेचैन। उम्मीद है यह बातचीत आपको पसंद आई होगी। स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री कार्यक्रम की अगली कड़ियों में हमारे साथ होंगे कुछ और मेहमान। तो हर सप्ताह सुनते रहिए कार्यक्रम परिक्रमा विविधा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिक्रमा विविधा, जिसमें वाचन स्वर और प्रस्तुति सहयोग अंजनी कुमार पांडेय का और प्रस्तुति थी प्रमेंद्र कुमार की। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

श्रोताओं नमस्कार। गुंजन के आज के अंक में मैं खुशबू अपने सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 8 जून है, विश्व महासागर दिवस। तो हम आज बात करेंगे महासागरों के महत्व के विषय पर। महासागर केवल जल का विशाल भंडारण ही नहीं है, बल्कि जीवन का आधार भी है। ये हमें स्वस्थ वायु प्रदान करने में सहायता करते हैं और पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखते हैं। वर्षा का प्रमुख स्रोत होने के कारण महासागर खेती और पेयजल की उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, बात और भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं फिल्म तारा रम पम की यह प्यारी सी गीत सुनिधि चौहान एवं शान की आवाज।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: साथियों आज के कार्यक्रम गुंजन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं महासागरों के बारे में साथियों महासागर प्रकृति का अमूल्य उपहार है और लगभग पृथ्वी का एक तिहाई हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है महासागर जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते ही हैं लेकिन इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती हैं जो जैव विविधता को भी बढ़ाते हैं बातें आपसे जारी रखेंगे पर इससे पहले आइए सुनते हैं क्रिस्टी स्ट्री सैम बट एवं मिथुन की आवाज़ में मर्डर 2 का यह प्यारा सा गीत

साथियों, महासागरों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, परंतु यह कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करके पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री व्यापार एवं परिवहन के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। महासागर लहरों की मधुर गुंज, अतः जलराशि और प्रकृति की अनंत शक्ति का प्रतीक है। ये हमें विशाल सोच, धैर्य और निरंतरता से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। साथियों, बात और भी करेंगे, लेकिन आइए इससे पहले सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में यह प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, महासागर लाखों समुद्री जीवों का घर है और मछली पालन के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। समुद्री मार्गों से होने वाला व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। महासागर नमक, खनिज, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे बहुमूल्य संसाधनों के स्रोत हैं। नीली लहरों से सजे महासागर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का अनुभव कराते हैं। सचमुच महासागर मानव जीवन, पर्यावरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। साथियों, लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में खामोशियां फिल्म का यह प्यारा सा गीत।

0: राम राम हो किशन भैया।
1: राम राम बिनु भैया।
0: ए दे भाई नगद ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भिड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसो के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: एदे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई एदे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि एदे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अब ये तो शुरू होएगी साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

साथियों, आज के अंक कुंजन में बस इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ में

0: हैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी और मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संगठनात्मक बैठक में मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री और मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर ने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक आयोजित कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो रहा है और सरकार की योजनाओं की जानकारी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का विमोचन किया। ये प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर रायपुर में आज से विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। 12 जून तक चलने वाली ये प्रदर्शनी प्रतिदिन 11:00 बजे से 5:00 बजे तक लोगों के लिए खुली रहेगी। वहीं 9 जून को अभिलेखों के संरक्षण और उनके महत्व पर विशेष व्याख्यान आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। संस्कृति विभाग द्वारा सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज से आकार पारंपरिक शिल्प और कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 14 जून तक आयोजित शिविर में युवाओं को 14 प्रकार की पारंपरिक कला विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोक कलाओं और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल तक पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। बालोद जिले के लोक कलाकार प्रेम साहू उर्फ राजू की कल हृदय आघात से मौत हो गई। ये सूचना मिलने के बाद अस्पताल जा रहे उनके माता पिता भी एक सड़क हादसे का शिकार होकर घायल हो गए। धमतरी जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में एक नाबालिग समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अर्जुनी पुलिस ने जांच नाके पर कार और पिकअप से 400 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया। वहीं मेजका पुलिस ने कार से 44 किलोग्राम गांजा बरामद कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने कुल 450 किलोग्राम गांजा और तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी और मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम, आपकी बात आपके गीत।

0: आपकी बात आपके गीत। इस कार्यक्रम में हम आपसे करते हैं फोन पर बातें और सुनते हैं आपकी फरमाइशें। कुछ दिनों से बारिश, बरखा और तपती गर्मी का एक अनूठा समागम देखने को मिला है। बिन मौसम बरसात, आंधी तूफान, जलवायु परिवर्तन इस बदलते मौसम का मुख्य कारण है। हमारे श्रोता भी काफी जागरूक हैं। और देखिए, अब आपके एक कॉल आने लगे हैं, तो देर न करते हुए सुनते हैं आपके दिलों की बातें। हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, गंदी पंडरिया से।
0: कैसे हैं पवन जी?
1: बहुत अच्छे मैडम जी, एक नंबर एक नंबर। आपके आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रम में खोए रहते हैं और सुनते रहते हैं मैडम जी आपके यहाँ के प्रसारण को।
0: क्या बात है, और कौन से कार्यक्रम आप सबसे ज्यादा सुनते हैं?
1: मेरे को तो सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है मैडम जी, अब क्या बताऊँ। आपके यहाँ के जो कार्यक्रम ना, उसके बारे में जितना भी तारीफ करो कम है, और साथ में मेरे पास शब्द नहीं है, एक सिर्फ छोटा सा शब्द है धन्यवाद की।
0: आप हमारे कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुनते हैं और इतने समय से सुन रहे हैं, इसके लिए हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, और आकाशवाणी अंबिकापुर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ
0: जी। तो पवन जी, आप तो हमेशा अच्छे अच्छे गीत हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं, तो इस बार कौन सा गीत सुनाएंगे आप?
1: आज एक बहुत ही सुंदर गीत आप तक, आपके आकाशवाणी अंबिकापुर से मेरे साथी है पन्नालाल सेन और ध्रुवाराम साहू तक के आपके रेडियो हमारे स्टेट पर भेज दीजिए। भरोसा फिल्म का गीत है मैडम जी, मोहम्मद रफी की आवाज में।
0: अच्छा।
1: ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती, तो क्यों ना दिल दीवाना होते रहे।
2: गोमी

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: मैं कोतवा साजा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ।
0: राम स्वरूप जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ दीदी, तो घुमाने के लिए जाता हूँ। अभी आया परसों नरसों बद्रीनाथ से।
0: बद्रीनाथ गए थे आप?
1: हाँ दीदी, मनोकामना भी था, नेपाल था, मथुरा वृंदावन था, चरण धाम था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोरखपुर भी था।
0: अरे वाह, और कैसा लगा बद्रीनाथ में जाकर?
1: दीदी प्रोग्राम तो मस्त रहा एकदम, थोड़ा बद्रीनाथ ठंड थोड़ा अधिक था, केदारनाथ उतना ठंड नहीं था, गर्मी कुछ था उसमें। बाकी भीड़ इस टाइम दीदी चौगुना था, बहुत भीड़ था, कीमत ज्यादा।
0: गर्मियों में अक्सर लोग पहाड़ों में ही जाते हैं, तो इसीलिए
1: वहाँ क्या ठंडा मिलता है ना, बर्फीला, इसलिए ठंडा ठंडा पसंद करते हैं लोग गर्मी में।
0: जी जी जी, और कैसी ठंड थी वहाँ पर
1: दीदी? वहाँ तो जैसा रहना कुछ टाइम से कम है ठंड, यानी थोड़ा बद्रीनाथ में थोड़ा अधिक रहा, क्योंकि थोड़ा पानी गिरा शाम को। हाँ, थोड़ा मीडियम टेम्परेचर रहा, उधर ठंड नहीं रहा जैसा जैसा एक बराबर था ठंड।
0: अच्छा, तो इतने अच्छे वातावरण में आप गए, और लौट कर कैसा लग रहा है रामस्वरूप जी?
1: नहीं, बढ़िया लगता दीदी, जो तो धाम तीर्थ स्थान दीदी, वहाँ जाओ तो दिल तो खुश हो जाता है, मन भी तृप्त हो जाता है दीदी वहाँ जाने से।
0: जी जी जी, तो इतने भक्तिभाव माहौल से आप लौटे हैं, तो कौन सा गीत सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: आज दीदी अपने पसंद का सुना दो ना। आज
0: आप मेरी पसंद का गीत सुनना चाहेंगे?
1: क्यों दीदी, हम लोग तो हरदम मांग करते हैं कि गीत सुनाओ गीत सुनाओ, आज आप लोगों को पसंद सुनेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा।
0: ठीक है, तो हम अपनी पसंद से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गीत चुनेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम स्वरूप जी।
1: जी जी, धन्यवाद दीदी, प्रणाम।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: हेलो, हाँ मैम, फलोनी मैम, राजकुमार ने भवानी, 2 सप्ताह के अंतर्गत आपसे बात हो रही है मैम।
0: राजकुमार ने भवानी जी, आप हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं और आपसे बात करके बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि आप हमारे अंबिकापुर के ही श्रोता हैं।
1: जी जी, और मैं जैसे कि

0: जी जी जी बड़ा ही अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा बात करके।
1: जी जी
0: बताइए राजकुमार नेवानी जी, अभी क्या कर रहे हैं आप?
1: मैं घर बैठा था मैडम, तो मैं बोला चलिए ऐसे मेरा पारी है तो मैं चल गया फोन मेरा मैडम।
0: अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
1: बस श्रोताओं को बस ये रेडियो से हमेशा जुड़े रहे, फोन इन कार्यक्रम में फोन करते रहे, ईमेल में ईमेल करते रहे, सभी कार्यक्रम में भाग लेते रहे।
0: जी,
1: और खास करके मैडम मैं सबसे बड़ी हमारे अंबिकापुर में सातों दिन महिलाओं का कार्यक्रम है मैडम, 4 दिन घर आंगन।

0: फोन इन कार्यक्रम में फोन करते रहे, ईमेल में ईमेल करते रहे, सभी कार्यक्रम में भाग लेते रहे
1: जी।
0: और खास करके मैडम मैं सबसे बड़ी बात, हमारे अंबिकापुर में सातों दिन महिलाओं का कार्यक्रम है मैडम, चार दिन घर आंगन और तीन दिन घर गुस्साई
1: जी,
0: ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आकाशवाणी अंबिकापुर मैम
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: लोग हमारे श्रोता के लिए बहुत मेहनत करके अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं, जितने भी उद्घोषक है सभी की जितनी तारीफ की जाए कम है मैडम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। तो देर न करते हुए आप हमारे श्रोताओं को एक अच्छा सा गीत बता दीजिए।
0: फिल्म का नाम आशा, लता मंगेशकर, शीशा हो या दिल हो आके टूट जाता है।
1: जी जी जी
0: जी मैम,
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए राजकुमार जी।
0: जी धन्यवाद, धन्यवाद।

0: हेलो, आपकी बात
1: हाँ
0: आपके गीत।
1: जी, जी मैम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने बारे में
1: बहुत बहुत
0: बताइए।
1: धन्यवाद। मैं सत्यम क्लब फुलकोना से अरविंद यादव बोल रहा हूँ मैडम।
0: अरविंद यादव, कैसे हैं अरविंद जी?
1: मैं तो ठीक हूँ मैम जी, आप लोग कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। और सत्यम क्लब फुलकोना से आपने कॉल किया है,
1: जी
0: तो क्या हालचाल है वहाँ के?
1: हाल चाल तो ये है मैम जी कि अभी चनचनाती हुई धूप अभी मतलब चल रहा है मैडम।
0: जी, और क्या कर रहे हैं आप इस वक्त अरविंद जी?
1: दिनों मैम जी कहा है कि गांव में भी घर का रिपेयरिंग काम अभी मतलब आ रहा है, इससे पहले रिपेयरिंग कर रहे हैं मैम जी।
0: जी, तो आप उसमें व्यस्त हैं।
1: जी, थोड़ा इसी में लगे हैं मैम जी अभी, मतलब गांव के हर अभी अपना घर जो है वो रिपेयरिंग कर रहा है
0: जी,
1: ताकि बरसात में आने वाले में दिक्कत ना हो।
0: जी
1: ख्याल से 7-8 सप्ताह के बाद में आज बात हो रही मैम जी आप लोग।
0: जी हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमसे कॉल मिलाया। आप तो हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं।
1: जी, बिल्कुल जी। एक का गाना सुनवा दीजिएगा मैम जी, फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, कुमार सानू जी का आवाज में बोल है, जेठ के दोपहरी में गर्मी लगे हैं।
0: जी, बड़ा ही मजेदार गीत है ये।
1: जी मैम जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अरविंद कुमार जी। इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे कार्यक्रमों को सुनिएगा।
1: जी मैम, जी मैम।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: हेलो,
0: हेलो, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजेश कुमार वर्मा बोल रहा हूँ, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। जी
0: उत्तर प्रदेश से आपने हमें कॉल मिलाया है, तो आप तो हमारे बहुत ही दूर
1: जी
0: के
1: जी
0: श्रोता हैं।
1: काफी दिनों से सुनता था, आज काल बहुत दिनों बाद लगाया हूँ।
0: अच्छा, और आपको हमारे केंद्र के कौन से कार्यक्रम सबसे आकर्षित करते हैं?
1: जो भी कार्यक्रम ग्रामीणों का आता है, आपकी वहाँ की बोली बहुत प्यारी लगती है हमें।
0: आपको हमारी सरगुजिया बोली बहुत पसंद है?
1: जी, बहुत अच्छी लगती है।
0: क्या बात है। तो आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कौन से हुए फिर?
1: हमारा पसंदीदा कार्यक्रम ये फोन इन का तो है ही, हमारा पहले से है, लेकिन आजकल जो है इंस्टा फरमाइश जो चल रही है आप यहाँ से, उसमें भी भाग लेता हूँ मैं।
0: क्या बात है। इंस्टा फरमाइश एक नया कार्यक्रम हमारे केंद्र से सुचारू रूप से चालू हुआ है, जिसमें आप सभी अपनी फरमाइश हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से हमें पहुंचाते
1: जी
0: हैं।
1: जी मैम,
0: तो क्या करते हैं आप राजेश जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैम हमारा जो है ज्वेलरी का कारोबार है,
0: अच्छा
1: और कारीगरी भी करता हूँ गहनों का। जी
0: अच्छा तो ये तो बड़ा
1: मैम,
0: ही कलाकृति वाला कार्य है।
1: जी, क्या किया जाए, करना है, अपना काम है।
0: जी, और इस कार्य को करते हुए आप हमारे केंद्र के प्रसारण को सुनते
1: प्रोग्राम
0: रहते
1: प्रोग्राम
0: हैं।
1: भी सुनता रहता हूँ।
0: क्या बात है। तो जानकर खुशी हुई, हम आपको आपके कार्य के बीच मनोरंजित करते हैं रहते हैं।
1: जी मैम,
0: तो बताइए हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनाएंगे आप राजेश जी?
1: जोर का सुना दीजिए, एक प्यार का नगमा है,
0: एक प्यार का नगमा है।
1: मौजू की रवानी है।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: आपकी बात आपके गीत में नमस्ते
0: नमस्ते, बड़ी मीठी आवाज है आपकी।
1: आपकी इतनी मीठी आवाज है कि क्या कहें।
0: शुक्रिया, लेकिन आपकी ज्यादा मीठी है।
1: अरे अरे धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद आपको। मैं आपकी आवाज से पहचानती हूँ, पोलमी मैम है आप।
0: जी जी मैं पोलोमी, और आप अपने बारे में बताइए।
1: मैं जय मंत्री केवट अनूपपुर मध्य प्रदेश से।
0: जय मंत्री जी, कैसी हैं जय मंत्री जी?
1: नहीं, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ।
0: और आप अनूपपुर से बोल रही हैं?
1: जी जी
0: तो वहाँ पे क्या हालात हैं अभी?
1: अभी ठीक है हालात, तो दो दिन पहले बारिश हुई थी, अब मौसम भी बन रहे हैं धीरे धीरे।
0: बारिश आई तो थोड़ी ठंडक आ गई होगी आपके वहाँ?
1: हाँ हाँ बारिश आई तो ठंडक आ गई थी।
0: जी जी जी और क्या करती हैं आप जय मंत्री जी?
1: मैम जी मैं तो पेशे से शिक्षिका हूँ जी, और मुझे खेती किसानी में शौक है, करती हूँ अपना काम।
0: और कौन से गीतों की आप शौकीन हैं जयमंत्री जी?
1: मैं तो पुराने गीतों की शौकीन हूँ, तो मुझे कोई भी गीत सुनवाइए। अभी हमने हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाया है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को।
0: जी जी,
1: तो इसी से मिलता जुलता गीत सुनवाइए। धरती मेरी, माता पिता आसमान, ये गीत गाता जल फिल्म का है।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम में, आपका स्वागत है, अपने बारे में बताइए।
1: मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से आपका नियमित श्रोता इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, काफी अरसे बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी मैडम, आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: मैं पॉलोमी।
1: अच्छा, पॉलोमी जी बोल रहे हैं
0: जी।
1: हाँ मैडम, क्या है, बहुत दिन बाद, काफी दिन के बाद हो रहा है। मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा था
0: जी,
1: लगातार जूम जा रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि कहीं का लाइन गड़बड़ तो नहीं है।
0: नहीं,
1: तो चलिए लग गया, चलिए अच्छी बात है
0: जी।
1: और यहाँ तो मौसम परिवर्तन हुआ मैडम, जैसे कि पानी वानी गिरने के कगार में कभी रहता है तो कभी बादल करता है, कभी आंधी आता है, कभी मतलब कि इस टाइप का उमस गर्मी बना रहता है। तो लोगों से आग्रह करूंगा इस मौसम में मैडम ज्यादातर अपना सेहत पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि उलट पुलट मौसम हो रहा है
0: जी,
1: खासकर बच्चों पर और बुजुर्गों पर विशेष प्रभाव पड़ता है
0: जी। जी जी,
1: जानकारी देना चाहता हूँ कि हम जैसे इंसानों की गलती के चलते वो बारिश बरसात ढंग से नहीं हो पा रहा, क्योंकि जंगल का अंदर कटाई कर देते हैं
0: जी,
1: और जंगल की लकड़ी और क्या होते हैं पेड़ पौधे के द्वारा ही वो वर्षा निर्भर होता है। वर्षा निर्भर होने से हमको खेती होता है, पानी मिलता है, उसके बिजली पैदा होता है, घर के सार्वजनिक कार में उपयोग करते हैं
0: जी,
1: और इसके बाद कई पशु पक्षी भी पानी पीते हैं
0: जी।
1: तो
0: जी,
1: हम इंसानों की गलती से अगर पेड़ पौधे का पौधारोपण करें, पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए खूब पौधे लगाएं, उनका वृक्षारोपण करें,
0: जी
1: अधिक मतलब कि उनका देखभाल करें और पेड़ काटने वालों को रोके, इनको मना करें, ये सब प्रतिबंध हो तो मैडम तो वर्षा अच्छा होगा। लेकिन अभी उलट पुलट मौसम हो रहा है, ठंडी में वर्षा ज्यादा हो रहा है, बरसात में कम हो रहा है, गर्मी में कहीं वर्षा आ रहा है कहीं जा रहा है, इस टाइप का मौसम हो रहा है
0: जी। जी जी, अभी कुछ दिनों पहले हमने पर्यावरण दिवस भी मनाया और इसी उपलक्ष्य में आपने एक बड़ी ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रभान जी। अब देर न करते हुए एक गीत भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: इनका नाम है पागल पंछी और गायक की यो हनी सिंह, ठुमका ठुमका करके।
0: जी जी जी, धन्यवाद इंद्रभान जी।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रोशन जवान बोल रहा हूँ, बिलाई घर से।
0: रोशन जी, कैसे हैं रोशन जी?
1: बस बढ़िया है मैम।
0: कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
1: हाँ मैम, वही कहना चाहूँगा कि अभी बरसात का मौसम आ रहा है और आंधी तूफान आ रहा है, रोज आ रहा है आंधी तूफान। मैम
0: जी जी जी
1: आंधी तूफान आता है तो हमें पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, पक्के मकान में जाकर रुकना चाहिए वहाँ पर।
0: जी क्योंकि बिजली गिरने का खतरा रहता है तो पेड़ों के नीचे रहना खतरनाक हो सकता है,
1: जी
0: इसीलिए।
1: जी अभी अभी तो हादसा हुआ था मैम, पिछले एक हफ्ते पहले हुआ था, हमने खबर में देखा था। तीन तीन आदमी थे, वो पेड़ के नीचे थे तो आंधी तूफान आया तो पेड़ के टूट गया पेड़, तो तीनों के तीनों मर गए, मृत्यु हो गया तीनों का।
0: बहुत ही दुखद सूचना थी ये, और इससे
1: जी
0: हमारे श्रोताओं को भी सचेत हो जाना चाहिए कि आंधी तूफान के समय पे पेड़ों के नीचे ना जाकर कोई पक्की छत के नीचे चले जाए।
1: जी जी जी जी
0: जी, बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी आपने रोशन जी। तो अब
1: जी जी
0: बताइए,
1: जी
0: आपको कौन सा गीत सुनाए?
1: जब जब प्यार में पहरा हुआ है।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम में, आपका स्वागत है। अपने बारे में बताइए।
1: मैं नारायण लाल साहू सांकरा सोमी राजनांदगांव से बोल रहा हूँ मैडम, और रेडियो के दीवानी हूँ। 1983 से रेडियो सुन रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: मैं हूँ पॉलमी।
1: अच्छा, पहली बार बात हो रही लग रहा है।
0: मेरी भी आपसे पहली बार बात हो रही है इतने वर्षों में।
1: हाँ, वैसे तो आपके केंद्र से नियमित श्रोता हूँ
0: जी।
1: हर कार्यक्रम आपके सुनता रहता हूँ। गुंजन कार्यक्रम है, ईमेल भेजे गीत सुने रही में, ईमेल की गुंज प्रसारित होता है मैडम, उसी में सुनता हूँ। और आज की फिल्म में सुना देना, हमराज का सुना देना मैडम।
0: हमराज फिल्म का कौन सा गीत तब सुनना चाहेंगे?
1: और नील गगन के तले वाला।
0: नील गगन के तले,
1: श्रोता जाना को नाम ले लूँ का मैडम?
0: जी जी जी।
1: सुरित रमेश साहू है दुर्ग से, स्मृति लगा दुर्ग से, और योगेश सारवा जी हैं, जितेंद्र दास मानिकपुरी हैं, और ध्रुवा राम साहू हैं बालाघाट से, और मुन्ना लाल पटले जी हैं, उन्हीं की पसंद से ये गीत सुना दीजिए मैडम।
0: जी जी जी।

0: आपकी बात आपके गीत। इस कार्यक्रम में हम आपसे करते हैं फोन पर बातें और सुनाते हैं आपको आपकी फरमाइश के गीत। वक्त की कमी के कारण हम हर श्रोता को मौका नहीं दे पाते, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें फोन लगाने पर कम से कम 2 सप्ताह का अंतराल लें, ताकि हम अधिक से अधिक श्रोताओं को खुद से जोड़ पाए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर रविवार सुबह 10:30 से आपके कॉल तक। हमसे कॉल मिलाएं हमारे इन नंबरों पर 0777-4-231-917 और 0777-4-231-918। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0777-4-231-918 और 0777-4-231-917। आपसे बातें करने के लिए हम होते हैं बेकरार, आपके कॉल का हमें रहता है इंतजार। तो हमें कॉल करें हर रविवार सुबह 10:30 पर। और इसी के साथ अपनी कार्यक्रम से अपनी रेडियो साथी पॉलीमी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो,

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत। प्रस्तुति सहायक थी पोलोमी हरी की। प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:59 हुए हैं। हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब, कल्याण और वंचित वर्ग

0: इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशन का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

और इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ मैं हूं पूनम उपाध्याय। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत दामिनी फिल्म से, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का और फरमाइश की है इस गीत को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। सारसताल सुनगरा से पत्र आया है प्रेम साय राजवाड़े सोमार साय मेर साय श्री भगत हेमंत कुमार रामखेलावन सिंह पैकरा का, करजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर प्रसाद राजवाड़े दीपक चांदनी दीपा कृति का, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल नोमी सिंगरौल नारायणी सिंगरौल नेहा और वान्या सिंगरौल का, बक्सर बिहार से पत्र लिखा है शफरुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी ने, पुराना तालाब डुमराव से फरमाइश भेजी है वलीउल्लाह अंसारी और आसमा नाज अंसारी ने, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा ने, सरीमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी ने, वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौण मोहम्मद शादाब खत्री ने, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार रोशन कुमार बंशी लाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी और दिशा लवी श्रीवास्तव ने। तो आप सभी के पसंद पर लीजिए सुनिए ये गीत फिल्म दामिनी से।

कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं साजन फिल्म से अलका याग्निक की आवाज़ में, बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का, और फरमाइश की है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश ने। बनियापारा के श्रोता साथी रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता बेबी स्वाति माही पूजा छुटकी शरद कुमार और पूरा माखीजा परिवार। कालापारा रामचंद्र गुप्ता, ये श्रोता हैं ग्राम राजापुर लकड़ापारा सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, यहीं से हैं रोशन राजवाड़े राहुल राजवाड़े पांडे राम राजवाड़े। ग्राम राजापुर लकड़ापारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, संतोषी मरकाम, रूपमती मरकाम, पीपरपारा पालचुवी पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से वद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी ने। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेरलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमिस सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं साजन का ये खूबसूरत सा नगमा।

साजन फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में। अब लीजिए सुनिए फैज़ अनवर की शब्द रचना कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, फिल्म दिल है की मानता नहीं से। संगीत है नदीम श्रवण का और इस गीत को पसंद किया है ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम हरिशंकर, प्रशांत रत्नेश प्रजापति ने। गणेश धाम परसोली तहसील डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतिन बाई और मोतिम बाई ने। बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांता वर्मा, सीमा सारदा दामिनी वर्मा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से दोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर ने। गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी ने। पीपर पारा पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका, भानु प्रिया दिवाकर ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, अभी आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अब सुनते हैं आदमी खिलौना है फिल्म से गीत, मोहम्मद अजीज अलका याग्निक की आवाज़ों में, बोल समीर के संगीत नदीम चमन का, और फरमाइश की है आप सभी ने बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बेबी अनिष्का राधिका गजभिये, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अवान अब्बासी, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से, बागबहरा से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन, डाबर तालाब लोनी से राजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां,

मेन रोड तिल्हारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, सुजाता पोहरकार, आप सभी ने सुना चाहा है इस गीत को, तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: इस संदेश के बाद लीजिए सुनिए कार्यक्रम में मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत फिल्म 20 साल बाद से, समीर की रचना, संगीत नदीम शमन का। एक बार फिर से सुनिए, बोल है आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत को पसंद किया है बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घुआणकर राही, श्रीमती सरिता घुआणकर, प्रिंस एकांश घुआणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश घुआणकर, श्वेता सुमित घुआणकर, ध्वनि घुआणकर, धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला दादी, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, ग्राम राजापुर लकरापारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से रोशन राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश निभवानी, पप्पू जसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता सागर, आयुषी हनी और उनके परिवार के

सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से ही राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और पूरा श्रीवास्तव परिवार। सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में और सुनना चाहा है इस गीत को। भोरसुदा से भगवानी सेन, संतोषी सेन, चंद्र प्रकाश सेन, नेहा सेन, चिराग, राजेंद्र सेन, ग्राम पंजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज, विजय कुमार कोटवा, नारायणपुर बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में संघर्ष फिल्म से गीत। इस गीत को पसंद किया है बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सबा सेरे, पुणे से पंकज कुमार आर्या, प्रियंका वाड़ोदे, जरूर वरुड़ से बाबा साहेब वाड़ोदे, चंद्रप्रभा वाड़ोदे, आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा, और पलारी बलौदा बाजार से जया रवि चंद्राकर, लवकुश आशुतोष दीवान। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना भी जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का विमोचन किया। ये प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जशपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने रोजगार की मांग दर्ज कराई और जॉब कार्ड निर्माण तथा अद्यतन कार्यों में भाग लिया। विशेष शिविरों में मनरेगा की विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जल संरक्षण कार्यों तथा महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना से विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, जन जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्राधारित अनुसंधान और पीएचडी कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून कल तक पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। बालोद जिले के लोक कलाकार प्रेम साहू उर्फ राजू की कल हृदय आघात से मौत हो गई। ये सूचना मिलने के बाद अस्पताल जा रहे उनके माता पिता भी एक सड़क हादसे का शिकार होकर घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय कायकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और मीडियम एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज

0: आयुषी और मीहू का, लिखते हैं।
1: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
0: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
1: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
1: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी फूल फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
1: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
1: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी

का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना। क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
2: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
3: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
1: राजा रवि वर्मा।
3: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।

0: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
0: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
0: ठीक है
1: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से

0: ला बोली
1: भाई।
2: हाँ?
1: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
2: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: ठीक है,
2: चल चल चल चल चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने, देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती? त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: अब ठीक है।
1: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
0: महाराज ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
1: अरे तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
0: महाराज इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
1: इसमें क्या परेशानी है, इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
0: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
1: आप निश्चिंत हो जाएं, समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हां, ईश्वर की कृपा से

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं, नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में

0: आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए शीर्षक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन।

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज शीर्षक फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चयन में आप सभी के साथ मैं हूं आपके रेडियो साथी पूनम उपाध्याय। साथियों, संगीत वो जादू है जो दिलों को जोड़ता है और हमारे जीवन को उमंग से भर देता है। इसी क्रम में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गीत, एक ही शब्द पर आधारित हैं जो, और इस शब्द के एक अलग मायने भी होते हैं। चिट्ठी एक ऐसा शब्द है जिसमें केवल कागज और स्याही नहीं बल्कि भावनाओं का समंदर भी इसमें छिपा होता है। आज के डिजिटल युग में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं, वहीं चिट्ठियों का अपना एक अलग महत्व है और आत्मीयता भी है। चिट्ठी केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती बल्कि दिल से निकली भावनाओं का सजीव चित्र होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सुनिए इस गीत को जो आपको अनगिनत भावनाओं से जोड़ देगा, पंकज उधास की आवाज़ में।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं नाम फिल्म से, पंकज उधास की आवाज में। साथियों, पुराने समय में जब लोग दूर दूर रहते थे तब चिट्ठियां ही उनके रिश्तों की डोर को जोड़ने का काम करती थीं। चिट्ठी का इंतजार, डाकिये की राह देखना, और जब चिट्ठी हाथ में आती थी तब दिल में जो खुशी उमड़ती थी उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। चिट्ठी पढ़ते समय लगता था सामने वाला व्यक्ति खुद अपने दिल की बात कह रहा हो। चिट्ठी की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें सच्चाई और गहराई होती है। जब कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है तो वह सोच समझकर हर शब्द चुनता है, उसमें जल्दबाजी नहीं होती, हर वाक्य में भावनाओं की मिठास और अपनापन झलकता है। यही कारण है कि चिट्ठियाँ सालों बाद भी जब पढ़ी जाती हैं तो वही एहसास हर बार जीवित हो उठता है।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मैंने प्यार किया से, लता मंगेशकर एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों में। साथियों, चिट्ठी हमें धैर्य

और संवेदनशीलता भी सिखाती है। जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और व्यवस्थित करते हैं, अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं। यह एक तरह का आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम भी है, जहां अपने सच्चे भाव बिना किसी डर या संकोच के व्यक्त कर सकते हैं।

दुल्हन फिल्म से गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। मित्रों, आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट ने संवाद को आसान बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गहराई कम हो गई है जो चिट्ठियों में हुआ करती थी। एक संदेश कुछ ही सेकंड में भेजा और पढ़ा जा सकता है, पर उसमें वह इंतज़ार, वह उत्सुकता, वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता जो चिट्ठियों में होता है। चिट्ठी में लिखी गई बातें स्थायी होती हैं, जिन्हें बार बार पढ़कर यादों को ताज़ा कर सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में हिना फिल्म से गीत। साथियों, हमें कभी भी चिट्ठी लिखने की इस खूबसूरत परंपरा को फिर से अपनाना चाहिए ताकि हम रिश्तों में वही पुरानी गर्माहट और सच्चाई वापस ला सकें। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 1 बजे हैं समाचार, हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक

0: जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम के पुनः प्रसारण में लीजिए सुनी वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद विषय पर जानकारी।
3: वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुआ खाद, खाद बनाने की विभिन्न विधियों में सर्वाधिक उपयोगी विधि है वर्मी कंपोस्टिंग। वस्तुतः कंपोस्टिंग वह विधि है जिसमें कूड़ा कचरा तथा गोबर को केचुओं तथा सूक्ष्म जीवों की सहायता से उपजाऊ खाद अथवा वर्मी कास्ट में बदला जाता है। यही वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुआ खाद कहलाती है। वर्मी कंपोस्ट के लाभ। वर्मी कंपोस्ट अन्य खादों की अपेक्षा कई दृष्टियों से ज्यादा लाभकारी है। अन्य खादों जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट की खादों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। अन्य पद्धतियों से बनाई गई खादों की तुलना में वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें न केवल फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं, बल्कि दूसरी खादों की तुलना में इसकी कम मात्रा में ही काम चल जाता है। जैसे यदि 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट सिंगल सुपरफास्फेट की 4 बोरी के बराबर तथा 30 किलो पोटाश में कई प्रकार के एंजाइम तथा हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन आदि भी पाए जाते हैं। ये एंजाइम अन्य जैविक खादों में प्रायः नहीं पाए जाते तथा बाजार में जिन रासायनिक रूपों में ये मिलते हैं वे बहुत महंगे होते हैं। वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से भूमि में स्फूर घोलक जीवाणुओं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से जमीन से सिंचाई की भी अपेक्षाकृत कम आवश्यकता पड़ती है। वर्मी कंपोस्ट खेत में डालते समय उसके साथ केचुए भी जमीन में जाते हैं, जो भोजन की प्राप्ति, मल विसर्जन एवं प्राणवायु प्राप्त करने के लिए दिन भर में 7 से 10 बार ऊपर नीचे आते जाते हैं। इस प्रक्रिया में जमीन से स्वतः ही 14 से 20 छिद्र बन जाते हैं, जिससे जमीन पोली होने के साथ साथ इसमें वायु की आवाजाही होना आसान हो जाती है तथा इसकी जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। केचुओं का शरीर 85% पानी से भरा रहता है, इसलिए सूखे की स्थिति में 60% पानी की कमी हो जाने पर भी वे जीवित रहते हैं एवं मर कर भी जमीन में पौधों के लिए भोजन छोड़ जाते हैं। केचुए की विष्ठा में पेराटॉपिंग झिल्ली होती है जो धूल कणों से चिपक कर वाष्पीकरण की प्रक्रिया को रोकती है। परंपरागत गोबर खाद के कई बार कच्ची रह जाने के कारण फसल को दीमक अथवा गोबर की सुंडी आदि से हानि

0: हो सकती है, परंतु केचुआ खाद पूर्णतः पकी हुई होती है, अतः इसके उपयोग से फसल में किसी प्रकार के गोबर के कीड़े अथवा दीमक आदि के लगने की संभावनाएं नहीं रहती। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मुख्यतः चार संसाधनों की आवश्यकता होती है। पहला, उपयुक्त प्रजाति के केचुए। दूसरा, गोबर एवं कार्बनिक अवशेष। तीसरा, पानी। चौथा, बांस बल्ली। तथा पांचवा, उपयुक्त स्थान एवं अन्य व्यवस्थाएं। केचुए मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंडोजीक या नाइट कॉलर्स अथवा इपीजीक या सरफोस। इनमें से एंडोजीक नाइट कॉलर्स जमीन के अंदर रहते हैं। ये 8 से 10 इंच लंबे होते हैं। इनका वजन लगभग 5 ग्राम तक होता है तथा 90% मिट्टी एवं 10% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। अधिकांशतः हमारे आसपास यही केचुए पाए जाते हैं तथा ज़्यादातर वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं। ये केचुए वर्मी कंपोस्ट बनाने में काम नहीं आते हैं। केचुओं की दूसरी किस्म ईपीजीक या सरफेस कहलाती है। ये अपेक्षाकृत कम लंबाई के होते हैं तथा इनका वजन लगभग 0.5 से 1 ग्राम तक होता है। इनका रंग लालिमा लिए हुए बैंगनी होता है। ये वनस्पतिक अवशेष तथा गोबर खाते हैं तथा मिट्टी पसंद नहीं करते। वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति आइसिनिया फैटिडा है। ये केचुए टाइगर केचुए अथवा ब्रांडली रंग केचुए के नाम से जाने जाते हैं। इनका शरीर लंबा, पतला, गोल तथा दोनों सिरों पर से नुकीला होता है तथा यह 100 से 122 खंडों में विभाजित होता है। यह प्रजाति के केचुए प्रकाश, तीव्र तापक्रम तथा गैसीय द्रव्यों जैसे एसिटिक एसिड आदि के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। इनकी सक्रियता के लिए मध्यम तापक्रम तथा आर्द्रता ज्यादा अनुकूल रहती है। इनका जीवन चक्र 130 से 150 दिन तक का होता है तथा जन्म से 6 से 7 सप्ताह के बाद ये प्रजनन योग्य हो जाते हैं।
1: वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद, इस विषय पर जानकारी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात के पुनः प्रसारण में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम घर गोसाइन।

संगी हो, गौतम बुद्ध कह रहीन कि हमन ला हमन के सेथा कोनो नहीं बचा सके और हमन ला अपन रास्ता में खुदे चलना हवे। तो यही सुघर विचार कर संगे आज घर गुसाइन कार्यक्रम कर शुरुआत करत हन। जम्मो सुनैया संगी मन कर ढेरे स्वागत आ है। आओ आज संगे रही रमा बहिन, जय जोहार, राम राम। अब बहुत खास दिन है आज, देखी आकाशवाणी के हमार 90 बछर पूरा हुआता है और एमें हम सब झेला बधाइया है। जितना हमार सुनैया संगी मन आए हैं उमनला तो भाई खास बधाइया है, शुभकामना है कि भाई रौरे इतना साल हो गए, इस 90 साल से सुना था आओ जुड़े हा हमार जगले आ लिखा था पढ़ा था आओ सुना था आओ संगे संगे कितना झे आकाशवाणी से आए के भी जुड़ता हैं, मिलता हैं सब झे जग आ एक ठो खास कहिया की रिश्ता बन गई सा है। अब रेडियो जो हमारा है वो हर क्षेत्र में हमन जानती कि हमार बर कितना महत्वपूर्ण एकर भूमिका है। पहले साइकिल में कंधा में लटके रहे, चाहे कोनो कर ड्राइंग रूम में बड़का छोटका जैसे टीवी आए पहले ओकर रूप में भी रहीस और संगे संगे अलग अलग रूप हमन रेडियो कर भी देखें और ओकर बाद अब हमन अपन मोबाइल में हाथ में लेके सुनत हन और कहों भी हमन जात हन तो एला हमन सुने सकत हन। और कितना ऐसन आवाज है कि हमन जिला सुने थी तो बिसराए नहीं सकती। बहुत सारा जब कुछ भी परेशानी होल, जब कोनो चीज हमन ला जब नहीं भेटाए, कहों कति ले कोनो समाचार नहीं भेटाए, ओ घनी भी हमन देखें कि रेडियो हमर संगी साथी रहीस। कोनो ही प्रकार के सूचना हो, समाचार हो, हर प्रकार के हमन रेडियो में सुनत रहन। और चाहे गाँव गए के हमर संगी मन जब सुनना चाहे कि भाई हमन ला खेल के सुनना है और क्रिकेट के सुनना है, हमन ला मैच ला सुनना है, तो वो घनी भी हमन देखें कि हमारे रेडियो बहुत खास रही सुमन बर।

और आप भी देखिए जितना ओ घनी एकर लगाव रही सब झन कर रेडियो से, वही लगाव हर आज भी बाची सा है। और ऐसा नहीं है कि ओहर कम हो सा है, ओहर बढ़ते जाता है। तो ऐसने लगाव सब झे रखे रहा, हमन सब झे रेडियो से जुड़े रही। यही आज के हमार ढेरे ढेरे हमन फिर से एक बार बधाई और शुभकामना देहत हन। और देखिए हमार जिंदगी में बहुत सारा चीज़ रहती है, सब चीज़ है जो हमार सही आदत हमन कही कि जब हमन ला कहूँ कुछ सुनना है कुछ गुनना है तो हमार जो सही आदत रहे हम वो हमन ला हर समय में काम आए, चाहे हमार पढ़ाई में हो जाए, चाहे हमार कोनो काम में हो जाए, चाहे हमार जीवन में भी रहे। जो चीज़ हमन सही अपना थी तो हमार जिंदगी हर बढ़िया चल। लेकिन वैसने देखी कबों कबों जब हमार कुछ गलत आदत हो जाए, चाहे हमन तिहा नहीं करी कोनो चीज़ में, तो ऐसन में परेशानी हो जाए। हमार बहनी मन भी देखी ऐसने घर के काम काज करत रहते और उमें गलत आदत, जैसे का कहब हमन गलत खान पान वाला का कहब हमन कि भाई जिम्मेदारी से अपन खान पान ला नहीं तिहा करें उमन। भाई सब जेकर तो करत रहते हैं कि लड़का मन ला खवाए के वो भेज देहीन, सियान मन कर तिहा करता है, अपन भाई पतिया है तो ओला बढ़ियन बेरा के बेरा में खवाए के वो भेज देहीन, बकर अपन ओमन नहीं देखें। तो ये जो परेशानी हो जाए एकर ले। और हाँ एक चीज़ हुआ है कि जैसे बासी कुसी बचे रही तो ओहू ला खाए देते, तो यू एक ठो गलत आदत है, गलत खान पान हमन कह सकत थी ला। तो एकर ले रिकिन रिकिन के बीमारी हो जाते, एसिडिटी हमार पेट में हो जा, और बहुत सारा परेशानी हो सकता है। उल्टी दस्त कर हमन सुनत रहती कि आए दिन हमन देखत रहती कि कोनो न कोनो ये समस्या से परेशान रहल, चाहे सर्दी देख ली खांसी देख ली। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जेमें हमार जो खान पाना है गलत आदत है तो वो हमार बीमारी के कारण रहते। तो इमें हमन ला बाचे बर बस यही करना है कि हमार सही समय में खान पान होए और मौसम के अनुसार खान पान होए। मौसमी सब्जी फल जो भी आए वो हमार खान पान में शामिल होना चाहिए। और खास बातें हुआ है कि जो पानी आए वो हमन ला साफ जगह से लेना है और खौलाए के और तेकर ठंडा करके और छान के ओला उपयोग में लाना है। ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ के हम अंतिहा करब तो हमार स्वास्थ्य देखी बढ़िया रही। आगू गोट बातों करब। ये छत्तीसगढ़ी गीता है तो लेगी ला सुनी।

0: हाँ संगी हो, देखिए छत्तीसगढ़ी गीत हमन जे सुनत रहन गुलाब सिंह टेकरा और संगता कर गाल रहीस। देखिए आज हमार रहल भेंटवार्ता और हमार भेंटवार्ता में आज हमार अधिवक्ता बहन आए रहन हमार स्टूडियो में, तो उनकर जो गोट बात हो रही सोही ला हमन सुनवा। हमार जो गाँव गुआन के बहनी मन रहन ओमन भाई जानते कि हमार अब तो जानने लगिन है सबजे कि हमार का अधिकार है और कैसे हमन ओकर उपयोग करे सकत हन कानूनी रूप से, और कैसे हमन ला सुरक्षा भी मिले सकता है और सहायता भी हमन ला भेटा सकता है। बकिर तबो ले हमार बहनी मन आगू नहीं आते हैं और अपन जो भी अधिकार है कानून में और एकर उपयोग नहीं करें, तो एकर बर फिर से आज हमन गोट बात जैसे हो रही बताएं हमारे स्टूडियो में, तो हमार सलमा बहन का बतात हैं इला लेगी सुनी।
1: स्वागत है बहने हो, आज हमार घर गोसाइन के भेंटवार्ता क्रम में हमार संगे हैं सलमा रिजवी बहिन जो कि खुद अधिवक्ता हैं, और बताही कि हमार बहिनी मन बर कौन कौन सा अधिकार है कानून है अमन के सुरक्षा बर करे में पूरा विस्तार से जानकारी बताही। बहिन राउर कर हमार कार्यक्रम में ढेरे ढेरे स्वागत है। राम राम।
2: राम लाली बहिन, मैं तो ये बताऊँ सब महिला मन ला मोर तरफ से नमस्कार हूं। और मैं आज महिला मन बहिनी मन करे जो क्या कानूनी अधिकार है क्या है गांव में कैसे रहती हैं उनके बारे में बताऊंगी ताकि वो कुछ समझ के अपना लाभ ले सकें।
1: हो अब सही बात है, देखिए आजकल कितना ठन भाई सुने में आते है। हाँ। और बहनी मनला जरूरी है अपन अधिकार के बारे में कानून के बारे में जानकारी होना ताकि उमन जानकारी जागरूक रहे और उमन एकर लाभ ला ले सके।
2: हाँ, जैसे कहावत है ना कि जो समाज में महिला बहनी मन पढ़े लिखे रहते हैं उमन के थोड़ा सा अपन जीवन ला जिए के अच्छा मतलब अनुभव हो जाए, है ना। वैसे तो सभी लोग को जीना तो पड़ता ही है चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, है ना। लेकिन शिक्षा एक विकास का रास्ता माध्यम बनता है ना। हमार महिला बहनी मन क्या है कि गांव में देखा महिला बहनी मन घर परिवार सब ला चलाते हैं और एक साथ घर के काम करे के साथ खेती किसानी और अपन आय के साधन ला बढ़ाए बर पशुपालन सब करते हैं ना, पालन पोषण करते हैं, और उनका जो है कि समाज में बहुत बड़ा योगदान है आजकल के महिला बहनी मन के, है ना।
1: सही बात है। और आजकल तो पहले जैसे नहीं हुई से भाई गांव गांव में भी घर कर बाहर कर हर काम ला करके वो बहुत बढ़िया बात है कि बहनी मन आर्थिक रूप से मजबूत होता है।
2: हाँ, क्या है महिला बहनी मन जैसे क्या है कि ये जानकारी के अभाव में अपन अधिकार ला नहीं जान पाए, है ना, और कुछ करे में मतलब असमर्थ

0: जाते हैं, है ना। एकर ले सबसे पहला बात यह है कि भारत के संविधान में देखल जाए तो हर महिला और पुरुष ला बराबर समान अधिकार देहल गई से, है ना। और कानून के नजर में ना तो महिला छोटी है और ना तो पुरुष बड़ा है, है ना।
1: दोनों ला
0: बराबर के हक देहल गई से, है ना। और काम के क्षेत्र में भी दोनों के बराबर के अधिकार देहल गई से जो, और समान अधिकार है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी लड़का और लड़की के बराबर के अधिकार देहल गई से, है ना। और गाँव में जो महिला बहनी मन है वो मन का है की शिक्षा एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ की निशुल्क पढ़ाई का व्यवस्था है बच्चों को, है ना। और उस निशुल्क पढ़ाई का लाभ लेके और अपने जीवन को सार्थक बना सकती हैं, है ना।
1: मतलब कि भाई शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है आज के जमाना में। शिक्षा ही हमारे एक ठे कह सकती है कि हमारे सुरक्षा बर हथियार है। शिक्षित हो अब तबे तो हम हर चीज के बारे में जान सकब और कोई भी कदम ला बढ़िया से उठा सकती नी।
0: हमन के का चाहिए कि गाँव ग्रामीण महिला मन ला ये देखना चाहिए, शहर के महिला मन तो कुछ जान गई ना अच्छा से कि अपन बेटी जनरल कहा हो ना कि आखिर में कि ग्रामीण क्षेत्र में लड़का ला तो पढ़ा ही है, लड़की मन ला घर के काम में लगा देंगे, चल भाई बर्तन भाड़ा ला माँ झाड़ू बहरी ला कर, एक अला कोई काम ही नहीं है
1: तो खेती के काम हर बढ़ गई तो कहीं की बेटी तो घर में भाई खाना उना बना मैं खेत के काम ला कर, तो एला भी ध्यान देना है कि ऐसे नहीं करना है,
0: नहीं करना है। बेटी मन ला तो बल्कि बेटा से आगे बढ़ाना है, काहे कि एक कुछ भी हो महिला बहनी मन एक कमजोर मानल जाते हैं शारीरिक रूप से, तो उसके कवच है पढ़ाई लिखाई सब है,
1: सही बात बता,
0: सुरक्षा कवच है, तो सुरक्षा कवच के अंदर उनके अच्छा से पालन पोषण करना चाहिए, है ना।
1: और सलमा बहन ने बताओ संपत्ति में भी अब अधिकार मिलता है बहनी मनला, तो ओकर बारे में भी थोड़ा जानकारी दे।
0: क्या है कि पहले क्या है कि महिला मनला संपत्ति में अधिकार नहीं रही, है ना। अब धीरे धीरे कानून बदली और बदले के बाद क्या हुई से कि अब जैसे पिता के संपत्ति है तो महिला जो है उसकी लड़की है और लड़का को बराबर का अधिकार दिया गया है, ताकि जो भी संपत्ति का विभाजन होगा बराबर बराबर होगा।
1: हाँ, वो पहले खासे ही होत रही मुख्य संपत्ति के जो अधिकारी रही सो हर बेटा हर ही रहत रही नहीं। तो अब हमारे संविधान में बिल्कुल बराबरी कर हक देहल गई।
0: अब देखिए कि इसमें अब क्या है कि सब बराबर का तो हक मिल गया, लेकिन क्या है कि शादी ब्याह के बाद महिला अपने ससुराल जाती है तो एक अलग परिवेश रहता है ससुराल में और बहुत सारी परेशानियों का वहां भी सामना करना पड़ता है। भले वो अच्छा है कि कहीं अच्छा घर मिल गया ससुराल तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, महिला बहनी मन रहते, लेकिन कहीं कुछ ऐसा घर मिल गया कि परेशानी ही परेशानी रहे तो ओकर देख के सरकार के द्वारा क्या बनाया गया कि घरेलू हिंसा का कानून बनाया गया महिला बहनी मन के, है ना।
1: सही बात है भाई, अपन घर से दूसरा परिवेश में जाए बहन तो हो सकता है कि बहुत सारा प्रताड़ना कर भी सामना करना पड़ते।
0: पहले कार्य की मारपीट ला ही माने तो मारपीट नहीं, महिला के साथ गाली गलौज करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ये भी मतलब घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है, है ना।
1: कोई भी रूप से ऐसा ओकर साथ व्यवहार करना कि ओकर मानसिक स्थिति खराब हो वो भी अब प्रताड़ना के कारण बनता है, और अगर ऐसे होता है तो बहने मन जरूर जाके कानून का सहारा ले सकता।
0: तो महिला बहनी मन ला सब के बचे खातिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में बना, महिला मन के कानूनी सुरक्षा दिया गया ताकि वो अपने शरीर का अच्छे से सुरक्षा कर सके, है ना। और अगर ना हो, अगर इसमें अगर किसी तरह कोई परेशानी आती है तो उसको पुलिस के संरक्षण मिलेगा, है ना, और न्यायालय के भी सहायता दिया जा सकता है।
1: और देखिए वकील साहब, बाल विवाह के ऊपर भी बहुत सारा कानून बनी से, काहे कि पहले हमार देखत रहे गाँव गई में ढेरे छोटा छोटा उम्र में लड़की मन कर विवाह हो जाए और कई ठन परेशानी कर भी सामना करना पड़े, तो एकर बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: हाँ, तो क्या है कि देखिए गांव में अक्सर नाबालिग अवस्था में शादी कर देते हैं, वहाँ तो बस पाल दिए पोस दिए 10-12 साल का होने की शादी करे पहुँच जाते हैं, पढ़ाना लिखाना तो रहल नहीं। अब क्या है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, उसमें क्या है कि गाँव में कोई भी व्यक्ति अगर नाबालिग बाल बच्चों का शादी करता है, लड़की का उम्र 18 साल कर दिया गया है, लड़के का 21 साल कर दिया गया है, अगर इससे पहले अगर कोई किसी का शादी करता है तो वो अपराधी की श्रेणी में आएगा, है ना। और इसके लिए आसपास के लोग को या जो भी वहाँ देख सके कि ऐसा गलत काम यहाँ हो रहा है समाज में, इसके लिए पुलिस की सहायता लिया जा सकता है, न्यायालय की सहायता लिया जा सकता है, जिससे कि बाल विवाह को रुकवा दिया जाए।
1: हाँ, हमारे समाज कर भी हमन कर भी कर्तव्य, अगर ऐसा हुआ है तो बाल विवाह के विरुद्ध में आवाज उठाई। हाँ, और पुलिस ला जानकारी दी और बहन बेटी मन ला बचाई।
0: आजकल तो समाज में इसे देखे में तो बाल विवाह में डर तो है लोगों को, बहुत कमी आई है, लेकिन फिर भी कुछ तो है अभी, है ना, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता बिल्कुल खत्म हो गया है। अब देखिए क्या है कि अब कुछ महिला बहनी मन के उत्थान के भी प्रोग्राम बनाया गया है शासन के द्वारा, है ना।

0: कि महिला मन के ऐसे गरीब रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, पैसा आमदनी का साधन नहीं रहता है।
1: हाँ।
0: तो ऐसे क्या है कि गांव में एक समूह के माध्यम से है ना, महिला मन के पैसा के पैसा दहल जाते हैं सरकार के तरफ से, आंगनबाड़ी है, स्कूल आए जाए के सब, ये सब के व्यवस्था करल गई से। और आजकल मेरे ख्याल से मैं देखी हूँ कि ये समूह के रूप में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कई जगह उद्योग चला रही हैं, कई जगह बहुत सारी चीजें कर रही हैं।
1: सही बात है, मिलके समूह में और बहनी मन बहुत काम ला करके आर्थिक रूप से मजबूत होता है, सही बताया है।
0: हाँ, कहीं तो अचार पापड़ ये सब कपड़ा के देख रेख करना, फिर मुर्गी पालन है, फिर अंडा कर रहे हैं, मछली पालन है, बहुत सारी चीज ऐसे है कि वो अच्छा से काम कर रही हैं और आर्थिक रूप से बन रही हैं।
1: वो कई बहनी मन तो ऑटो गाड़ी भी निकाल के देखी चलाता है।
0: हाँ।
1: काहे कि देखी महिला स्वयं सहायता से जुड़ के मनला जो लोन मिले बेरोजगार के रूप में, अगर लोन करे अप्लाई करते हो तो मैं बहुत कम ब्याज में मनला पैसा मिल जाते, और एक साल तक कमाए बर ऐसे भी सुने हो जो ब्याज है वो हर फ्री रहे, एक साल के बाद मनला चुकाना रहते किस्त
0: स्टैंड होने के बाद जो खड़ा हो जाए। हाँ, आजकल तो रोड में बहुत सारी महिलाएं ऑटो भी चला रही हैं, गाड़ियां भी चला रही हैं, सब देखने में अच्छा लगता है,
1: अच्छा लगे।
0: हाँ, और इस अवस्था में अगर कोई महिला को अगर घर से बाहर निकलती है, किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ करता है या उत्पीड़न करता है, तो उनको हेल्पलाइन महिला शिकायत कर सकती है। है कि अगर कोनो महिला के संग मारपीट, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, धमकी या दूसरे अपराध
1: कोई भी प्रकार
0: होते, सीधे पुलिस में शिकायत कर सकती है, कानून ओकर संग रही, और जरूरत पड़ने पर। इसके अलावा मतलब आजकल तो हर महिला बहनी के हाथ में मोबाइल है, देखा जाए है ना, और उसका उपयोग भी ग्रामीण महिलाएं भी अच्छे तरीके कैसे कर रही हैं। इसमें कुछ सरकार के द्वारा हेल्पलाइन महिलाओं के लिए बनाया गया है, तो महिला हेल्पलाइन 181 है जिसका सहारा ले सकती हैं कुछ होने पे, आपातकालीन सेवा है 112 है, और चाइल्ड हेल्पलाइन है 10-1098 है,
1: 1098
0: है ना, और सरकारी योजना सहायता से महिला मन के कई योजना के चला रही है ना, स्वयं सहायता समूह में स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में आर्थिक सहायता के माध्यम से महिला मन आत्मनिर्भर बन गई है। गांव के महिला मन पंचायत महिला एवं बाल विकास और जिला स्तर पे कार्यक्रम में उनकी अच्छी पकड़ बन गई है ना, और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से भी उन्होंने अपने आप को मजबूत की है ना, निःशुल्क कानूनी सहायता मिलता है ताकि वो अपने किसी भी तरह की कोई परेशानी को अपने न्यायालय तक पहुंचा सके।
1: हाँ, तो कितना बढ़िया है, अभी बहनी मन जागरूक भी होता है।
0: अब जैसे क्या है कि वकील पकड़ना है भाई, खुद तो कोई बात ला रख नहीं सकते हैं कोर्ट में है ना, तो मन सरकार की तरफ से मुफ्त कानूनी सहायता की भी व्यवस्था करल गई से ताकि
1: सरकारी वकील मिले।
0: हाँ, सरकारी वकील मिल जाए, सब खर्चा मतलब सरकार उठाए, यहाँ तक कि केस मुकदमा के भी खर्चा सरकार दे है ना।
1: जात जात बहनी मन ला का और समझाइश देना चाहिए।
0: अब यही है कि महिला मन के शिक्षा के साथ ओकर से जो भी थोड़ा समय निकाल के जो भी उनके लिए सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है उसकी जानकारी हासिल करें है ना, और अच्छे से उसको अपने जीवन में आत्मसार करें ताकि वो अपने जीवन को अच्छे तरह से विकास करके समाज में अपना एक स्थान बना सके, ताकि उन महिला बहनों के साथ जो पीछे की पीढ़ी आने वाली है वो अपना एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए उत्साह मिल सके है ना। और गाँव के सबो महिला बहनी मन ला यही कहूँ कि अपन अधिकार ला समझे, अगर अधिकार ला नहीं समझ कोई उनके मुफ्त में आके कुछ ये नहीं बताही कि ऐसे करा, उमन के अपन खुद जागरूक होके उठना पड़ी समाज में, और उठ जाही तो जब एक आइडियल बन जाही जैसे समाज में उठे के बाद, तो उमन के देख के बाकी महिला बहनी मन भी उमन से जुड़ के अपन सुरक्षा के लिए अच्छा से काम करे।
1: सही बताया है, उमन कर भी सहारा बन सकता है। हाँ, बहनी मन हाँ, अगर हाँ, खुद पर मजबूत होके खड़े हुए ही
0: हाँ,
1: तो और बहनी मन कर भी सहारा बन सकता
0: और बने, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो और एक महिला बहनी मन के अच्छा अवसर मिली।
1: हमारे कार्यक्रम में आए बर सलमा बहिन राउर का ढेरे ढेरे धन्यवाद।
2: बहुत बढ़िया गुड बात अजय हमन सुनेन सलमा रिजवी बहिन जगह, और सही बताइन कि जब हमारे एक ठन बहिन हर खड़े हो ही अपन जो भी अधिकार है चाहे कानून पर चाहे सुरक्षा पर, तो जम्मो जो कर ले भाई सीखी और आगू आही, तो कुछ भी हमार संगे ऐसा होता है कि जेकर ला हमन ला विरोध करना जरूरी है, तो ऐसा चीज कर विरोध हमन ला जरूर करना चाहिए, और कोनो भी गलत चीज है ओला कभी भी सहना नहीं चाहिए, और कोनो भी अन्याय है ओला नहीं सहना चाहिए, और आगू अपन जिंदगी में बढ़ना चाहिए और अपन जिंदगी ला आगू बढ़ाना चाहिए। आज बहुत सारा ऐसा रास्ता है कि जेकर माध्यम ले हमन आगू बढ़ के अपन भी अच्छा कर सकत ही, बहनी मन जग बहुत सारा ऐसा रास्ता है कि ओमन अपन बढ़िया कर सकता है, कोनो भी काम में लग सकता है। अब देखिए हमारे आसपास में बहुत सारा

अइसन चीज है कि जेकर हमन ला सुरक्षा करना है, जेकर ध्यान देना है। हमार पानी कर देख ली तो अब तो बरखा हो ही, तो ओ घनी में हमन ला ये सोचना है कि अब जैसे पेड़ पौधा उगाए के हमन गोइट बात करती और कहत रहन कि भाई जैसे हमन कोनो चीज़ भी खाती फल तो ओकर बीज ला हमन ला संजोना चाहिए और कहूँ एकती ओकती हमन जाती तो रोड कर धरी में ओला हमन डाले सकती थी। काबर कि जंगल कर कितना महत्व है हमारे बर, पेड़ पौधा कर कितना महत्व है ये जात ला हमन जानती। तो कोशिश करी कि जैसे हमन विकास करत हन तो विकास में ये पेड़ पौधा ला जो हमन काटत जात हन तो काट के नहीं एला हमन संगे लेकर चलिए। ऐसे नहीं आए कि संगे लेकर हमार विकास नहीं हो सकता है, ओ हमन विकास करब तो और भी हमार जग पेड़ पौधा ले कितना चीज़ आता है एला हमन जानती। अब पानी कर भी हमन ला संजोए के रखना है, ओकर उतना ही उपयोग करना है कि जितना हमार बर भाई जरूरी है। अब आसपास में तो है, चाहे हमार तलवा हो जाए, चाहे नदी हो जाए, चाहे हमार इंदारा हो जाए, सब ला हमन ला साफ रखना है और ओकर पानी कर उपयोग भी हमन करत ही तो बढ़ियन करना है। जमीन कर माटी जो हमारा है तो माटी ला भी हमन ला बचाना है, ओला कोनो प्रकार से प्रदूषित नहीं करना है। काबर कि जितना भी हमन खात ही आज हमार जीवन चलता है, खाना हमन ला भेटाता है, अनाज भेटाता है, तो हमार जो उपजाऊ जमीन है ओकरे माध्यम से हमन ला भेटाता है। तो कोशिश करी कि कचरा हो जाए, चाहे प्लास्टिक हो जाए, ये सब खराब चीज़ जो चीज़ माटी ला हमार खराब करते तो ऐसन चीज़ के उपयोग हमन नहीं करी। देखिए थोड़कुन बेटा बाची सा है हमार घर गोसाइन कार्यक्रम में, तो लेगी सुनी ये भोजपुरी गीत।

हाँ तो देखिए बढ़िया हमन ए भोजपुरी गीत सुनें मोहम्मद खलील और संगीता मनकर गाल रही सेकर संगे संगे जाए कर बिरा हुआता है। तो चलत चलत बस यही कहब कि अपन आस पास में जितना भी चीज है हमार बर बढ़िया ना है तो ओकर हमार सास संभाल सभी झन करत रही। और चाहे वो बिजली हो जाए चाहे पानी हो जाए चाहे कोनो चीज़ होए लकड़ी होए जंगल होए हमार हर चीज़ के हमन सास संभाल करी और देख ताक के उपयोग करी। और हमार जो लड़का मना है ओमन ला भी यही हमन से सिखाई और अच्छा चीज़ सिखाई। अपन ओमन कर स्कूल भी कुछ दिन में शुरू हो जाई तो ओमन ला भी अच्छा आदत हमन डाली। काबर की देखिए हमार लड़का मन आए हैं जो आए वाला समय के हमार भविष्य आए हैं तो ओमन सब चीज़ ला संभाले बर सीखी तो ज़रूर सब चीज़ बढ़िया रही। आज घर गुसाइन कार्यक्रम ले रमा बहिनी है चलत है फिर भेटबो राम राम जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे बहनों के लिए कार्यक्रम घर गोसाइन का प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं। ये वक्त है ईमेल की गूंज कार्यक्रम सुनने का। सभी श्रोता साथियों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं पूनम उपाध्याय। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं गीत जाने मन फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ में बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिला है आप सभी का। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रताप पांडे और रेखा पांडे का। गांव हांडी खेड़ा से राधेश्याम इंदिरा शर्मा। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, मानदेव शर्मा। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश कुमार साहू, राहुल साहू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्हे, अन्विका बेबी और अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, गुड्डू कुमार गुप्ता। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परीत, कृतिका, रमेश चंद्र डागी। जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, धानोरा विटाली। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

की आवाज में स्वामी फिल्म से। अमित खन्ना के बोल हैं, संगीत है राजेश रोशन का। पसंद किया है इस गीत को। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लक्की मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, नूर साय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम, आरती मरकाम, मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घुआणकर राही, श्रीमती सरिता घुआणकर, प्रिंस एकांश घुआणकर, अर्जुन घुआणकर और टुक टुक। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा। विरमगाम से अजीता पॉल और हेमा पॉल। शोभापुर जिला मेरठ से उमेश गौण। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, बाई सुच्चा सिंह पाठक, पीएस नुहानकर, निर्मला नुहानकर, विशाल नुहानकर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से श्रोता साथी हैं। ग्राम पंचायत खोंदरा उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा और बनियापरा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डडवानी और पूरा माखीजा परिवार। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं स्वामी फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मजबूर फिल्म से गीत। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत के लिए हमें ईमेल किया है जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी, उमा तिवारी, जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, खंडवा से निशा और दुर्गा कुमारी, झांसी से शंकरदेव चिमोरिया, ग्राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक, सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली नारंग, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार माहिरा अजीम और निशा अजीम, बदलापुर मुंबई से विनोद बंडलकर, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यशी हनी पूजा और पूरा परिवार, बुलढाणा महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक, छत्रपति संभाजीनगर सुरेवाड़ी से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, सोहम प्रांजलि बोरगांवकर, अंशुमन ओवी सदानंद, सुभाष नीरज विराज, योगिता सुवर्णा बोरगांवकर, एयरपोर्ट रोड छत्रपति संभाजीनगर से प्राजक्ता दत्त प्रसाद भाग्यमान, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी ओम कुमार सुरलकर, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर, अहमदाबाद से राजेश कृष्ण और प्रथम सोनी, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत मजबूर फिल्म से।
1: मैं लोगों के प्यार के किस्से

कार्यक्रम में अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में साहिर लुधियानवी की शब्द रचना धुंध फिल्म से। संगीत है रवि का और पसंद किया है इस गीत को रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, डुग्गू ये श्रोता साथी हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। गाँव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, इब्राहिम। रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी।

राजकोट से पूजा पायल, प्रवीण सोनी, कंचन कुसुम, कलावती जूली और जगदीश जौहरी। ग्राम अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े, मंजू राजवाड़े। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। सुनिए आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

धुंध फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। कार्यक्रम में अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कुदरत फिल्म से गीत। मजरूह की रचना है, संगीत है आरडी बर्मन का, और इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ चोड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौशर, मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर। दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जसवाल, उर्मिला जसवाल, दीपक जसवाल, स्वाति जसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जसवाल, आर्य जसवाल, कस्बा बराना जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार भानुप्रिया, वर्षा सुमन, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह, ये श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी, अंबाला से आशु खान, सोनाली खान, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमीला यमुना, जमुना कुमारी अंजू मंजू और कुमारी युवती देवदास, राज पैलेस मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से।

राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, और कोल्हापुर महाराष्ट्र से भांबिस्टे अनीता भांबिस्टे और राहुल भांबिस्टे। आप सभी के पसंद पर सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए प्रेम पुजारी फिल्म से गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, नीरज की रचना है, संगीत है SD बर्मन का, और इस गीत को सुनना चाहा है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साहिद साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी बब्बू डब्बू, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल बघेल, भारती बघेल, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, बाबू भाई, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह, जौड़ा सिटी दीवाना, तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आरिफ, आसिफ शेख, स्टेट बैंक नगर पश्चिम विहार नई दिल्ली से लव शर्मा और रोशनी शर्मा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह, आप सभी श्रोताओं के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: प्रेम पुजारी के इसी गीत के साथ ईमेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।

0: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र,
1: गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
2: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
1: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
0: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों

0: खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और

0: ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं, इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के

0: संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंथा।

अभिजीत की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अब सुनते हैं सूरज सानिम की ये गज़ल तलत अजीज़ की आवाज़ में।

डॉक्टर बशीर बद्र की ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। चंदन दास की आवाज़ में अब सुनते हैं ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

इसी गजल के साथ गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, सभा समापन से पहले आइए हम आपको आज के सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आप सुनिएगा पंडित जसराज का गायन राग मारवा। शाम 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम पेश करेंगे। 7:20 पर हम प्रस्तुत करेंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना विषय पर सुनिएगा सामयिक चर्चा। साथ ही करेंगे चर्चा विश्व महासागर दिवस पर। आजकल क्रम में सरगुजा में उन्नत धान की किस्में और उत्पादन की संभावनाएं विषय पर होगी बातचीत। रात 8 हम लेकर आएंगे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। ये श्रोताओं के फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कुछ और फिल्मी गीत हम आपकी नज़र करेंगे रात 9:15 पर चित्रपट संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत। ईमेल की गूंज में रात 9:30 पर और मनभावन कार्यक्रम के तहत रात 10:30 पर। ये तो थे हमारे शाम की सभा के शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव 238.09 यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि एफएम बैंड 100.2 पर आकाशवाणी दिल्ली से एफएम गोल्ड का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 पर शाम 5 हम आपके साथ सांध्यकालीन सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी ये सभा आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर भी। शाम के 5 बजे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ के साथ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, प्रेमनगर, कोल्हुआ, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मण गढ़, उदर बसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 96 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटापानी, कया, कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासू

0: उन खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
1: दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। हाथियों से सावधानी बनाए रखें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सांध्यकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने हरिओम शरण, नंदिनी शरण और साथियों की आवाजों में पंडित किरण मिश्र का ये भजन सुना। आइए अब सुनते हैं पंडित किरण मिश्र का ही लिखा एक और भजन। स्वर दिया है ए हरिहरन नहीं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं बेला सुलेखा की आवाज में ये भजन।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अनुप जलोटा और साथियों का गाया ये शिव भजन, रचना है पंडित किरण मिश्र की।

अनुप जलोटा और साथियों के गाए इस शिव भजन के साथ ही आज की भजन संध्या अब संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आज की वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियम और आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां शब्द साथ छोड़ देते हैं, होठ खामोश रहते हैं लेकिन आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें ना लिखा जा सकता है, ना बताया जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, आज की युवा सोच में हम बात करेंगे उन अनकहे दर्दों की जो हमारे भीतर कहीं गहरे छिपे रहते हैं। दर्द जो दिखाई नहीं देते लेकिन दिल पर अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। दर्द की अपनी एक भाषा होती है, यह शब्दों के मोहताज नहीं होते। कभी किसी की नम आँखों में, कभी किसी के मुस्कान के पीछे, तो कभी किसी की खामोशी में ये साफ दिखाई देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति हंस रहा है वो खुश होगा, लेकिन हर मुस्कान खुशी की कहानी नहीं होती। कई बार लोग अपने सबसे बड़े दुख को सबसे सुंदर मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। किसी अपने का दूर जाना, किसी सपने का टूट जाना या फिर किसी रिश्ते का बिखर जाना, ये ऐसे दर्द हैं जिन्हें समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा बातें शायद खामोशी करती हैं। जब इंसान बोलना बंद कर देता है तब उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। कई लोग अपना दर्द इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई समझेगा नहीं। कुछ लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि वे किसी को परेशान नहीं करना चाहते, और कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कहने से भी क्या ही होगा। हर इंसान अपने जीवन में कुछ सपने देखता है, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। अधूरे सपनों का दर्द बहुत अलग होता है। यह दर्द किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ता रहता है। वो छात्र जो पूरी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाया, वो कलाकार जिसे पहचान नहीं मिली, वो व्यक्ति जिसने अपने परिवार के लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया, इन सब के पास एक ऐसी कहानी होती है जिसे शायद वे शब्दों में बयान नहीं कर पाते। दोस्तों, रिश्ते हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं, लेकिन जब इन्हीं रिश्तों में दूरी आ जाती है तो दर्द भी सबसे ज़्यादा यहीं मिलता है। कभी कोई अपना बदल जाता है, कभी कोई बिना वजह दूर चला जाता है, और कभी परिस्थितियां दो लोगों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जिसे चाहकर भी पार नहीं किया जा सकता। ऐसे समय में इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है पर वो कह नहीं पाता। वो कहते हैं ना कि हर समय हर घाव भर देती है, लेकिन सच ये है कि समय घाव को मिटाता नहीं, बस उसके साथ जीना सिखा देता है। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा दर्द है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी अनकहे दर्द के साथ जी रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का दर्द दिखाई देता है और किसी का नहीं। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर मुश्किल दौर गुजर जाता है। तो दोस्तों, कुछ दर्द सचमुच शब्दों में नहीं बयां किए जा सकते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वे दर्द हमारी ज़िंदगी का हिस्सा

हिस्सा बनके हमें संवेदनशील, मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ आज की युवा सोच को यहीं विराम देते हैं और आइए दोस्तों सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सुरमा से, जिसमें आवाज़ है दिलजीत दोसांझ की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत से सजा है शंकर एहसान लॉय ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: चलते हैं दोस्तों हमारे प्रश्नों पर आधारित क्रम इंद्रधनुष में।

स्वागत है दोस्तों आपका क्रम इंद्रधनुष में। और सबसे पहले मैं हमारे पिछले कड़ी क्रमांक 74 में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब बता देती हूँ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न था, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हमारा दूसरा प्रश्न था, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, जिसका सही जवाब है 1917। हमारा तीसरा प्रश्न था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, जिसका सही जवाब है 3 फरवरी 1928। हमारा चौथा प्रश्न था, हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराया है, जिसका सही जवाब है आर प्रज्ञानंद। दोस्तों पांचवें प्रश्न के रूप में हमने आपको सुनवाए थे इस गीत के कुछ अंश, जिसमें आपको बताना था इस गीत के फिल्म का नाम।

जिसका सही जवाब है फिल्म क्वीन। दोस्तों, अब मैं आप सभी को कड़ी क्रमांक 75 के प्रश्न बता देती हूँ, जिसे आप सभी लिख लें, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। प्रश्न एक बार फिर से, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, 2026 वर्ल्ड कप में कुल कितने मेजबान देश हैं। प्रश्न एक बार फिर से, 2026 वर्ल्ड कप में कुल कितने मेजबान देश हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, महाभारत में युधिष्ठिर को किस नाम से जाना जाता था। प्रश्न एक बार फिर से, महाभारत में युधिष्ठिर को किस नाम से जाना जाता था। हमारा चौथा प्रश्न है, संस्कृत का महाकवि किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से, संस्कृत का महाकवि किसे कहा जाता है। दोस्तों, पांचवें प्रश्न के रूप में सुनिए इस गीत के कुछ अंश, जिसमें आपको बताना है इस गीत के गीतकार का नाम।

दोस्तों, अभी हमने आपको सुनवाया इस गीत के कुछ अंश, जिसमें आपको बताना है इस गीत के गीतकार का नाम। दोस्तों, अब मैं आप सभी को कड़ी क्रमांक 74 के सही जवाब देने वाले साथियों के नाम बता देती हूँ। भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, तुषारनी, खुमेंद्र मसिया। मोटसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विभूति साहू। महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। लहपटरा से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम, परमान, लल्लू, बल्लू, घन्नू, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल राम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया, सिमरन राजवाड़े। दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, राजेंद्र, यश। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन। उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिय, राधिका, अनिष्का और तन्मय। बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे। नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत। दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू। चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी, बाबू अल कबीर। मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा। बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीना, विनय शंकर, नयन, सुमांशु पांडे। चिरमिरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश, कालेंद्री लहरे। दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी, विपुल कामड़े। कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, हुड़ेंद्र, साहिल चंद्राकर। चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या, शिवम कोलाम। धरदेई से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनित, क्रिस्टी पटवा। डोंडी लोहारा से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश। नाथघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा। बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल देवांगन। आप सभी को सही जवाब देने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे द्वारा पूछे गए सही प्रश्नों के जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र भेज सकते हैं। पत्र भेजने का हमारा पता है, क्रम इंद्रधनुष शिववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड 497001। या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है इंद्रधनुष@gmail.com।

चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम फिल्म संगीत में और सुनते हैं कि जिसे हमने लिया है फिल्म सलामे इश्क से, जिसमें आवाज है सोनू, श्रेया, कुणाल, शंकर और साधना की। गीतकार हैं समीर और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

आइए दोस्तों कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं दबंग 3 का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं सलमान अली और मुस्कान की, गीतकार हैं समीर और संगीत से सजा है साजिद वाजिद ने।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवा वाणी। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
3: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सराहना विषय पर विचार बिंदु। आलेख संकलन और वाचन स्वर है रैना गुप्ता का।
1: मानव जीवन केवल सांसों की गति का नाम नहीं है, बल्कि भावनाओं, संबंधों, अनुभवों और संवेदनाओं का एक विशाल संसार है। इस संसार में कई ऐसे भाव हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और व्यक्ति के भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत करते हैं। इन्हीं भावों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, सराहना का भाव। सराहना केवल किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर देना भर नहीं, बल्कि ये उसके प्रयासों, गुणों, संघर्षों और अस्तित्व के मूल्य को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। ये वो शक्ति है जो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जगाती है, उसके जीवन में आशा का दीप प्रज्वलित करती है और समाज में सकारात्मकता का वातावरण निर्मित करती है। सराहना कोई साधारण व्यवहार नहीं, बल्कि जीवन के प्रति गहरी चेतना है। ये हमें सिखाती है कि संसार में केवल दोष देखने से जीवन पूर्ण नहीं होता, सुंदरता को, अच्छाई को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता बल्कि जीवन भी देता है, उसी प्रकार सराहना केवल शब्द नहीं बल्कि हमें ऊर्जा और आत्मविश्वास भी देती है। अक्सर लोग सराहना और चापलूसी को एक समान समझ लेते हैं, जबकि दोनों में गहरा अंतर है। चापलूसी का उद्देश्य किसी स्वार्थ की पूर्ति करना होता है, जबकि सराहना निस्वार्थ भाव से उत्पन्न होती है। यदि कोई बच्चा कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है, उसके माता पिता उसके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। सच्ची सराहना व्यक्ति के भीतर आत्मिक संतोष पैदा करती है। ये केवल उपलब्धियों की ही नहीं बल्कि प्रयासों की भी होनी चाहिए, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है और उस संघर्ष की पहचान ही वास्तविक सराहना है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी हमारी दृष्टि जैसी होती है हमें संसार वैसा ही दिखाई देता है। यदि व्यक्ति में केवल आलोचना करने की प्रवृत्ति होगी तो उसे हर जगह कमियां ही दिखाई देंगी, लेकिन यदि उसके भीतर सराहना की दृष्टि होगी तो वो छोटे छोटे कार्यों में सौंदर्य देख सकेगा। एक माली जब पौधों को देखता है तो केवल उनकी वर्तमान स्थिति नहीं देख बल्कि उनके भीतर छिपे फूलों और फलों की संभावनाओं को भी देखता है। इसी तरह सराहना भी व्यक्ति के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने की कला है। जीवन में नकारात्मक अनुभवों का सामना हम सभी ने किया है, अक्सर ये हमारी मानसिकता पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। शारीरिक घावों के विपरीत भावनात्मक घाव हमें अपने भीतर चकनाचूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसे नकारात्मक भाव हमारी बुद्धि को ईश्वर की अनेक कृपाओं की सराहना नहीं करने देते और हमारे मन की शांति को भंग कर देते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके कार्यों को महत्व मिले, और ये कोई अहंकार नहीं बल्कि स्वाभाविक मानवीय आवश्यकता है। एक कलाकार वर्षों मेहनत करके चित्र बनाता है, यदि लोग उसके कला की प्रशंसा करें तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक किसान कड़ी धूप में परिश्रम करता है, यदि उसके श्रम को सम्मान मिले तो उसे गर्व की अनुभूति होती है। एक गृहिणी पूरे परिवार की देखभाल सालों साल करती है, यदि उसके कार्यों की सराहना हो तो उसका जीवन आनंद से भर उठता है। इस प्रकार सराहना मनुष्य के मानसिक और भावनात्मक विकास का महत्वपूर्ण अधिकार है।
0: अभी आप सराहना विषय पर विचार बिंदु सुन रहे थे। आलेख संकलन और वाचन स्वर था रैना गुप्ता का। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में समाचार थोड़ी देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार, प्रधानमंत्री हा गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के विकास यात्रा ला करे हे रेखांकित। गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मन ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखे गिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मन ला दिन वीरता पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के 3 जिन जवान घलो शामिल। और मौसम विभाग हवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदार हवा गरेर के संग वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के विकास यात्रा ला रेखांकित करे हे। प्रधानमंत्री हा आज कहिन कि ये दौरान देश हा कतकोन बदलाव के साक्षी बने के संगे संग गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मन ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखे गए हे। उमन कहिन कि अंत्योदय जम्मो बेरा सरकार बर प्रेरणा स्रोत रहीस और प्रयास रहीस कि विकास के फायदा पाछू छूटे लोगन मन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री हा कहिन कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसन हर पहल के उद्देश्य लोगन मन बर गरिमा और मौका देवाना हवे। प्रधानमंत्री हा कहिन कि गरीब और वंचित मन के उत्थान के संकल्प सबका साथ सबका विकास के मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब के सेवा ओकर जिंदगी में बेहतरी के संगे संग देश के विकास, यही सब सरकार के सबले बड़का प्राथमिकता रहीस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मन ला वीरता पुरस्कार दिन। एमा छत्तीसगढ़ के 3 जिन जवान घलो शामिल है। असम राइफल में पदस्थ जवान भोजराम साहू ला मणिपुर में आतंकी मन के संग मुठभेड़ में साहस और वीरता पर शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी। तो उन्हें छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान के दौरान बड़का भूमिका निभैया पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख ला घलो शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हा 21 जून के होवैया NEET UG पुनर्परीक्षा पर परीक्षा मन के शहर के सूचना जारी कर दे है। पंजीकृत उम्मीदवार मन आधिकारिक वेबसाइट में लॉगिन करके अपन परीक्षा शहर के जानबा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 बछर पूरा होए के मौका में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हा काली ले राष्ट्रव्यापी समारोह के शुरुआत करी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हा उद्घाटन समारोह के अध्यक्षता करी। ये मौका में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन में जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाया जाही। जानबा के मुताबिक प्रधानमंत्री हा 9 जून 2016 के ये अभियान के शुभारंभ करे रहीन। एमा गर्भवती माई लोगिन मल्ला मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा दे जाते। देश के विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी हा आज अपन 90 बछर पूरा होए के उत्सव मनावत है। बछर 1936 में आजे के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस के नाव बदल के ऑल इंडिया रेडियो रखे रहीस। बछर 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के नावला बदल के आकाशवाणी करेगीस। आकाशवाणी हा आज 591 रेलवे स्टेशन मन के संचालन करत है। समाचार एक बार सुन लो। आकाशवाणी हा आज 591 रेडियो स्टेशन मन के संचालन करे थे। आकाशवाणी के प्रसारण 23 ठिन भाषा और 146 बोली में करे जाते। आकाशवाणी के ध्येय वाक्य हवय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के मौका में रायपुर में आज विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम होइस। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के 8 गैलरी में ये विशेष प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेख मन के छायाचित्र दिखाएगी। प्रदर्शनी रोजे बिहनिया 11 बजे ले संझा 5 बजे तक आम लोगन मन पर खुला रही। तो उन्हें 9 जून के अभिलेख मन के संरक्षण और ओखर महत्ता ऊपर विशेष व्याख्यान राखे गए है। कार्यक्रम के उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहर मल्ला सहेज के राखे के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। प्रदर्शनी 12 जून तक चली। संस्कृति विभाग डहर ले सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज ले आकार 2026 पारंपरिक और शिल्प और कला शिविर आयोजित करे जाते। 14 जून तक चलैया ए शिविर में युवा मल्ला 14 ठिन पारंपरिक कला विधा के प्रशिक्षण दे जाही। जेकर उद्देश्य लोक कला और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के संग नवा पीढ़ी मल्ला सांस्कृतिक विरासत ले जोड़ना है। प्रशिक्षण अनुभवी कलाकार और कला गुरु मन डहर ले दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर।

0: के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़ो बाजे समाचार कोती। धमतरी पुलिस ने 480 किलो गांजा के संग 5 झीन तस्कर में लग गिरफ्तार करे है। जब्त गांजा के कीमत 2,45,00,000 रुपया ले ज्यादा के बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ले सूचना मिले के बाद बस्तर ले रायपुर आवत एक ठीन कार और पिकअप गाड़ी के जांच करेगी। इस दौरान ये गाड़ी मन में अब्बड़ मात्रा में सफेद बोरी में ले जात गांजा बरामद करेगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी मन गांजा ल रायपुर और उत्तर प्रदेश में बेचे बर ले जात रहीन। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में हाथी के हमला में 2 झीन लोगों के मौत हो गए है। मिले जानबा के मुताबिक गुरु घासीदास तमोर पिंगला राइगर रिजर्व के देवसील गांव में रद्दा बनाए के काम चलत रहीस। पाछू रतिहा ए मजूर मन काम सिराए के बाद आराम करत रहीन। इसी दौरान हुरहा ए हाथी है मजूर मन ऊपर हमला कर दिन। हमला में 1 झीन मनखे के मौकच में मौत हो गए तो उन्हें 1 झीन आने मनखे के मौत अस्पताल ले जात खानी हो गए। वन विभाग मामला की जाँच करत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है काली रायपुर में 36वां राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर काया किंग केनोइंग प्रतियोगिता के मस्कट पहाड़ी मैना के विमोचन करीन। ये प्रतियोगिता 12 ले 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में होही। मुख्यमंत्री है विश्वास जतन कि ऐसा आयोजन ले खिलाड़ी मन ला नवा प्रेरणा दी और प्रदेश के खेल पहचान ला और मजबूती मिली। हाथी मन के मौत के कारण के वैज्ञानिक जाँच वन्यजीव अपराध के पहचान और संरक्षण जैसन प्रयास ऊपर रायगढ़ में 2 दिन के विशेष प्रशिक्षण रखेगी जिमा प्रदेश के 78 वन अधिकारी और पशु चिकित्सा विशेषज्ञ मन भाग लिन। शिविर में विशेषज्ञ मन बताइन कि छत्तीसगढ़ में ए बेरा करीबन 450 हाथी घूमत हवे। रायगढ़ जसपुर कोरबा और सूरजपुर जैसन जिला में हाथी मन के बाढ़त गतिविधि ल देखत ए प्रशिक्षण रखेगी। विशेषज्ञ मन बताइन कि हाथी मन के मौत के सही जानकारी मिले ले अवैया बेरा में ऐसा घटना मन ला रोके और वन्य जीव संरक्षण के प्रयास मल्ला और ज्यादा प्रभावी बनाए जा सकी। ए मौका में वन मंत्री केदार कश्यप कहिन कि आधुनिक तकनीक वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम ले हाथी के संगे संग जम्मू वन्य जीव मन के सुरक्षा ला बने ढंग के राखे के प्रयास सरकार ह करत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कोती ले काम करत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ह दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर शोध पीठ के स्थापना के प्रस्ताव ला मंजूरी दे दी है। डॉक्टर अंबेडकर चेयर के स्थापना ले विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यशाला जन जागरूकता कार्यक्रम और PhD कार्यक्रम ला नवा दिशा मिली। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग है वैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदारधा हवा गरेर के संग वर्षा होए की चेतावनी दे है। इस दौरान करीबन 50 ले 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले तेज हवा चल सकते। उन्हें कोनो कोनो जगह में गाज गिरे की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अवैया 3 ले 4 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ में पहुंच सकते जखर बाद 12 जून ले प्रदेश में बने ढंग ले वर्षा होए की संभावना है। यही बीच आज राजधानी रायपुर के संगे संग कुछ एक जिला में हुरहा मौसम बदलिस और तेज हवा के संग हल्का वर्षा होइस। अब थोरकू समाचार सार मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक काली बिहनिया 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर के मंत्रालय में होगी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव है अपन बस्तर प्रवास के दौरान आज सुकमा में अमृत मिशन ले बनाया जात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कामकाज के निरीक्षण करीन। संगे संग सबरी नदी ऊपर बनत इनटेक वेल के काम लघलो देखिन। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। प्रधानमंत्री है गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के विकास यात्रा ला करे रेखांकित। गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मल्ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में रखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मल्ला दिन वीरता पुरस्कार छत्तीसगढ़ के 3 झीन जवान घलो शामिल। और मौसम विभाग है वैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदारहा हवा गरेर के संग वर्षा होए के देहे चेतावनी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
2: छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए।

हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गोदोरी। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं रामेश्वर लकड़ा और साथियों के स्वरों में ये सादरी चालेर कर्मा गीत।

रामेश्वर लकड़ा और साथियों के गए इस चालेर कर्मा गीत के बाद आइए अब सुनते हैं ठाकुर मिंज और साथियों के स्वरों में ये सादरी भजन।

ठाकुर मिंज और साथियों के गाए इस सादरी भजन के साथ ही आज की गोधूली संपन्न होती है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म लव स्टोरी का गीत सुना। गीतिका था आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का था। आनंद बख्शी का ही लिखा गीत और आर डी बर्मन के ही बनाई धुन पर आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म बेताब से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए फिल्म कयामत से कयामत तक इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी रायपुर है, अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
6: बंधु, नई कार जीतने का मौका

0: वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के बालो जिले के भोजराम साहू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। और धमतरी पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
11: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
10: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोरीठेमा गांव के रहने वाले

0: भोजराम साहू भी शामिल हैं। भोजराम साहू असम राइफल्स में राइफलमैन के पद पर हैं। उन्होंने मणिपुर में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। राष्ट्रपति ने आज उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया।
1: राइफलमैन भोजराम साहू, तीसरी बटालियन असम राइफल्स, 15 नवंबर 2024, आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से दो विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में तीनों विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल 9 जून से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूची जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हाथियों की मृत्यु के कारणों की वैज्ञानिक जांच, वन्य जीव अपराधों की पहचान तथा संरक्षण संबंधी प्रयासों पर रायगढ़ में 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के 78 वन अधिकारियों और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। शिविर में विशेषज्ञों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 450 हाथी विचरण कर रहे हैं। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से हाथियों सहित सभी वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी पुलिस ने 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2,45,00,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर बस्तर से रायपुर आ रही एक कार और पिकअप वाहन की जांच की गई। इस दौरान इन वाहनों में भारी मात्रा में बोरियों में ले जाया जा रहा गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गांजे को रायपुर और उत्तर प्रदेश में खपाने की फिराक में थे। मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देवसील गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। बीती रात श्रमिक काम खत्म करने के बाद आराम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक हाथी ने श्रमिकों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर रायपुर में आज से विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में इस विशेष प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी। वहीं 9 जून को अभिलेखों के संरक्षण और उनके महत्व पर विशेष व्याख्यान

0: आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। यह प्रदर्शनी 12 जून तक चलेगी। संस्कृति विभाग द्वारा सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज से आकार 2026 पारंपरिक शिल्प और कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 14 जून तक चलने वाले इस शिविर में युवाओं को 14 पारंपरिक कला विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोक कलाओं और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। प्रशिक्षण अनुभवी कलाकारों और कला गुरुओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन ने दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉ. अम्बेडकर चेयर शोधपीठ की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। डॉ. अम्बेडकर चेयर की स्थापना से विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, जन जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्राधारित अनुसंधान और PhD कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता के मस्कट पहाड़ी मैना का विमोचन किया। यह प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नव रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है। इस दौरान करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना है। इसके बाद आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। इस बीच आज राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में आज दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल 9 जून को सुबह 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज सुकमा में अमृत मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही शबरी नदी पर निर्माणाधीन इंटेक वेल के कार्यों को भी देखा। दुर्ग पुलिस ने जामुल थाना क्षेत्र से एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से 10 लाख रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया है। और राजनांदगांव जिले के ईरा गांव में एक नाबालिग बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण में गंभीर लापरवाही बरते जाने के आरोप में राज्य शासन ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.के. टंडन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के भोजराम साहू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से राष्ट्रीय समारोह की शुरुआत करेगा। और धमतरी पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बतलाते हैं। पहले सुनिए हमारे इस सभा के शेष आकर्षण।

अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सुनेंगे चंद गजलें। 7:20 पर किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें सरगुजा में उन्नत धान के किस्में और संभावनाओं के विषय पर चर्चा की जाएगी, साथ ही सहकारिता से समृद्धि विषय पर भी बातें होंगी। साथ ही क्रम सुनेगा आज कर किसान। रात 8 सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुनेगा इंस्टा फरमाइश। रात 9:15 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण होगा। 9:30 पर ईमेल की गूंज का प्रसारण हम करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामनी में रात 10 पंडित जसराज का राग मारवा में ख्याल गायन हम आपको सुनाएंगे। फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन सुनेगा रात 10:30 पर।

हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु सुनेगा 6:30 पर। रामचरितमानस का गायन हम आपको सुनवाएंगे 6:35 पर। कृषि संबंधित सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात हम प्रस्तुत करते हैं सुबह 6:45 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल सुनेगा सुबह 7:00। 7:15 पर सुगम संगीत का प्रसारण होगा। 7:30 पर जन संपर्क से प्राप्त सूचना और पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा हम आपको सुनवाएंगे। 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित कार्यक्रम मोर भुइया हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। 9:00 गीतों और बातों का कार्यक्रम गुंजन हम पेश करेंगे। 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा उजाले की ओर। 10:30 पर नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तारा ने हम पेश करेंगे।

11:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे आपकी पसंद। 12:00 एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। एक ही शब्द पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चैन सुनेगा 12:30 पर। 11:10 पर बहनों के लिए घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसमें समसामयिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम का आईना हम आपको सुनाएंगे। साथ ही घर आंगन मेल और गीत संगीत भी बहनें सुनेंगी। 11:40 पर ईमेल की गूंज और 2:30 पर गीत गंधा आप सुनेंगे। शाम 5:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। रात 8:00 इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर। इसमें 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। रात 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 7:05 और 24 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा लेकर आज मैं हाजिर हूं आपके साथ पद्मनाभ शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुदर्शन फाकिर की इस गजल के साथ, इसे आवाज दिया है जसवंत सिंह ने। सूखे पत्ते का मुकद्दर लेकर आग के शहर में रहते हैं जनाब, सूखे पत्ते का मुकद्दर लेकर आग के शहर में रहते हैं जनाब। तुम तो करने लगे पल पल का हिसाब, कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: रास्ते टोकते हैं रास्ता चलते मुझको, रास्ते टोकते हैं रास्ता चलते मुझको, ये भी रखते हैं मेरी खोज खबर लगता है। लग गई मुझको जमाने की नजर लगता है, अब कोई ख्वाब सजाने में डर लगता है। लीजिए पेश है विजय सिन्हा की ये गजल ए हरिहरन की आवाज में।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आप सुनेंगे पंडित जसराज का राग मारवा में ख्याल गायन। ईमेल की गूंज आप सुनेंगे रात 9:30 पर, और 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही रात 8 बजे सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश भी आप सुनेंगे। मीडियम वेव पर और एफएम बैंड्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं और किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनवैया हमर जम्मू किसान भैया बहन बहनी मन कर बहुत बहुत स्वागत हमर कार्यक्रम चौपाल में। किसान भैया बहनी मन, आज हमन भाई चौपाल में ज्ञान विज्ञान कर बारे में बात सुन कर संगे संग खेती पाती कर बारे में भी बात हो ही। कुछ दिवस आए, विशेष दिवस है, ओकर बारे में गोट करब और गीत संगीत मंडी भाव मौसम कर जानकारी के साथ हमर कार्यक्रम आज संपादित हो ही। तो शुरू करल जाए पहले हमर कार्यक्रम। आज हमन देखब किसान भैया बहनी मन, एक ठन बहुत सुघर दिवस आए, वो दिवस का नाम है विश्व महासागर दिवस।

संपादित होइ। तो शुरू करल जाए पहले हमर कार्यक्रम। आज हम देखब किसान भैया बहिनी मन, एकठन बहुत सुघर दिवस है। वो दिवस का नाम है विश्व महासागर दिवस। जैसे कि हमन महासागर के तो हमन जानबे करते हैं कि भाई हमर भारत देश कर लगभग तीन तरफ से महासागर है, और महासागर कर का महत्व है, यही महत्व कर बारे में सुरता करते हुए आज पूरा विश्व भर में विश्व महासागर दिवस मनाता है। काबर कि महासागर अगर बची तबे पृथ्वी हर बची। विश्व महासागर जो दिवस है प्रत्येक वर्ष 8 जून के मनाते हैं। एक उद्देश्य महासागर के महत्व के प्रति जो आम मन से मना है उमला जागरूक करना, समुद्री संसाधन का संरक्षण पर वैश्विक रूप से प्रयास करके ओके बढ़ावा देना। पृथ्वी का सतह का लगभग 71% भाग महासागर से ढकल है, और मानव जीवन, जलवायु संतुलन और जैव विविधता का प्रमुख आधार भी है। महासागर खाली करोड़ों मन से मन पर भोजन रोजगार का स्रोत है। संगे संग पृथ्वी के तापमान ला नियंत्रित करे और ऑक्सीजन के उत्पादन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर ला पृथ्वी कर फेफड़ा भी कहल जाते हैं। काबर की विश्व का लगभग आधा आबादी का जो ऑक्सीजन का उत्पादन है वो महासागर कर कारण होते महासागर पर निर्भर है। साथ में अगर हम देखा तो भाई वातावरण में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक बड़ा हिस्सा भी महासागर अवशोषित करके और जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है ओला कम करे में सहायता करते हैं। बाकी आज हम देखब तो भाई प्लास्टिक प्रदूषण होगी, तेल का रिसाव होगी, समुद्री संसाधन का अत्यधिक दोहन, बढ़ता समुद्री तापमान और अम्लीकरण जैसा चुनौती जो है महासागर के अस्तित्व पर संकट पैदा करता है। प्रत्येक बच्चर लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंच जाते जेकर से समुद्री जीव और पारिस्थितिक तंत्र जो है ओला नुकसान पहुँचता है। विश्व महासागर दिवस हमला भाई ये बात ला बताते संदेश ला देते कि महासागर का सुरक्षा केवल तटीय देश का जिम्मेदारी नहीं है, बाकी पूरा मानवता का दायित्व है। हमारे जितना मन से मन है जो महासागर के आसपास रहते हैं खासतौर पर उमन कर विशेष जिम्मेदारी है कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें। संगे संग जल स्रोत कर जो प्रदूषण होता है जल स्रोत में ओकर प्रदूषित होए से बचाना है। समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना है और संगे संग सतत विकास का सिद्धांत कर पालन करके हमला महासागर मल्ला सुरक्षित रखे कर प्रयास करना चाहिए। काबर कि महासागर स्वस्थ रही तो हमर जलवायु संतुलित रही, जैव विविधता संरक्षित रही और आए वाला जो पीढ़ी कर जो हमार पृथ्वी है अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनी। तो यही संदेश के साथ भाई कि महासागर ला हमला सुरक्षा रखना है। अगर हमारे अपन दैनिक जीवन में प्लास्टिक प्रदूषण और अन्य तरह का जो प्रदूषण है ओकर में अगर हमन कमी करत हन, जाने अनजाने जो हमन से हो जाते वाला अगर समझ के हमन दूर करत हन तो धीरे धीरे कर पूरा जो पृथ्वी है प्रदूषण मुक्त हो सकता है। संगे संग हमर जो महासागर है वो भी प्रदूषण मुक्त रही और ओकर से भाई मानव सभ्यता मानव जीवन कर जो संकट आयकर जो संभावना है वह कम हो जाएगी। एकठन आज अवसुघर भाई योजना कर बारे में हमन बात करत हन जेकर बारे में हमर जम्मो जन जान था, बाकी ओकर बारे में जेमन लाभ नहीं ले पाइन है, जेमन पात्र हैं वो लाभ नहीं ले पाइन है तो ओमला भी जानना जरूरी है। भारत सरकार जो है हर गरीब ला पक्का घर दे कर योजना पर काम करता है, जेला हमन कथन प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का बहुत बढ़िया महत्वाकांक्षी योजना है जेकर उद्देश्य है कि भाई सब कर बर बढ़िया घर हो, पक्का घर हो। संगे संग योजना कर माध्यम से आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, चाहे बेघर हैं, चाहे कच्चा मकान में रहे वाला परिवार हैं, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उमल्ला मिले ओकर में रहें, यही उद्देश्य है। हमन देखब तो योजना हर 2015 में शुरू करल गए रही और वर्तमान में भी योजना हर चलता है। एकर माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवार मल्ला पक्का मकान उपलब्ध कराल जाते, कच्चा और जर्जर मकान में जो रहे वाला परिवार हैं उनका जीवन स्तर सुधारना एकर उद्देश्य है। महिला मल्ला संपत्ति के स्वामित्व में प्राथमिकता मिले योजना कर माध्यम से हमन देखब तो महिला मन कर नाम से भाई जब संपत्ति हो एकर भी सरकार एकर बारे में प्रावधान करता है। स्वच्छ शौचालय, बिजली, पेयजल और स्वच्छ ऊर्जा जैसा जो मूलभूत सुविधा है एकर सहित आवास बनाए कर दिशा में भी सरकार कर काम चलाता है। आज हम देखब तो लाखों करोड़ों घर जो है पूरा भारत देश में बन गई है, लाखों करोड़ों परिवार भी हैं जिमन ये योजना कर लाभ से लाभान्वित भी हैं। योजना कर अगर हम बात कर भाई हमार शहरी क्षेत्र के मन से मन तो भाई योजना का लाभ लेता है, ग्रामीण क्षेत्र के भी लेता है, लेकिन एला दो भाग में बांटल गई है। शहरी क्षेत्र पर अलग प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भाग है और ग्रामीण क्षेत्र पर अलग है। आज हम बात कर भाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर बारे में कि हमारे गांव कर जो रवैया मन है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे ले सकता है, तो एक बारे में हम देखब तो भाई योजना ग्रामीण क्षेत्र कर बेघर और कच्चा मकान में रहे वाला गरीब परिवार बड़ा है। एक बार जेकर पास पक्का मकान है ओला नहीं मिली, जेकर पास पक्का मकान नहीं है

ओला ये योजना का लाभ मिली। कच्चा और एक या दो कमरा कर जर्जर मकान में रहे वाला परिवार हमन ला प्राथमिकता देहल जाते। संगे संग सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर चयनित परिवार अगर आए तो उमन ला ये योजना का लाभ मिलते। भूमिहीन मजदूर, आदिम जनजाति समूह कर और मुक्त बंधुआ मजदूर ए प्रकार कर जो लोग आए एमन ला विशेष पात्रताए में आए। हमन देखा सामान्य क्षेत्र में लगभग 1,20,000 रुपया तक कर आर्थिक सहायता मिलते। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 1,30,000 रुपये का सहायता सरकार की तरफ से है। मनरेगा कर माध्यम से मजदूरी सहायता और शौचालय निर्माण पर अतिरिक्त रूप से सहायता भी मिलते। हमन देखा तो भाई एक बार आवश्यक दस्तावेज का है वाला हम जान ली। आवश्यक दस्तावेज के रूप में अपन पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, आय कर प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास कर प्रमाण पत्र होना चाहिए, कोई मोबाइल नंबर हो वाला देना है, पासपोर्ट आकार कर फोटो लगते। अब भूमि के संबंध में जो दस्तावेज है जहाँ मांगते हैं भाई वहाँ जग लागू है। कहीं कहीं जग दो प्रकार से लेते हैं, कहीं अगर भूमिहीन व्यक्ति है तो वाला अलग प्रकार से मिलते, और भूमि अगर हमर है उसमें सहायता के संग भूमि का दस्तावेज मांगते हैं। हमन देखब तो भाई ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत से संपर्क करना है। पात्रता सूची में अगर अपन नाम है तो आवेदन प्रक्रिया ला पूरा करल जाते। सत्यापन के बाद किस्त में सीधा जो राशि है वो हमारे बैंक खाता में आ जाते। हमन देखो तो प्रधानमंत्री आवास योजना खाली घर बनाए कर योजना नहीं है, बल्कि गरीब परिवार ला सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करे कर माध्यम भी है। पक्का घर मिले से परिवार मन ला प्राकृतिक आपदा, वर्षा, गर्मी और अन्य जो जोखिम से है वो मन से सुरक्षा मिलते। महिला मन कर नाम पर स्वामित्व हो जाए से उमन का भी सामाजिक सशक्तिकरण मिलते। तो कुल मिला के हमन अगर बात कर तो प्रधानमंत्री आवास योजना भारत कर गरीब और वंचित वर्ग कर एक परिवर्तनकारी योजना है। एकर मूल लक्ष्य है कि कोई भी देश कर जो परिवार है बेघर मत रहे, प्रत्येक नागरिक ला सम्मानपूर्वक जीवन जिए कर अधिकार रहे, अपन पक्का घर हो। यही कारण से गला घर गरीब को पक्का घर अभियान के रूप में देश भर में व्यापक सफलता भी मिली सा है। तो किसान भैया अभिनमन आगू तो हम गोट बात करबो, बाकी एक ठन गीत है वोला सुनल जाए।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई बढ़िया कन गीत ला भी सुने, संगे संग संदेश ला भी सुने। किसान भैया बहनी मन, हमन देखब भाई मानसून हमारे भारत देश में प्रवेश कर गई सा है और आए वाला कुछ दिन में हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश कर जाही। यही वो समय है जब किसान भैया बहनी मन खेती पाती कर जो काम है उनमें तेजी ले आते हैं और किसान भैया बहनी मन भाई एक पूरा बछर जो है वो इंतजार करते हैं यही वाला समय कर कि भाई ये समय आही मानसून कर। जब समय आही वो घनी धान कर खेती कर बढ़िया तैयारी हमन करब और उत्पादन बढ़िया करी। सरगुजा में भी उन्नत धान कर किस्म और उकर उत्पादन का संभावना बहुत आ है। बाकी उन्नत धान कर किस्म कर बारे में भी हमारा जानकारी होना चाहिए और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग किस्म भी है। आगू हम एक बारे में बात करब। हम देखब सरगुजा संभाग कर पहचान अगर हम बात करी तो छत्तीसगढ़ कर प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्र में भी होते। यहाँ कर जलवायु, पर्याप्त वर्षा, उपजाऊ मिट्टी और कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है धान उत्पादन पर बहुत ही अनुकूल आ है। हम देखब तो किसान उन्नत किस्म, वैज्ञानिक खेती और आधुनिक तकनीक अगर अपनाए तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि मिल सकता है, बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकता है। हम देखब तो भाई सरगुजा में औसत वार्षिक वर्षा 1200 से लेकर 1400 मिलीमीटर के आकर बीच में रथे। हम देखब तो धान कर खेती पर इतना जो पानी है बहुत ही बढ़िया मानल जाते, पर्याप्त मानल जाते। यहाँ कर मध्यम भारी दोमट और मटासी मिट्टी जल धारण क्षमता में अच्छा होते जेकर कारण धान कर फसल ला अनुकूल वातावरण मिलते। अधिकांश किसान जो है खरीफ मौसम में धान कर खेती करते हैं जेकर से क्षेत्र कर भाई विकास होते, उमन कर खुद कर विकास होते और उत्पादन भी बढ़िया बगरा भेटाते। हमन देखब तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग धान कर किस्म है। सरगुजा क्षेत्र में भी कई प्रकार कर जो उन्नत धान कर किस्म है जैसे स्वर्णा है सर्वाधिक लोकप्रिय किस्म है। अवधि 145 से 150 दिन कर है। उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से है। महामाया है, राजेश्वरी है, इस प्रकार से कई कई प्रकार कर जो

धान कर किस्म है, कई सारा ऐसा किस्म भी है जो हमार कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में एला बनाई ना है, और बढ़िया हमार क्षेत्र में जो बढ़िया उत्पादन भी भेटाते हैं। हमार किसान भैया बहनी मन भाई, हमारे जो सरगुजा कर जो लोकल जो धान कर किस्म है ओला लगाता है और बढ़िया लाभ भी कमाता है। बाकी हमारा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भाई कौन प्रकार का धान ला हमें लेना है, मध्यम अवधि कर की, ज़्यादा लंबा अवधि कर की, छोटा अवधि कर, वो हिसाब से अपन खेत कर हिसाब से ओकर चयन करना चाहिए। और एक बात करो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई भी फसल अगर हमारा लेना है तो ओकर कुछ तकनीक है, कुछ विधि है, ओकर हिसाब से अगर हमन खेती पाती करी तो कोई भी फसल में हमारा नुकसान नहीं हो सकता है। वही प्रकार से धान में भी हमारा नुकसान होने का संभावना कम हो जाएगी। जैसे सबसे पहले बीजोपचार करना नहीं भूलना है, बुआई से पहले फफूंदनाशी और जैव उर्वरक से बीज का उपचार करना है, एकर से अंकुरण बढ़िया होते और रोग कर जो प्रकोप है और भी कम हो जाते। लाइन विधि से रोपाई करना चाहिए, पौधा से पौधा कर दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार कर दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधा ला बढ़िया पर्याप्त प्रकाश मिले और पोषण मिले ऐसा हमला व्यवस्था बनाना चाहिए, और कतार से कतार दूरी में बोए से एक व्यवस्था बन जाते हैं। हम देखब तो भाई संतुलित रूप से हमला उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए, माटी कर परीक्षण के आधार पर माटी कर कार्ड में जो अनुशंसित मात्रा है वो हिसाब से हमला खातु का प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहले भाई वही हिसाब से नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का उपयोग हमला करना चाहिए, ओकर से उत्पादन हर बढ़िया बढ़ते, संगे संग लाभ लागत भी जो है वो कम हो जाते। समय पर निराई गुड़ाई और उपयुक्त खरपतवार नाशी का प्रयोग हमला 20 से 25 प्रतिशत तक उत्पादन एकर कारण बढ़ जाते, तो हमला भाई अनुशंसित रूप से और संतुलित रूप से खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए। आजकल तो भाई ये बढ़िया बढ़िया जैविक खरपतवार नाशी और कीटनाशक भी मिलता है, ओकर भी हमन प्रयोग कर सकत हन। सबसे प्रमुख बात आ है जल प्रबंधन कर बारे में, सिंचाई कर व्यवस्था जो है बढ़िया हो, बर्खा कर घनी है और जहाँ लगता है ये बात कर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई खेत में बहुत ज़्यादा पानी मत हो जाए जेकर से हमारे धान कर फसल हर सड़े लगे, तो उचित हमला जल प्रबंधन करना चाहिए। फसल कर आवश्यकता अनुसार हमला लगता है कि सिंचाई करना है तो सिंचाई भी कर देना चाहिए, और ऐसा करब तो हमन देखब तो पौधा कर विकास बहुत बढ़िया से हुई। हमन देखब तो सरगुजा संभाग में अभी कई क्षेत्र में पारंपरिक खेती कर पद्धति अपनाल जाता है। अगर किसान भैया बहनी मन उन्नत बीज, वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन और यंत्रीकरण, जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा कृषि विभाग कर जो योजना है उमन कर लाभ लें तो वर्तमान उत्पादन में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है। सुगंधित धान जैसे दुबराज, विष्णुभोग कर उत्पादन और ब्रांडिंग से हमर जो क्षेत्र के किसान भैया बहनी मन है सामान्य धान का तुलना में अधिक आय प्राप्त कर सकता है। एक बार अतिरिक्त रूप से किसान उत्पादक संगठन कर माध्यम से सामूहिक विपणन कर बेहतर और बढ़िया मूल्य हमन प्राप्त कर सकते हैं। सरगुजा में धान कर उत्पादन कर अपार संभावना है, कई प्रकार का जो यहाँ उन्नत किस्म है उमन का हम चयन करी, संगे संग दुबराज विष्णुभोग जैसा सुगंधित किस्म कर जो वैज्ञानिक तरीका से जो खेती पाती अगर हमन करी तो किसान भैया बहनी मन कर आय बढ़ सकता है, आमदनी बढ़ सकता है और किसान भैया बहनी मन कर जीवन स्तर बढ़िया सुघर बन सकता है। आधुनिक कृषि तकनीक, गुणवत्ता युक्त बीज और उचित बाजार प्रबंधन कर माध्यम से सरगुजा खाली छत्तीसगढ़ में नहीं बाकी पूरा देश में प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्र में अपन पहचान और मजबूत करता है। हमन देखब तो भाई उन्नत बीज, वैज्ञानिक खेती और बेहतर विपणन यही सरगुजा के किसान मन कर समृद्धि कर प्रमुख आधार है। हमर किसान भैया बहनी मन जो धान कर बेहतर फसल लगाते हैं और बढ़िया योजनाबद्ध तरीका से खेती पाती करते हैं तो मन का जीवन स्तर लगातार सुघर बन जाता है। तो किसान भैया बहनी मन आगू तो और गुड बात ला करबो, बाकी एक ठन किसान है देवेंद्र यादव पिंटू ग्राम दीवानपुर का, इनका से गोड बात बीनू भैया के हो रही सो गोड बात ला सुनल जाए।

0: नगद दूर आ गए हूँ राउर मन से गोट बात कर के सुनवाए। अब ये जगह है, देखिए राउर अगर अंबिकापुर ले आया थी तो सोच राउर ला सीतापुर, सीतापुर ले देखिए दे पत्थल गांव। बाकी पत्थल गांव जाना नहीं है, राउर मंडला पत्थल गांव ले 5-7 किलोमीटर ये दे पहले एगो गांव पढ़ी और वो गांव का नाम है दीवानपुर। आ मोर भेंट होगी से गो सुगर किसान से, नगद दे कमात खात अहाँ आऊ कहब तो बढ़िया दे तरह तरह कर मोटर गाड़ी रखीन है, ट्रैक्टर मंडला रखीन है, कहब तो दे खेती पाती ले इतना बढ़िया कमात है नहीं कि मोर मन हर नहीं मानिस मैं कहन की गोट बात करत चलूं। तो दीवानपुर करे किसान ले जाना थी इनकर नाम का है?
1: मोर नाम है देवेंद्र यादव, बाकी गांव में जनरली मोला पिंटू नाम से जानते हैं।
0: तो राउरला पिंटू कही चाहे देवेंद्र भैया कही नहीं तो राउर मोके ये बताई कि खेती पाती में राउर अभी जो राउर खेत मन में लागिन हुई ते मन ला बताई कि का का लगी से?
1: अभी तो मैं टमाटर लगाए रहे हैं 1 एकड़ में, और मिर्चा लगी से 1 एकड़ में, तरबूज लगी से और बैगन लगी से।
0: तरबूज कहन खीरा कहन और बैगन कहन?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो देखिए तरबूज कर खेती तो अभी भाई बहुत जरूरी है, काबर की हर कहीं तो पानी ला पुराल भी नहीं। कितना जगह में तरबूज लगाए?
1: लगभग 1 एकड़ में हो जाए सर।
0: तो 1 एकड़ में अगर तरबूज राउर लगाए ही तो एक बीज और बिहन मनला बताई कि कहाँ ले जुगाड़ करें?
1: मैं अभी तो टोटल चीज ला मतलब हमारे यहाँ लोकल जो मार्केट में मिल जाते और मैं जर्मिनेशन नहीं करे ही, मैं तो टोटल मैंने ट्रे वाला जो रायपुर ले वो नर्सरी ले मंगाए रही। हाँ 5 रुपया पीस के हिसाब से मोला पौधा घर उपलब्ध कराए दे रही यहाँ के जो दुकान वाला है कृषि केंद्र वाला मन। और मतलब लगभग मैं बीज नहीं लानो मोर मोला जो भी कंपनी के रथे जो भी जरूरत पड़ते ना ओकर मोला नर्सरी उपलब्ध करवाए देते मन पौधा दे देते।
0: तो पौधा पौधा में कही तरबूज कर ऊपर 1 एकड़ में राउर खेती करे ही तो कितना खर्चा करें पौधा पौधा में?
1: पौधा पौधा में लगभग मैं 1000 पौधा यूज करे हूँ, काबर की तरबूज के खेती शुरू करे हूँ तो 1000 पौधा लगभग मैं लगाए हूँ।
0: तो 5-6 हजार राउर दे पौधा ऊपर खर्चा करे?
1: हाँ हाँ।
0: और बाकी खर्चा मन ला अगर जोड़ी मोटा मोटी तरबूज ऊपर अजे जो खर्चा करे ही राउर चाहे वो सिंचाई ला कह ली चाहे निंदाई गुड़ाई ला कह ली चाहे तोराई ला मन ला कह ली कितना करे हो लगभग?
1: लगभग वही 10-15 हजार करे ही
0: है ना।
1: काबर शुरू बार है तो अभी थोड़े से समझे में भी लागते लेकिन बढ़िया उत्पादन होते, अभी तो शुरू नहीं करे हो लेकिन मोला समझ में आ गई कहा तरबूज के खेती।
0: तो एक साल में? एक साल भी नहीं कही है, कहां एक साल का खेती? नहीं
1: नहीं 2 महीना के मान के चला, 2-3 महीना।
0: तो 1 एकड़ में 2-3 महीना कर खेती तरबूज कर अगर हमरे करा थी तो अभी कर हिसाब से अनुमानित बताई राउर कितना लाभ कमाए सकत ही?
1: अभी तो अब रेट के ऊपर हो तो बाजार में जो भाव रही रेट तो कभी गिरते कभी उठते, तो अभी 1 एकड़ में लगभग 30-40 हजार 50 हजार बढ़िया रेट रही तो लाखों पहुँच जही
0: है ना।
1: हाँ।
0: तो बाकी रेट के ऊपर है लेकिन नुकसान में तो नहीं?
1: नुकसान तो नहीं है।
0: और पहिल धार करे ही?
1: हाँ पहिल धार करे ही।
0: तो भाई बाकी चीज हर समझ में आ जाही, ओकर बाद देखी लाभ हर भी समझ में
1: आ जाही।
0: और ओकर अलावा राउर
1: बैगन के है और टमाटर के है और मिर्ची के है?
0: मिर्ची के है, टमाटर के है, बैगन के है। तो मोके चटिक बैगन कर बारे में बताई कि बैगन कब ले शुरू करे ही?
1: बैगन भी मैं साते में लगाए रहे ना, अभी बैगन टूटत है डेली के मोर नहीं तो अभी 2-3 क्विंटल टूटत है और मार्केट में अब अपन लोकल मार्केट में बेचती बाकी तो व्यापारी मन बाहर भेजत हो ही तो 20-25 रुपया थोक रेट मोके मिलत है।
0: कितना कहन टूटत है अभी?
1: 2-3 क्विंटल टूटत है।
0: और का भाव चलत है?
1: 15-20 रुपया 25 रुपया डेली के अलग अलग रेट है।
0: हाँ तो देखिए भाई एक दिन में इतना टूटा था है तो भाई वो में तो लाभ कमाती
1: है। हाँ लाभ कमाती है, बढ़िया है।
0: ड्रिप कर व्यवस्था करे ही?
1: हाँ ड्रिप का वाला खेती करे ही सब, टोटल ड्रिप वाला।
0: तो ये ड्रिप ला अपने से लगवाए ही कि सरकार तरफ करे?
1: अपन तरफ से लगवाए ही और फार्म भी भरे ही अभी ओला करे में।
0: अगर लह जाता है तो भेटा जाही?
1: लह जाते तो भेटा जाही। और का है अभी शुरू ये 1-1.5 साल होते मोला खेती में उतरे हो, महू मतलब पुराना खेतिहार चाहे किसान नहीं हो तो अभी मोला थोड़ा समझे में भी टाइम लागी और पढ़ाई लिखाई में ठीक लागी तो मैं बहुत कम उम्र में ही खेती शुरू कर दे।
0: बहुत सुघर देखी युवा किसान ही राउर और कहत ही कि 1-2 साल होवत है राउर के खेती पाती में उतरे। मैं देखी जानना चाहूँ कि पढ़े लिखे भी दिशा थी भाई मजे तो पूछ नहीं पाए हूँ राउर से। बाकी पढ़े लिखे कर बाद युवा होए कर बाद इतना सुघर तरीका से खेती पाती करके राउर कमा थी, कहाँ ले सोचें कि ये दे नौकरी मनला छोड़ी आने काम बुता मनला छोड़ी और खेती में उतर के नगद लाभ कमाई।
1: अब एला बताई तो मोर दादा शुरू ले हमार गाँव के सबसे बड़े खेतिहार रही, लगभग 40 एकड़ ओकर जमीन रही। हाँ मोर पिताजी मन दुई भाई रही और मोर पिताजी अभी कोर्ट में न्यायालय में पदस्थ है। तो मैं बचपन से बहु बाहर मोर शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ जहाँ मोर पिताजी के पोस्टिंग रही वहाँ वहाँ मैं पढ़े। तो सरगुजा में सूरजपुर में भी रहे, अंबिकापुर में भी रहे। ओकर बाद मोर पिताजी के जैसे जैसे ट्रांसफर होगी तो मोला बाहर भेजिन, तो मैं 12वीं ला बिलासपुर पढ़े, ओकर बाद डी फार्मा करें।

0: डी फार्मा करे के बाद आईटीआई ले में कोपा भी करेन, लेकिन खेती में जब पिताजी संग रहेन और मोर माता जी मरे शुरू ले बहुत मेहनत अकेले 20 एकड़ के खेती करते हो। हाँ तो ओकर जब मेहनत ला देखेन ओकर आमदनी ला देखेन, मोर पिताजी ला 21 साल हो गिस बाहर नौकरी करत।
1: हाँ
0: तो हमन देखेन और मैं देखे नौकरी ला और खेती ला, तो मोर माता संग में ओला ओला देख के मोला प्रेरणा होइस कि मोर घर में इतना जमीन बाड़ी रह के भी मैं नौकरी भी करूँ तो गांव के मोला माहौल नहीं मिली और गांव के जो संस्कृति है उमे मोला ज्यादा आकर्षित करी और खेती बाड़ी में मोर रुचि होगी तो मैं फिर खेती में उतर गई।
1: देखी कितना सुगर राउर बता थी, राउर खेती पाती करे कर प्रेरणा कहीं ना कहीं राउर माता जी है। आऊ इतना सुगर खेती पाती करत ही, और एक बात आऊ कहन तेहर देखी मन ला मोह लेस कि राउर यहाँ कर संस्कृति यहाँ कर परंपरा यहाँ कर रहन सहन हर नहीं इधर राउर ला आकर्षित करीस। तो राउर अभी अगर हमार युवा किसान राउर ला सुनत है, राउर आमदनी भी नगद है, मैं तो देख के समझा थो राउर घर दूरा लाए जग हो तो राउर सेटिंग मोके बताई कि राउर आने जो युवा किसान है चाहे युवा भाई बहन मन सुनत है राउर मन ला तो का कहिया उमन के।
0: मोर यही संदेश है, मोर जो अनुभव है 2 साल में तो बगरा ज्यादा माने लंबा समय के खेती नहीं करे हो, लेकिन खेती ले अच्छा अगर मन लगा ले मेहनत तो कहीं भी करना पड़ी।
1: हाँ
0: लेकिन अपन ऊपर अगर स्वतंत्र रहना है और अपन के भविष्य ला अगर मोर जो सोच है कि जरूरी नहीं है कि नौकरी आओ माने आओ कुछ करना, ठीक है अपन अपन रोजगार अपन अपन बिजनेस सबके अपन अपन क्वालिफिकेशन पढ़ाई लिखे के अनुसार दिशा ला चुनते, लेकिन खेती में भी ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे हो के खेती कर रहे हो करके एला नहीं सोचना चाहिए।
1: हाँ।
0: पढ़े लिखे होए के बाद भी खेती एक ऐसा चीज है ना कि एक बार करी तो समझ में आई, जब मैं करत हो ना तो मोर मन अभी इतना ज्यादा होगी कि मैं अभी लगभग 20 से 25 एकड़ में अगले साल वरना टमाटर के खेती करे बर मैं सोचत हूँ,
1: हाँ।
0: और ए साल में करे रहे लगभग 2.5 एकड़ में
1: हाँ।
0: और मैं 15 से 20 लाख रुपए मोर आमदनी हो रही। तो मैं ना अब सोचत हूँ कि मोला खेती में ही आगे बढ़ना।
1: देखिए कितना सुगर राउर बात करत ही और भाई इतना ऊर्जा है राउर जग, 1-2 साल राउर खेती करे कर बाद इतना प्रोत्साहित हो गए कि भाई आने काम ला राउर कहती कि वो बेकारे है एक तरह से
0: हाँ।
1: और खेती अपाती में करके लाभ कमाना है राउर ला। मिर्चा खेती करता करे ही,
0: मिर्चा खेती लगभग 1 एकड़ में लगा ही, तो अभी मैंने हार्वेस्टिंग तो नहीं करे हूँ, बाकी तैयार होगी से फसल तैयार है, अभी 1 सप्ताह के अंदर टूट जाएगी 50 से 1 क्विंटल लगभग।
1: है ना।
0: हाँ
1: तो देखी भाई यहू बढ़िया राउर ये चटिक मटिक बताते नहीं है, जेहर टूटी तेहर 50 किलो 1 क्विंटल ले कम टूटी नहीं
0: हाँ
1: तो नगद दे दे भाई, रोट रोट जगह में लगाए ही
0: हाँ
1: राउर माता जी ला देख के सीखे ही और वही ला दे आगू बढ़ा थी और खेती पाती में अपन रोजगार ला भाई चुने ही। और संग संग सबले बड़े बात ना कि अजय ले कहती कि पढ़ाई ला नहीं छोड़े हूँ,
0: नहीं छुड़े ही।
1: अब तो नगद लगातार राउर पढ़त ही और ओकर साथ साथ खेती पाती करत ही। कहीं ना कहीं देखिए हमारे युवा किसान भैया बहनी मन राउर ला अगर सुनत आए नहीं तो मन भी कहीं ना कहीं प्रेरणा पाही। तो बहुत बहुत धन्यवाद राउर के हमारे से गोट बात करें।
0: धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: भाई बढ़िया कन गोटला भी सुने, संगे संग संदेश ला भी सुने। किसान भाई अभी मन में देखा भाई, तो सहकारिता से समृद्धि कर बात हमन कथन, काबर के सहयोग करे से जो हमार ग्रामीण कर जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत बनते, सशक्त बनते। ग्रामीण भारत जो है ओकर अर्थव्यवस्था कृषि

पशुपालन, लघु उद्योग और स्थानीय उद्यम पर निर्भर है। ये क्षेत्र में छोटा और सीमांत किसान, मजदूर, ग्रामीण उद्यमी के संगे अनेक चुनौती का सामना मतलब करना पड़ते हैं। ऐसा स्थिति में अगर सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जेकर माध्यम से सामूहिक प्रयास करके आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक विकास कर मार्ग प्रशस्त हो जाते, यही सोच के साथ सहकारिता से समृद्धि कर मंत्र आज ग्रामीण भारत कर विकास पर महत्वपूर्ण आधार बनाता है। सहकारिता का मूल सिद्धांत है सबकर साथ सबकर लाभ। जब किसान, दुग्ध उत्पादक, महिला स्व सहायता समूह, कारीगर और ग्रामीण उद्यमी मिलकर एठन संगठन ला बनाते हैं तो उनका सामूहिक शक्ति बढ़ जाते और सहकारी समिति कर माध्यम से किसान गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र, ऋण और विपणन सुविधा आसानी से मतलब मिल जाते। एक से उत्पादन लागत में कम हो जाते, संगे संग लाभ में वृद्धि हो जाते। दुग्ध सहकारी समिति कर माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कर और आय कर नवा अवसर भी उत्पन्न होता है। वहीं महिला सहकारी समूह कर माध्यम से आत्मनिर्भर और आर्थिक सशक्तिकरण कर बढ़ावा भी मिलता है। हमने देखा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत बनाए में सहकारिता कर जो भूमिका है वो खाली कृषि तक सीमित नहीं है। मत्स्य पालन होगी, मनोपज संग्रहण होगी, हस्तशिल्प होगी, खाद्य प्रसंस्करण होगी और ग्रामीण उद्योग में भी सहकारी मॉडल का सफलतापूर्वक उपयोग होता है। हमने देखा सामूहिक विपणन व्यवस्था कर कारण उत्पादन ला जो है बेहतर बाजार मिलते, उचित मूल्य मिलते, संगे संग बिचौलिया मन का निर्भरता है और कम हो जाते। एक से ग्रामीण क्षेत्र कर आय भी बढ़ते, आर्थिक गतिविधि ला गति भी मिलते। भारत सरकार और राज्य सरकार सहकारी संस्था मल्ला आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवा और वित्तीय सहायता से जोड़े कर प्रयास करता है। सहकारिता मंत्रालय कर स्थापना और प्राथमिक कृषि साख समिति कर शुद्धिकरण जैसा कदम जो है हमारे ग्रामीण विकास ला नवा दिशा देता है। ये प्रयास कर माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ाता है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य ला मजबूती भी मिलता है। तो हमन देखा सहकारिता खाली आर्थिक व्यवस्था नहीं है बल्कि सामाजिक एकता, सहभागिता, सामूहिक विकास का सशक्त माध्यम भी है। जब ग्रामीण समाज सहयोग और साझेदारी कर भावना से आगे बढ़ते तब समृद्धि का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाते, मजबूत हो जाते। यही कारण है सहकारिता से समृद्धि कर मंत्र आज पूरा ग्रामीण भारत ला आत्मनिर्भर और सशक्त विकसित भारत बनाए का दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान भैया अभिनम सहकारिता के भाई शक्ति ला तो हम सभी जन जानते हैं। बाकी अभी बेरा होगी से मंडी भाव और मौसम कर जानकारी कर तो हमारा अंबिकापुर मंडी से जो फसल कर कीमत हर भेटाई से वो हिसाब से धान हर 2370 रुपये प्रति कुंटल, मकई हर 2400 रुपये प्रति कुंटल, महुआ हर 3000 रुपये प्रति कुंटल और सरसों हर 6000 रुपये प्रति कुंटल। मौसम कर बात करब तो तापमान में आज कर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहे और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहे कर संभावना है। कल कर बात करब तो कल कर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहे कर संभावना है। किसान भैया अभिनमन भाई बरखा का ऋतु शुरू होने वाला है, ऐसे में तो भाई मोर सलाह है कि खेती पाती कर जो भी उपकरण है, यंत्र है, औजार है, वाला बढ़िया साफ़ सुथरा बढ़िया होकर चले कर स्थिति में बनाए लें और खातु कर व्यवस्था कर लें, बीज कर व्यवस्था कर लें। अचानक से कहीं जब भाई कोई चीज़ पर हमला परेशान नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए। तो आगू तो भाई हम और गुड़ बात करबो बल्कि जाए से पहले हमन एक ठन गीतला सुना थी।

भाई बढ़िया कन गीत ला सुनें। अब तो बेराहर कहता है कि हमारा अपन कार्यक्रम से हमारा विदा लेना चाहिए, तो आज कर चौपाल इतने चलल जाए। राम राम।

अभी किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। आज मैं हूं आपके साथ पद्मनाभ शर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत खयाम का है, आवाज है लता मंगेशकर और यसुदास की, और फिल्म त्रिशूल के इस गीत को सुनाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर अपनी पसंद भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। ताज मंजिल लक्कर बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब, अल्तमस बानो मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, पंचकुला सेक्टर 9 से

ए आशुचुग अश्विनी गोविंद टोनी दीवान लव दीवान राधे भाविक ग्राम चौरदा बार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर खुशबू ज्योति ठाकुर सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज कुंजनगर जयनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेमलता देवांगन अमीर तांजे श्रेया देवांगन और महिमा देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी संगीता आकाश आयुषी सागर यशी हनी पूजा सीता और परिवार के सभी सदस्य ग्राम नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा दतरंगी के भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता और रुद्र वर्मा कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा स्वीटी दीवाना राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार संदीप कुमार कृष्ण कुमार सुनील कुमार संजीव केवट चितनंद यादव मनीष कुमार तेज कुमार साहू अंबिका प्रसाद केसरवानी रविशंकर राजवाड़े गंगेश्वरी भास्कर कविता माझी सुभद्रा केवट श्वेता कुलदीप सुरुचि और राधा वर्मा। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और यशोदास की आवाज़ों में फिल्म त्रिशूल का ये दुकाना।

फिल्म त्रिशूल का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और यशोदास की आवाजों में। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सुफियान, अनस, आयजा, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, ग्राम पंचायत खोंदरा

जयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, गुरनी पैकरा, करिश्मा सुमारसाय, कलेश्वर सिंह सुखराम, हीरामणि ऐश्वर्या, जोड़ा पीपल अंबिकापुर से स्वरूप आनंद सरजाल, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना अफिया, जावेद अंसारी, सुराज अख्तर, जासमीन शकीला, सना समा, हीना रजिया, कौशलपुर से सुखराम सिंह मरावी, दतरंगी भाटापारस छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, ग्राम पोस्ट दवना भैयाथान सूरजपुर से सनी कुमार सोनवानी, रवि सोनवानी, शीतल आदित्य, ग्राम पंचायत परसा सरगुजा से योगेश राजवाड़े, यमा राजवाड़े, आदिया पार्थ और परिवार के सभी सदस्य, सागर लखनादौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली रिमझिम सक्षम, छोटी बाजार गणेश चौक छिंदवाड़ा से माही दुबे, पलक मधुर, सतीश लाला और राजेंद्र दुबे, ग्राम कसकला पोस्ट सलका जनपद पंचायत भैयाथान से शेष कुमार सिंह, ज्योति सिंह सेजल और साक्षी सिंह, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, अडार नांदघाट से माकन वर्मा, चांदी वर्मा, भूपेश दीपेश वर्मा, अमगसी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर से मुनेश राम, शालिनी रुचिका, अनिका, मनीष, रुचिता, चांदनी, दीपांशु और परिवार के सभी सदस्य, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत और रामानंद कुशवाहा, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्बई तालुका सल्लोड छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके।

फिल्म ना खुदा के गीत आपने सुना नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा था निदा फाजली ने और संगीत खयाम का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है फिल्म दीवार का यह गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीत आर डी बर्मन का है और इस गीत को सुनाने के लिए हमें फरमाइश भेजी है उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्कीन, ऋतिका वानी, आरव गणेश, काशीनाथ संगीता मिस्कीन, आरोही प्रियांशी सोनी, मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, हियांश कुमार चंदन, खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप, ग्राम पिपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डुरवानी, छत्तीसगढ़ भोरसुदा से भगवानी सेन, संतोषी सेन, चिराग और गजेंद्र, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या भाई, सुच्चा सिंह, विनोद पुरी और जयपाल यादव, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रीतेश, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राची राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या रामटेके, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत भाटिया और मयंक भाटिया, राजकमल रेडियो श्रोता अष्टी, जिला जालना मराठवाड़ा से सईद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद नयान, निजामुद्दीन धोतर, जोड़ा अष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का, ग्राम ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिवानशी विश्वकर्मा, ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन कोमल परी।

0: कृतिका और रमेश चंद्र टांगी।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है
1: कह

महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, सिरसरा जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह, प्राची सोनगरा, सुमल सोनगरा, कार्तिक और उनका पूरा परिवार, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से

गंदीप थांदी, तृप्ता कुमार, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, कुरकिरत, गुरुशबद सिंह राहुल। पद्मा टॉकीज नेपानगर से पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और शांति देवांगन। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सबके फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म काला पत्थर का ये गीत, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत है राजेश रोशन का।

सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म रॉकी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और पसंद करते हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत मोहम्मद, रेहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर। सेक्टर 18 जगाधारी, जिला यमुनानगर, हरियाणा से विनय मोहन खार, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। ग्राम लोहेडी, जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव और चंद्रेश गोहर। आपके साथ हैं सुनील पाठक। तो आइए सुनते हैं फिल्म रॉकी का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल निशा, धानोरा विटाली तहसील नांदुरा, बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश, सचिन, नांदुरा रोड, जलगांव, जामोद महाराष्ट्र से संतोष काटे, उषा काटे, रावर करनाल से विनोद लखनपाल, गाडगेनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता लोखंडे, आमाखोड़रा रेंगाखार, कबीरधाम से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्षप्रिया और गीत सरगम नेताम, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष दीपल, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी सिंह शेखावत। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म आशा का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म जीवन धारा का ये दो गाना। सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाजों में गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें सोशल मीडिया से फरमाइश भेजी है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, दुर्गा कॉलोनी हाँसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, शिव कुमार शर्मा, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, बेबी वैदेही, हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, अनुपुर मध्य प्रदेश से स्मृति जयवंती, जयवंत्री कैविट जी, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरवान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून।

0: सुरेश वाडकर और आशा भोसले के गाय फिल्म जीवनधारा के इस गीत के साथ ही इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण

0: बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुँच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए

0: रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए

0: पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
2: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम का अगला गीत ये सुनते हैं, सोनू निगम की आवाज में फिल्म अग्निपथ से। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अजय अतुल का।

कार्यक्रम के अंत में ये सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम को फिल्म मदहोशी में। गीत लिखा है शकील आजमी ने और संगीत है रूप कुमार राठौड़ का।

उदित नारायण और साधना सरगम के गाये फिल्म मदहोशी के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। मैं आज आपको आपके साथ हूं पद्मनाभ शर्मा। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म धनवान से। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का। और इस गीत को सुनाने के लिए हमें मेल किया है अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतन देवी, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहावत देवी, मिलिंद कुमार, प्राणय कुमार, रुद्रांश प्रताप, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल नफीसा प्रवीण, शाजीनगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनन्ना, सुकन्या और सविता, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर, पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता, शशांक, सीमा, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास, रानी मानिकपुरी, आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, शुभम बेड़े, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहर का

नर्मदा कुमारी सुजाता पोहरकर, डेर पाटन गुजरात से धीरज बीरबारी, कोरासी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज साहू, सुष्मिता और दीपिका साहू। तो आइए सुनते हैं फिल्म धनवान का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में।

ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, अभय गुजराती। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार और डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। मेन रोड फारबिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार विमल और नवरतन हाता बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी और डब्लू। ग्राम फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, सौरभ डूडी। बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रमिल शिमाली, साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल और चेतन मनवर। आपके साथ हैं रोशनी और बेबी प्रियांशी। आप सबकी ईमेल फरमाइश पर लता मंगेशकर को फिल्म लेकिन में सुनिए। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, ए हरिहरन की आवाज में फिल्म बॉम्बे से। गीत लिखा है महबूब ने, संगीत ए आर रहमान का है, और इस गीत को सुनाने के लिए हमें ईमेल किया है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसुतासु अर्णवानंद, सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे, माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना आशुतोष अंगारे, बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सालिया खातून और गुड़िया खातून, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु मुकेश और जगताप, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से बलराम सेन, इंदु सेन, डोंडी लोहारा बालोद से हरिशंकर डोम और अनिता, जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक, राज अंसारी और फातिमा राज, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, तेलंगाना भुवनगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, लड्डू और टुक टुक, उमरखेड़ से सिराज खान और शबाना खान। तो आइए सुनते हैं ए हरिहरन की आवाज़ में फिल्म बॉम्बे का ये गीत।

ईमेल की गूंज कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं फिल्म जाने क्या होगा का ये तो गाना, जिसे गाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत निखिल विनय का। फरमाइश है छुरी छत्तीसगढ़ कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी माला, कमल सिंह, ईश्वर सिंह, मानू, शानू, बबन, मनु, कान्हा और हरिप्रिया। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, कन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूलत जहां, दीपक और मयंक मूलत। आपके साथ हैं चेतन नाहटा। पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू, नरेश मल्होत्रा, ज्ञान भूषण शर्मा। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाह की ज्योति और सक्षम। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा और श्राव्या। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, जीत, पुष्पांजलि वर्मा। जेल रोड दिल्ली से लालबाबू दीवाना, दिव्या भारती। डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और उमा राज। एयरपोर्ट कॉलोनी अहमदाबाद से प्रमिला अंसारी, हिमा जाटव, प्रमिला और प्रमिल कुमार वर्मा। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमस खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री। ग्राम राजापुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता, घनश्याम दास, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापार से रामचंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े। मेरठ केंट से सुरेश टोम, संदीप और अनुश्री। बागपत से सुंदर और सुंदरी। नोडी लोहारा से प्रभा जमोरिया। कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी। दमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के गाये फिल्म जाने क्या होगा कि इस गीत के साथ ही ईमेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यमनी। इसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं पंडित जसराज का गाया राग मारवा में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गाया राग मारवा में ख्याल गायन। यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आपके फरमाइशी खतूत पर आधारित कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का ये गीत, जिसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और संगीत है ओपी नैयर का। फरमाइश करते हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश, आकार हेड्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवाणकर श्वेता सुमित कुमारी ध्वनि गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर और प्रणीता गवाणकर, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और आसमानाज, चमनपार दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी आसमा खातून और गुलफराज भागलपुरी, ग्राम बिलौरी 52 लाख बेमेतरा छत्तीसगढ़ से श्रीमती रोहिणी डागेश्वरी साहू श्रीमती खुलासी देवी साहू देवव्रत राघवेंद्र राज साहू हेमंत कुमार साहू बेबी विधि दीपिका बेबी कविता और सृष्टि साहू, जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू तारा विद्या जितेंद्र किशन कुमारी सुनीता रिश्वंत हिरेंद्र नीलकंठ चंद्रहास संजीव त्रिलोक साहू मास्टर अरजीत सिंह साहू, ग्राम धुर्राबाधा भाटापारा से प्रमोद साहू देवकुमार नेत्राम और भूपेंद्र साहू, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैयालाल रीता देवी शिल्परानी और आकाश कुमार।

शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंशुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लव श्रीवास्तव, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ग्राम पंचायत बठेना से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा, धमतरी से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार और उनका पूरा परिवार, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू और रविंद्र सेन, आपके साथ हैं खुशी रौनक सेन, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरका, नर्मदा, सुनील, साहिल और कुमारी सुजाता पोहर पोहरका।

आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया में। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खां और संगीत है मदन मोहन का।

लता मंगेशकर को आपने फिल्म मेरा साया में सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म पोस्ट बॉक्स नंबर 999 से। गीतकार हैं पीएल संतोषी, संगीत कल्याण जयानंद जी का, आवाजें हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की, और फरमाइश करते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक जयतेग और मीका विरक, भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश तारनी, सूरज सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर, पीपरपारा पालचुआ मुंगेरी छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी योगिता, नितिन वंशिका और भानुप्रिया दिवाकर, ग्राम मंगला मिठिया बालोद से अशोक कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका लीना और अंशुमाला, आपके साथ हैं आशुतोष अंगारी।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, तलत महमूद की आवाज में फिल्म देख कबीरा रोया से। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की, संगीत मदन मोहन का, और पसंद करते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता। गौतम नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोंधले, आरती। श्री श्रृंगिरिषि महादेवी सियामा पर्वतंचल ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु और अंकित। सरोचोक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्तफा खान, राऊ भाई, शहीद भाई। गादीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर अपेक्षा अमीन दीवान और आदेश कुमार काले।

कार्यक्रम के अंत में ये सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म श्रीमान सत्यवादी का ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है दत्ताराम का। इस गीत को सुनाने के लिए हमें खत लिखा है जैतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदी नाज। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा। ग्राम गणेश धाम परसुली खेरदा बाजार डोंडी लहारा बालोद से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनविंतन भाई और मोतिन भाई। तिवरता डबरी पारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया, जोगेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, जयंती, ममता, मनीषा, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सैद्रीबाई, मंजू, मानसी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम। ग्राम अलगी डांड पाली से चंद्रपाल मरावी, ओम प्रकाश, राम प्रकाश। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल राजेश।

0: मुकेश के गए फिल्म श्रीमान सत्यवादी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अब समाचार रैली किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने

आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।